0: कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरा वारा हंगरा किसान भाई बोना ने आपनी बोन सीमा
1: ने आपनी बोन जागृति नो
0: राम राम। आप सब हमरी रिया हो आपनो सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM माते ने आप सब नु स्वागत करा हा हमारे आज ना कार्यक्रम खेतीवाड़ी में।
1: होवे किसान भाई बोन कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने हाजिर थे यहाँ एक नया विषय ने हाथे। सीमा बोन आज आपने से बातें कर रहा हूँ ये विषय है समन्वित खेती ने बारा में। आज जानूंगा क्या समन्वित खेती हूँ के वाय ने आपने किसान भाई बोन बल्ले हरते महत्व राखे है आ खेती।
0: होवे जागृति बोन अपने कार्यक्रम में अड़ा विषय माते घना आकानी बातें करूंगा पर कार्यक्रम ने शुरुआत में हमरा गीत ने मोरे करा आपड़ी बातें।
1: होवे तो किसान भाई बोन आप हम बरतरो आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें वाघ रेडियो 90.8 FM माते।

0: जागृति बोन, गीत तो आईशु पूरो ने गीत ने बाद एक वक्त फेरी किसान भाई बोनो नो स्वागत कर रहा कार्यक्रम खेतीवाड़ी में
1: होवे। जेम की सीमा बोन आपड़े किसान भाई बोनो ने गीत थकी पहले विषय बताड़ी तू की आज आपड़े कार्यक्रम में बात करो आ रहा समन्वित खेती ने बारे में। तो आज आनी हित जानकारी आलवा बल्ले आपड़े स्टूडियो में पधारे तका है श्रीमान प्रमोद रुकड़िया जी। ई आपड़े किसान भाई बोनो ने बता देगा क्या समन्वित खेती हूँ केवा ने आ खेती आपड़े बल्ले हरते महत्वपूर्ण है।
0: होवे जागृति बोन, तो पहले हमरा अणानी वाते ने मोरे करा अपनी वाते।
1: होवे सर नमस्कार।
2: हाँ नमस्कार
1: सर, आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं वागड़ रेडियो परिवार में।
2: नमस्कार श्रोता बंधु।
1: सर जैसा कि कार्यक्रम खेतीवाड़ी में हमारी हर हमेशा कार्यक्रम में हमारे किसान भाई बहनों को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं कि किस तरीके से हमारे किसान भाई बहन जो हैं वो खेती करें ताकि उन्हें लाभ प्राप्त हो, तो आज भी हमारे बीच में एक नया विषय जुड़ने जा रहा है। आज हम बात करेंगे कि समन्वित खेती क्या है। हम सभी सुनते आ रहे हैं कि समन्वित खेती से हमें बहुत सारे फायदे होते हैं, तो आखिरकार सर हमें यही जानना है कि समन्वित खेती होती क्या है।
2: किसान भाई, जैसे कि अपन इस आज अपन चर्चा कर रहे हैं कि समन्वित खेती क्या होती है, तो दो तरह से खेती का जो है ये खेती के जैसे काम करते हैं अपन फील्ड में जो किसान भाई सब जानते हैं, तो या तो हम एकल खेती करते हैं या फिर हम कहते हैं समन्वित खेती करते
1: जी
2: हैं।
1: जी।
2: एकल खेती जिसमें कहते हैं जो कि जिसमें जैसे एक ही खेत है हमारा, जैसे 2-3 बीघा का कोई खेत है उसमें हमने मकई लगा ली या हमने सोयाबीन ही लगा ली, मतलब एक फसल लगाई हमने एक सीजन के अंदर, खरीफ में एक सीजन में एक फसल लगाई और रबी में एक दूसरी लगा ली, तो उस तरह की वो फसल होती है, वो खेती होती है, उसको कहते हैं एकल खेती। एकल खेती यानी एक फसल
1: जी बिल्कुल।
2: समन्वित मतलब कई सारी चीजें, तो समन्वित में हम कई सारे मॉडल को काम में लेके लेते हैं कि समन्वित मतलब सभी कई सारी फसलें भी होती है उसमें, और उसमें हमारा दूसरे जीव जंतु का जो हमारा जो है जैसे अपने जो हमारे किसान के मित्र हैं उनका भी उपयोग करते हैं, फिर हमारे जो पशु हैं उनका भी जो हमारा गोबर और जो उसका गोमूत्र होता है उसका भी प्रयोग करते हैं खेत में
1: जी जी।
2: जो पत्ते वगैरह खेत में गिर रहे हैं तो उससे भी हम अपना खाद बनाकर उसको भी हमारी खाद बना के रूप में काम में लेते हैं। तो समन्वित खेती उस तरह से होती है कि एक ही खेत के अंदर कई सारी फसलें लेना और उन्हीं फसलों में एक चक्र के इस रूप में कि गाय का गोबर है तो वो खाद के रूप में काम आए
1: जी जी।
2: और जो फसल के उत्पाद हैं और जो चारा है वो गाय वगैरह काम आए, मतलब उसको घुमा के उसको सारी चीजों का प्रयास करें ताकि हमें जो अपन कहते हैं खेत गांव का पानी गांव में और खेत का खाद
1: जी बिल्कुल जी जी,
2: तो उसका भी उपयोग हो जाए और हमारा ज्यादा हमको बाहर से आदान भी लाना नहीं पड़े इनपुट, उसका भी उपयोग हो जाए और खेती के अंदर हमारी लागत कम पड़ जाए
1: जी बिल्कुल। सर जैसा कि आपने बताया कि समन्वित खेती वो है जिसमें हम सभी प्रकार की जो चीजें होती हैं उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि आपने बताया कि समन्वित खेती में हम ढेर सारी खेती करते हैं, साथ ही उसी में हम जो पशुओं का जो गोबर होता है उसका खाद भी बना सकते हैं, उसका भी उपयोग कर सकते हैं, और साथ ही खेत में से जो फल पत्तियां हमें प्राप्त हो रहे हैं उनका भी हम उपयोग कर सकते हैं।
2: बिल्कुल, उसका चारा भी ले लेते हैं, जैसे पशुओं के लिए चारा भी हो जाता है और जो पत्ते वगैरह गिरते हैं तो उसका खाद भी बन जाता है
1: जी बिल्कुल।
2: तो इस तरह से एक उसका एक चक्री उसका मॉडल होता है, तो उसमें समन्वित खेती होती है और उसमें कई सारी फसलों का हम उपयोग भी करते हैं इसमें
1: जी बिल्कुल।
2: समन्वित खेती बहुत ज्यादा सफल जब भी होती है जब हम उसमें मिश्रित खेती करते हैं
1: जी बिल्कुल।
2: समन्वित खेती के अंदर मिश्रित खेती में क्या कि किसी तरह से मतलब कई सारी फसलें ले में, तो उसको मिश्रित खेती के
1: जी बिल्कुल। तो सर इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि समन्वित खेती हमारे लिए बहुत फायदेमंद होती है, तो यही हम सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि समन्वित खेती के लिए हमें खेत किस प्रकार का होना चाहिए।
2: खेत हम जैसे भी अपना जो भी उपलब्ध खेत हैं, जैसे हमारे जो अपने अपने क्षेत्र के बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़ के जो खेत हैं, तो हमारे जनरली किसानों के 2-4 बीघा के खेत हैं, तो उसमें या तो किसी में सिंचाई की व्यवस्था है और या फिर उसके अंदर वर्षा आधारित है, तो उसमें दोनों तरह के हैं कि अगर सिंचाई की व्यवस्था होगी तो हम ऐसी फसलों का चुनाव करते हैं उसमें कि जो सिंचित होती हैं, जिसमें हम आगे से आगे ले जा सकते हैं। कई सारी फसलें होती है जैसे हम कपास का प्रयोग किया
1: जी बिल्कुल,
2: तो कपास सिंचाई में भी काम आ रही है और बिना सिंचाई के भी काम आ रही है
1: जी हाँ।
2: ऐसे कई सारी आगे फिर उसमें उन्हीं के रूप में लेके हम खरीफ के बाद में रबी का जैसे गेहूं वगैरह का लगाने काम में लेते हैं, और असिंचित वाले जो है समन्वित खेती उसमें क्या है कि हम ज्यादातर हमारा पूरा फोकस होता है कि वर्षा आधारित खेती होती है, तो उसमें हमारे साल भर का उपयोग करने के लिए अनाज पैदा हो जाए, सब्जी पैदा हो जाए, हमारा फसल पैदा हो जाए, तो इस तरह से उसमें ज्यादातर मिश्रित खेती का हमारा प्रयोग किया जाता है। ताकि मिश्रित खेती में क्या करके हम जितने भी हमारा जो खाने का पोषण है जो हमारे घर के लिए आवश्यक है उसका भी हम सुबह खेत में पैदा कर लेते हैं और उन सबका चारा हमारे पशुओं के लिए भी काम आता है
1: जी बिल्कुल।
2: तो ये एक मिश्रित खेती इसमें ज्यादा मुख्य हो जाती है
1: जी बिल्कुल। सर आपने जैसा कि बताया कि हमारे किसान भाई बहनों के पास जो भी उपयुक्त खेत है उसमें वो कृषि कर सकते हैं, लेकिन इसमें ध्यान रखने योग्य बात ये है कि जिस भूमि में अगर सिंचाई की व्यवस्था ज्यादा है तो उन्हें

0: मानते हैं और उसको तेल में भी मानते हैं, प्रोटीन वाली फसल मानते हैं। इसके अलावा हमारा जो तेल वाली फसलों में तिल है, मूंगफली है, ये भी हमें प्रयोग में ले लेते हैं
1: जी बिल्कुल।
0: फिर इसमें हमारा जो किसान है हम उसमें सब्जियों का भी उपयोग करते हैं कि हमारा जो फसल है बाड़ी टाइप से हमारा जो खेत है तो उसमें हम जमीन के ऊपर जो हमारी जो बेलों में लगती है जैसे कद्दू की बेल है, ककड़ी है, करेला है, या जितने भी बेल वाली फसलें हैं जो बरसात आधारित होती है, लौकी है, और ये हमारे घर के मेड़ के ऊपर चारों तरफ हम देखते हैं कि वो अपना बीन्स लगाए जाते हैं, सेमफली वगैरह वो लगा लेते हैं, भिंडी लगाते हैं हम
1: जी बिल्कुल,
0: है ना। ताकि ये क्या है, फसलें ऐसी समन्वित खेती में जब हम समन्वित खेती कर रहे हैं तो हम कई सारी फसलों का हमारे खेत में सीमित खेत के अंदर चुनाव करते हैं
1: जी बिल्कुल।
0: और उसका चुनाव का मुख्य आधार भी होता है कि खेतों में आपस में उन फसलों का आपसी सामंजस्य हो। उसका आपसी सामंजस्य कैसे, कि कुछ की जड़ें तो जाती है गहरी, कुछ की जड़ें जाती है कम
1: जी बिल्कुल,
0: है ना। तो उनका भी हमको उपयोग में लेना पड़ता है कि जड़ें गहरे वाले के पास में कम जड़ वाला जो होता है तो वो अच्छा रहता है कि उसमें जो क्षेत्र है जहां से वो उन जड़ों में से जमीन के अंदर मिट्टी के अंदर से जो पौधा है खाद ले रहा है, पानी ले रहा है, तो उसका आपसी प्रतिस्पर्धा ना हो जाए
1: जी बिल्कुल
0: उसको लेने में। और खरपतवारों का भी हमारा नियंत्रण हो जाता है। फिर उसमें हम ये भी ध्यान रखते हैं कि साहब ऐसा नहीं भी है कि हमें जो फसल का पकाव है वो भी विभिन्न होना चाहिए
1: जी जी।
0: जैसे अपन कई बार देखते हैं कि मक्का के साथ में हम उड़द लगाते हैं, मक्का के साथ में हम सोयाबीन लगाते हैं, तो ये मक्का के साथ में कई सारी ऐसी दूसरी फसलें भी लगा लेते हैं, तो हमारे देखते हैं मक्का का तो पौधा जाता है लंबा
1: जी हाँ जी बिल्कुल,
0: और जो उड़द है सोयाबीन है इनका जाता है पौधा छोटा। तो जो मक्का का जो भुट्टा लगता है तो उसके अंदर अगर हमारा शेड इफेक्ट आ जाए या उसमें छाया वगैरह पड़ेगा तो भुट्टे का विस्तार नहीं हो पाएगा, उसका फलन नहीं हो पाएगा अच्छा। लेकिन उसको क्या है कि ऊपर की तरफ से हवा अच्छी मिल जाती है
1: जी बिल्कुल।
0: और नीचे वाला जो पौधा है, जो जमीन है, जो जमीन के ऊपर ज्यादातर रखने वाले जैसे उड़द वगैरह, उसकी लंबाई पौधे की ऊंचाई ज्यादा नहीं होती, तो उसमें उनको भी नुकसान नहीं होता, उनको वो जो वातावरण की गर्मी है, जो उसका जगह है वो मिल जाती है, तो उसका विस्तार उतना ही होता है। तो हमें उस सीमित जगहों पर बहुत ज्यादा उपयोग जाता है। फिर उसका जो फलन की बात कर ले तो फलन तो इस तरह से हो गया, जड़ों का विस्तार भी अपन ने बात कर ली कि जड़ें भी किसी की गहरी जाती है, कपास की जड़ गहरी जाती है जबकि मक्का की जड़ है वो कम गहरी जाती है, है ना, उतली जाती है, ऊपर ऊपर ही रहती है, तो उनमें आपस में जड़ों में कंपटीशन नहीं होता। वो कपास की जड़ें वो गहराई से अपना खाना पानी जो उसका पोषण है वो उपयोग ले लेती है
1: जी बिल्कुल,
0: जबकि ये है मक्का की है वो जमीन के सतह से ले लेती सारा
1: जी बिल्कुल।
0: और उसका पकना भाई जैसे कपास और मक्का की बात करते हैं तो कपास का जो डोड़े बनते हैं तो वो हमारा लेट बनते हैं, नवंबर दिसंबर में आके और वो चुनाई की तैयारी में आता है, जबकि उस जब तक मक्का तो हमारा सितंबर अक्टूबर में पक जाता है
1: जी बिल्कुल।
0: तो इसलिए उनका फैलाव और इन सब बातों को हमारा मिश्रित फसल के अंदर देखते हैं, और ये हमारा समन्वित खेती का भी एक उसमें मॉडल में बन जाता है
1: जी बिल्कुल।
0: खेत को मैक्सिमम उपयोग, अधिकतम उपयोग, और खेत के जो आदानों का उपयोग, और जो खेत की जो फसल पक रही है उसका खाने के लिए प्रयोग, उसका अपने जो मित्र कीट हैं वो पल रहे हैं उनका उपयोग, और जो उसके अंदर जो खाद बन रहे हैं, पत्ते गिर रहे हैं जमीन के ऊपर, तो उसका भी खाद बनाकर हम वापिस उसका उर्वरक के रूप में काम में लेना
1: जी बिल्कुल। तो सर जैसा कि आप बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं हमारे किसान भाई बहनों को कि उनके लिए समन्वित खेती किस तरीके से महत्वपूर्ण हो सकती है, तो यही हम सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि समन्वित खेती में हमारे किसान भाई बहन कम खर्च में अधिक लाभ कैसे कमा सकते हैं।
0: अधिक लाभ कमाने के लिए हमें क्या, दो तरह से लाभ है, एक तो हमारा उत्पादन ज्यादा हो
1: जी बिल्कुल,
0: और हमारा खर्चा कम हो। जब भी हमें लाभ का जो अंश है वो ज्यादा हो पाए
1: जी बिल्कुल।
0: हमें इसलिए समन्वित खेती का हम क्यों उसमें ज्यादा वो जोर डालते हैं कि समन्वित खेती में हमारी खेती की लागत कम पड़ोगी
1: जी बिल्कुल,
0: और खेती की लागत कम होने से क्या है, क्योंकि हमारा आपसी उसमें उपयोग हो गया, तो खेती की लागत में उर्वरक में दवाई के रूप में और उसमें हमारा कम उपयोग हुआ खरपतवारों में, और उसमें उत्पादन में भी जो कहते हैं पर यूनिट उत्पादन भी ज्यादा होगा
1: जी हाँ।
0: यानी कि जो जमीन का मैक्सिमम उपयोग हो पाएगा, यानी अगर एकल खेती में तो केवल हमने मक्का की खेती करी है कि मक्का के पौधे ही पौधे लगाए, लेकिन नीचे जमीन के ऊपर जो खाली जगह जा रही है उसमें खरपतवार से हम सफाई करते रहेंगे, खरपतवार लगाएंगे, खरपतवार की हटाने की लागत बढ़ाएंगे, तो उसके रूप में खरपतवार की जगह अगर हमने जैसे उड़द लगा दी, सोयाबीन लगा दी, तो वो खरपतवार की श्रेणी में तो है नहीं
1: जी बिल्कुल,
0: और वो उत्पादन भी देगा
1: जी बिल्कुल।
0: तो उस तरह से हम समन्वित खेती करके हम लागत को कम कर लेते हैं, और लागत तो कम करने के साथ साथ हम उसमें हमारा उत्पादन है वो भी डेढ़ा कर दुगना हो जाता है
1: जी बिल्कुल।
0: तो ऐसे हम कह सकते हैं कि जब समन्वित खेती करेंगे तो हमें उत्पादन में फायदा हो और लागत

0: में कम हो तो जो हमारा नेट प्रॉफिट है, सकल आय जिसको कहते हैं अपन, वो सकल आय अधिक होगी।
1: जी बिल्कुल।
0: तो इस तरह से हम सकल आय अधिक करने के लिए समन्वित खेती का प्रयोग करते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: तो उससे हमारा जमीन का अधिकतम उपयोग और जमीन के उर्वरकों का आदानों का हमारे खेत पर ही बन जाना, तो वो हमारा काम आता है। और फिर इनमें हमारा ये समन्वित खेती में हमारा ये भी है कि जो हमारा पशु है तो उसको हमारे साल भर के चारे की व्यवस्था भी चाहिए।
1: जी बिल्कुल।
0: अब हमने ऐसी फसलों का चुनाव करा है कि जो साल भर उसको खड़ी रहती है, जैसे अब हम अपने जो अरहर की दाल वगैरह बनाते
1: जी,
0: हैं
1: जी,
0: तो अरहर की जो फसल है तो वो भी ऐसी फसल है कि जिसकी अवधि लंबी है, वो 7 महीने 8 महीने 9 महीने तक फसल जाती है।
1: जी बिल्कुल।
0: कपास की अवधि भी लंबी है, तो उसका खेत पे जो है उसका जो पेड़ का विस्तार है वो बाद में आता है, बीच में पहले फसलें पक जाती है और उसका जो पौधे का जो पत्तियां वगैरह जो भी है वो चारे में भी काम में आती रहती है। तो पशुओं को भी हमारे चारा मिलता रहता है, पोषणकारी चारा भी चाहिए हमें पशुओं के लिए।
1: जी बिल्कुल।
0: तो वो भी मिलता है क्योंकि उसमें भी जैसे हम जीव हैं, जितने भी तमाम जैसे हम लोग हैं, हमें भी जो हमारे भोजन के लिए प्रोटीन भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, फैट भी चाहिए, ऐसे पशुओं के लिए भी पोषणकारी
1: चारा चाहिए। जी बिल्कुल।
0: तो वो भी उनको विभिन्न फसलों का जो चारा मिलता रहता है, तो उसके लिए उसका एक कंपोजिट उसका भी पोषण के लिए उसका भी एक चारा बन जाता है।
1: जी बिल्कुल।
0: तो ये इस तरह से हमारा समन्वित खेती जो होती है, तो वो हमारे पूरी तरह से हमको खेत के लिए, वातावरण के लिए, पशुओं के लिए, हमारी आय बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा साधन बन जाता है।
1: जी बिल्कुल।
0: तो इस तरह से हमें समन्वित खेती का उपयोग भी करना चाहिए और उसको हमको लेना भी चाहिए।
1: जी बिल्कुल। तो सर, जैसा कि आज आपने कार्यक्रम में हमारे साथियों को बहुत अच्छी जानकारी दी समन्वित खेती को लेकर, और आपका बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं सर कि आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाई बहनों को आपने इतनी अच्छी जानकारी दी।
0: धन्यवाद सर।
2: सीमा बोन, जेम के आज प्रमोद सर आई वत ने एने आपणे किसान भाई बहनों ने घणी आकरनी वाते बताड़ी के आ समन्वित खेती हूँ कहवाय ने आनु आपणे पल्ले हूँ महत्व राखे है। तो जेम की वाते तो आपणे घणा कनी करी ने हवे आप देखी रहो कि टेम थई गयो है कार्यक्रम थकी सूटो पड़वानो, तो सूटो तो पड़ंगा पण मारू मन थई रह्यो कि साथे साथे भी आपणे एक और गीत सांभळी ला।
3: हवे जागृति बोन, तो आपणे हामरा गीत ने मोरे पड़े सूट
2: होवे।

नमस्कार श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर, लेकर हाजिर हो चुकी हूं कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। श्रोता साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी छोटी सी आदत की जो देखने में बहुत सामान्य लगती है, लेकिन बच्चों के स्वास्थ्य, व्यवहार और संस्कार पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। आज के समय में कई घरों में ऐसा होता है कि कोई टीवी देखते हुए खाना खा रहा है, कोई मोबाइल में व्यस्त है, तो कोई जल्दी खाना खाकर अपने काम में लग जाता है। ऐसे में परिवार के सभी लोग एक साथ बैठकर भोजन करने का समय भी कम होता जा रहा है। इसी छोटी सी बात को समझने के लिए आज हम कार्यक्रम में एक रेडियो संवाद को सुनेंगे, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआती दस्तूर को निभाते हुए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि मैंने आपको गीत से पहले विषय से रूबरू कराया था कि आज हम बात करने वाले हैं कि एक साथ बैठकर किस तरीके से हमें बच्चों को खाने की अच्छी आदतें सिखानी चाहिए और ये जो संस्कार है वो किस तरीके से बच्चों के स्वास्थ्य की नींव रखता है। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस रेडियो संवाद को, फिर हम आगे हमारी बातें जारी रखेंगे।
1: अरे कविता, जल्दी से खाना देना, तो मुझे भी घर जाकर काम करना है। वैसे भी आजकल किसके पास इतना समय है कि सबको एक साथ बैठाकर खाना खिलाए।
2: क्यों, आज फिर सबको अलग अलग खाना है क्या?
1: और क्या, मेरा बेटा पहले ही खाना खा लेता है। पति जी जब आते हैं तब खाते हैं, मैं तो सबके बाद ही खाती हूँ। इसमें नया क्या है?
2: नया कुछ नहीं है रीना, लेकिन सोचने वाली बात जरूर है।
1: सोचने वाली बात? अरे इसमें भी क्या सोचें? पेट भरना है, खाना खा लिया और काम खत्म।
2: सिर्फ पेट भरना ही तो भोजन नहीं है रीना, खाना खाते समय परिवार का साथ भी बच्चों के लिए बहुत मायने रखता है।
1: अच्छा, साथ बैठकर खाना खाने से बच्चों की पढ़ाई भी अच्छी होने लगेगी क्या?
2: सीधे सीधे ऐसा तो नहीं होता रीना, लेकिन उस समय हम बच्चों से बात करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उन्हें खाने की अच्छी आदतें सिखाते हैं, इससे बच्चा बहुत कुछ सीख सकता है।
1: हाँ, लेकिन मेरा बेटा तो खाना खाते समय मोबाइल के बिना खाना ही नहीं खाता।
2: यही तो हम सबको आदतें बदलने की जरूरत है।
1: लेकिन जब वो मोबाइल देखता है तो मैं देखती हूँ कि मोबाइल देखने से वो चुपचाप खाना खा लेता है और फिर इससे मुझे भी आराम रहता है।
2: आराम तो रहता है, लेकिन बच्चे का ध्यान खाने पर कम और स्क्रीन पर ज्यादा रहता है। उसे ये पता ही नहीं चलता रीना कि उसने कितना खाया है, क्या खाया है और कैसे खाया है।
1: हाँ, ये बात तो तुम्हारी सही है। मेरा बेटा कई बार खाना मुंह में लेकर बैठा रहता है और मोबाइल ही देखता रहता है।
2: देखा, अगर हम सब साथ बैठकर खाना खाएं और उस समय मोबाइल और टीवी से थोड़ी दूरी बनाकर रखें, तो बच्चे भी धीरे धीरे वही आदत अपनाते हैं रीना।
1: लेकिन बच्चों को खाने की मेज पर बैठाकर बात क्या करें?
2: अरे बहुत सारी बातें हैं कि आज स्कूल में क्या हुआ, किस दोस्त से बात हुई, आज क्या नया सीखा, खाने में क्या अच्छा लगा और कल क्या करना है।
1: मतलब खाना खाने का समय बच्चों से बात करने का समय भी बन सकता है।
2: हाँ बिल्कुल, और यही समय बच्चे के संस्कार सीखने का भी होता है।
1: अच्छा, वो कैसे?
2: जैसे कि खाना शुरू करने से पहले हाथ धोना, भोजन का सम्मान करना, जितना चाहिए उतना लेना, भोजन बर्बाद न करना, बड़ों का इंतजार करना और सबके साथ मिलजुल कर खाना खाना।
1: हाँ, ये बातें तो बच्चे देखकर ही तो सीखते हैं।
2: सिर्फ बोलने से नहीं, देखकर ज्यादा सीखते हैं बच्चे।
1: मतलब अगर हम खुद मोबाइल लेकर खाना खाएंगे और बच्चे को कहेंगे कि मोबाइल मत देखो, तो वह हमारी बात क्यों मानेगा?
2: बिल्कुल, बच्चों के लिए हमारा व्यवहार ही सबसे बड़ी सीख होती है रीना।
1: अब मुझे समझ आया। लेकिन हमारे घर में तो सबके खाने का समय अलग अलग रहता है, तो मैं क्या करूं?
2: हर दिन हर व्यक्ति का समय मिलना जरूरी भी नहीं है, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है ना कि दिन में कम से कम एक बार परिवार जो है वो साथ बैठकर भोजन करे।
1: हाँ, रात का खाना तो हम सब मिलकर साथ में खा सकते हैं।
2: बस शुरुआत वहीं से करो।
1: और खाना खाते समय टीवी बंद और मोबाइल भी दूर, है ना?
2: हाँ, उस समय परिवार एक दूसरे के साथ रहें, बच्चे से बातें करें, उसकी बातें सुने और उससे अपनी बातें कहने का मौका भी दें।
1: कविता, अगर सच कहूँ तो मैं जब भी खाना खिलाने के लिए अपने बेटे को बोलती हूँ तो उस समय पहले मोबाइल ही पकड़ा देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि बस खाना पूरा हो जाए।
2: तुम क्या रीना, बहुत से माता पिता ऐसा ही करते हैं, लेकिन धीरे धीरे आदत बदली जा सकती है। उसको डांट कर नहीं, प्यार से समझा कर हमें मनाना चाहिए।
1: आज से मैं कोशिश करूंगी कि हम रात का खाना साथ बैठ कर खाए।
2: और हाँ रीना, खाने में भी कोशिश करो कि परिवार को घर का संतुलित और पौष्टिक भोजन मिले। दाल, हरी सब्जियां, अनाज, दूध, दही जैसे चीजें अपनी जरूरत और उपलब्धता के अनुसार हमें शामिल करनी चाहिए।
1: और बच्चे की पसंद भी पूछनी है क्या?
0: हाँ, सिर्फ उनकी पसंद का खाना ही नहीं, उसे अलग अलग पौष्टिक चीजों का स्वाद चखने की आदत भी हमें डालनी होगी।
1: तो अब समझ आया, साथ बैठकर खाना सिर्फ खाना खाने की बात नहीं है।
0: रीना, ये परिवार के साथ जुड़ने, बच्चों को अच्छी आदतें सिखाने और भोजन को लेकर सही व्यवहार सीखने का भी एक सुंदर मौका है।
1: बिल्कुल, चल आज से हमारे घर में एक नियम बनाते हैं, कम से कम एक वक्त का खाना तो हम सब साथ मिलकर खाएंगे।
0: और उस समय मोबाइल रहेगा दूर
1: और बातें होंगी भरपूर।
0: श्रोता साथियों, आपने सुना कविता और रीना की बातचीत। परिवार के साथ बैठकर भोजन करना कोई मुश्किल काम नहीं होता, थोड़ी सी कोशिश से भोजन का समय, परिवार के साथ बातचीत, अपनापन और बच्चों को अच्छी आदतें सिखाने का अवसर बन सकता है। बच्चे हमारे कहे हुए शब्दों से ज्यादा हमारे व्यवहार को देखते हैं, इसलिए अगर हम चाहते हैं कि बच्चे भोजन का सम्मान करें, मोबाइल से दूरी रखें, मिल बांट कर रहें और परिवार के साथ समय बिताएं, तो इसकी शुरुआत हम अपने घर से कर सकते हैं। इसलिए आज से कोशिश कीजिए कि दिन में कम से कम एक बार परिवार के साथ बैठें, भोजन करें और कुछ पल दिल से बातें करें, क्योंकि भोजन सिर्फ शरीर को पोषण नहीं देता, परिवार का साथ रिश्तों को भी पोषण देता है। तो श्रोता साथियों, बातें कार्यक्रम में हमारी आपसे ढेर सारी हो गई है और अब समय भी उचला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।

साथियों, इस गीत के साथ ही अब हम हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा बचपन से विदा लेना चाहेंगे। अंत में आपको यही कहना चाहूंगी कि परिवार के साथ बैठकर भोजन करना सुनने में भले ही एक छोटी सी आदत लगे, लेकिन इसका असर बच्चों के रोजमर्रा के जीवन पर कई तरीके से पड़ सकता है। भोजन का समय केवल पेट भरने का समय नहीं होता, बल्कि यह परिवार के सदस्यों के एक दूसरे के करीब आने, बातचीत करने और बच्चों को जीवन की छोटी छोटी अच्छी आदतें सिखाने का भी अवसर होता है। जब परिवार के साथ बैठकर भोजन बच्चा करता है तो वह केवल भोजन करना नहीं सीखता, बल्कि वह बड़ों का सम्मान करना, अपनी बारी का इंतजार करना, भोजन साझा करना, परिवार के अनुसार भोजन लेना और भोजन को व्यर्थ न जाने देना जैसी आदतें भी धीरे धीरे सीखता है। इन छोटी छोटी आदतों का प्रभाव आगे चलकर उनके व्यवहार और व्यक्तित्व में दिखाई दे सकता है। इसलिए श्रोता साथियों, परिवार के साथ भोजन करते समय माता पिता बच्चों से उनके दिन के बारे में पूछ सकते हैं। बच्चा स्कूल में क्या सीख कर आया, उसे किस बात की खुशी हुई, कोई परेशानी तो नहीं हुई, इन छोटी छोटी बातों पर बातचीत की जा सकती है। इससे बच्चे को यह महसूस होगा कि परिवार में उसकी बात सुनी जाती है और उसकी भावनाओं को महत्व दिया जाता है। तो श्रोता साथियों, बातें ढेर सारी हो गई हैं, फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में इसी समय। लेकिन जाने से पहले मैं आपको कार्यक्रम का पता बताना चाहूंगी, ताकि आप अपनी राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखिए, कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर को कार्यक्रम सच्चा बचपन से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।
0: कपड़ा।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज़ सुनने वाले हमारे सभी युवा साथियों को आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: जी हाँ साथियों, लेकर हाजिर एक कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है स्टीव जॉब्स की सोच यानी कि युवाओं के लिए एक सबक को लेकर। हम देखते हैं कशिश कि किसी भी बड़ी सफलता की शुरुआत बड़े साधनों से नहीं बल्कि एक बड़े विचार से होती है।
0: बिल्कुल,
1: जब इंसान अपने सपनों पर विश्वास करता है, लगातार सीखता है और असफलताओं से घबराने के बजाय उनसे सीखता है, तब साधारण परिस्थितियों से भी असाधारण उपलब्धियां जन्म लेती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो आज के इस कार्यक्रम में हम इसी विषय को लेकर युवा साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे। लेकिन जैसा कि शुरुआत में कार्यक्रम का दस्तूर है गीत संगीत का, तो क्या ना दोस्तों को पहले यहाँ एक प्यारा सा गीत सुनवा दे हम।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: दोस्तों इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसे कि दोस्तों गीत से पहले बातचीत की शुरुआत हो चुकी है और विषय के बारे में भी हम आपको बता ही चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं स्टीव जॉब्स की सोच को लेकर और वो युवाओं के लिए किस प्रकार से एक सबक है इसको लेकर। जैसा कि बात की थी जागृति जी आपने गीत से पहले कि किसी भी बड़ी सफलता की शुरुआत बड़े साधनों से नहीं बल्कि बड़े विचारों से होती है।
1: बिल्कुल,
0: दुनिया में श्रोता साथियों ऐसे कई लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी सोच और काम करने के तरीके से नई पीढ़ी को प्रभावित किया है। उनमें से एक नाम है स्टीव जॉब्स का। साथियों उन्होंने तकनीक की दुनिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए और ये दिखाया कि किसी काम को केवल पूरा करना ही पर्याप्त नहीं होता,
1: जी हाँ,
0: बल्कि उसे बेहतर ढंग से करने की कोशिश भी जरूरी होती है।
1: जी हाँ कशिश, स्टीव जॉब्स का जीवन युवाओं के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें सपने देखने, अलग सोचने, सीखते रहने, कठिन परिस्थितियों का सामना करने और अपने काम के प्रति जुनून रखने जैसे कई संदेश मिलते हैं।
0: जी हाँ,
1: श्रोताओं कहना चाहेंगे कि स्टीव जॉब्स की सोच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था परंपरागत तरीके से हटकर सोचना। उनका मानना था कि दुनिया को बदलने वाले विचार अक्सर वहीं से आते हैं जहां कोई व्यक्ति सामान्य सोच से आगे बढ़ने की कोशिश करता है।
0: बिल्कुल,
1: आज के युवाओं के सामने भी बहुत सारे अवसर हैं, लेकिन अवसर का लाभ वही उठा सकता है जो अपनी सोच को सीमित नहीं करता। अलग सोचने का मतलब ये नहीं है श्रोताओं कि हर बात में दूसरों से अलग होना, इसका अर्थ ये है कि किसी समस्या को नए नजरिए से देखना और पूछना कि इसे और बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है।
0: बिल्कुल,
1: गांव का कोई युवा खेती में नई तकनीक अपनाने के बारे में सोच सकता है कशिश, कोई युवा स्थानीय उत्पादों को डिजिटल माध्यम से बाजार तक पहुंचाने की कोशिश कर सकता है।
0: जी जी,
1: कोई विद्यार्थी अपने गाँव के बच्चों को पढ़ाने के लिए नई पहल शुरू कर सकता है। बदलाव की शुरुआत अक्सर एक छोटे से विचार से ही होती है।
0: बिल्कुल, साथी दोस्तों सपने देखना और उन्हें दिशा देना भी सही है।
1: जी हाँ,
0: जैसे कि युवावस्था सपनों को देखने का समय होता है जागृति जी, लेकिन केवल सपने देखना पर्याप्त नहीं है, सपनों को लक्ष्य में और लक्ष्य को मेहनत में बदलना भी जरूरी होता है।
1: बिल्कुल,
0: साथियों स्टीव जॉब्स का जीवन यह संदेश देता है कि व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि वह वास्तव में क्या करना चाहता है। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो रास्ते की कठिनाइयों के बीच भी आगे बढ़ना आसान हो जाता है। आज जागृति जी कई युवा दूसरों को देखकर अपने लक्ष्य तय करने लगे हैं।
1: बिल्कुल,
0: किसी को देखकर लगता है कि मुझे भी वही करना चाहिए। सोशल मीडिया पर किसी की सफलता देखकर अपने जीवन की तुलना उससे करने लगे हैं, लेकिन हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। जरूरी ये है साथियों कि हम स्वयं से ये पूछें कि मेरी रुचि किस काम में है, मैं क्या सीखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, समाज के लिए मैं क्या कर सकती हूँ और अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए मुझे क्या और कैसे कदम उठाने चाहिए।
1: जी हाँ कशिश, आपने सही कहा और जैसा कि आपने बताया कि सपने देखना उन्हें दिशा देना जैसा है, यही बात करते हैं कि असफलता से हम किस तरह से सीख सकते हैं।
0: बिल्कुल
1: साथियों, जैसा कि सफलता की कहानी अक्सर केवल उपलब्धियों के रूप में सुनाई जाती है, लेकिन उसके पीछे संघर्ष और असफलताएं भी होती है।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कशिश कि स्टीव जॉब्स के जीवन में भी कठिन दौर आया था। जिस कंपनी की स्थापना में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उसी से उन्हें एक समय अलग होना पड़ा।
0: बिल्कुल,
1: ये किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा कठिन अनुभव हो सकता है, लेकिन साथ ही उन्होंने उस दौर को अपने जीवन का अंतिम पड़ाव नहीं माना था। उन्होंने नए काम किए, सीखा और बाद में फिर अपने पुराने क्षेत्र में लौट आए।
0: बिल्कुल,
1: युवाओं के लिए महत्वपूर्ण सीख है श्रोताओं कि एक असफलता पूरी जिंदगी का फैसला नहीं सुनाती है। परीक्षा में कम अंक आना, नौकरी न मिलना, किसी प्रतियोगिता में सफलता न मिलना या किसी प्रयास का असफल हो जाना जीवन का अंत नहीं है। असफलता ये बताती है कि हमें कहाँ सुधार की जरूरत है। जरूरत है कि युवा अपनी गलती को स्वीकार करें, उससे सीखें और दोबारा प्रयास करें।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जैसा कि युवा साथियों से हमारी बातें बहुत अच्छी चल रही है और हम स्टीव जॉब्स के जीवन संदेश को जान रहे हैं, तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी मनोरंजन कर लेते हैं एक और गीत के साथ में।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और हमारी बातें चल रही थी आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से, हम जान पा रहे थे स्टीव जॉब्स की सोच और युवाओं के लिए एक सबक को लेकर।
1: बिल्कुल।
0: तो कशिश, हमारे श्रोता साथियों को यही बताते हैं कि सीखना हमें कभी बंद नहीं करना है।
1: जी हाँ,
0: दुनिया तेजी से बदल रही है, हम सभी जानते हैं। नई तकनीकें रोज आ रही है, नए रोजगार आ रहे हैं, नए कौशल और नए अवसर लगातार हमारे सामने आ रहे हैं। ऐसे समय में युवाओं के लिए सबसे जरूरी गुणों में से एक है सीखते रहने की आदत।
1: बिल्कुल।
0: स्टीव जॉब्स की सोच में जिज्ञासा और सीखने की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों की चीजों को समझने में रुचि दिखाई और उन्हें अपने काम में जोड़ा।
1: जी जी।
0: साथियों, आपसे कहना चाहेंगे कि आप भी अपने क्षेत्र के साथ साथ दूसरी चीजों को सीख सकते हैं। किसान का बेटा खेती के साथ डिजिटल मार्केटिंग भी सीख सकता है, कोई विद्यार्थी कंप्यूटर के साथ संचार कौशल भी सीख सकता है, और कोई युवा अपने पारंपरिक हुनर को नई तकनीक से जोड़ सकता है।
1: बिल्कुल।
0: आज सीखने के लिए साधनों की कमी पहले जैसी नहीं है श्रोताओं। किताबें, पुस्तकालय, शिक्षण संस्थान, डिजिटल माध्यम और समुदाय कई रास्ते उपलब्ध कराते हैं, लेकिन सबसे जरूरी है सीखने की इच्छा होनी चाहिए।
1: बिल्कुल। साथ ही युवा साथियों, गुणवत्ता पर ध्यान देना भी जरूरी है। यानी कि जागृति जी, किसी भी काम को केवल जल्दी पूरा कर लेना ही सफलता नहीं होती। काम की गुणवत्ता भी उतनी ही महत्वपूर्णता रखती है।
0: जी हाँ।
1: साथियों, स्टीव जॉब्स अपने उत्पादों के डिजाइन और उपयोग में सरलता पर विशेष ध्यान देने के लिए जाने जाते थे। इससे युवाओं को ये सीख मिलती है कि छोटे छोटे विवरण भी महत्वपूर्ण होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: जागृति जी, चाहे विद्यार्थी अपना प्रोजेक्ट बना रहा हो, या कोई युवा व्यवसाय शुरू कर रहा हो, या कोई किसान अपनी उपज तैयार कर रहा हो, हर काम में गुणवत्ता पर ध्यान दिया जा सकता है। काम छोटा हो या बड़ा, उसे जिम्मेदारी और ईमानदारी से करना व्यक्ति की पहचान बनाता है।
0: हम कह सकते हैं कशिश की, युवावस्था में समय सबसे मूल्यवान संसाधनों में से एक होता है। आज मोबाइल और सोशल मीडिया के कारण युवाओं का काफी समय बिना उद्देश्य के निकल सकता है।
1: बिल्कुल।
0: मनोरंजन जरूरी है, लेकिन जीवन का पूरा समय केवल मनोरंजन में नहीं जाना चाहिए। स्टीव जॉब्स की सोच से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संदेश ये भी है कि व्यक्ति को ये तय करना चाहिए कि उसके लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल।
0: युवा अपने दिन का थोड़ा समय पढ़ने, कौशल सीखने, व्यायाम, परिवार, समाज और अपने लक्ष्य के लिए निकाल सकता है। समय की छोटी छोटी बचत आगे चलकर बहुत बड़ी उपलब्धियों में बदल सकती है।
1: जी हाँ जागृति जी, साथ ही हम देखते हैं कि आज के समय में युवाओं पर दूसरों की नकल करने का दबाव भी रहता है।
0: बिल्कुल।
1: कपड़े, भाषा, करियर, जीवन शैली और सफलता, हर जगह तुलना ही तुलना दिखाई देती है। लेकिन साथियों, वास्तविक विकास तब होता है जब युवा अपनी क्षमताओं को पहचाने। स्टीव जॉब्स की सोच का एक पहलू ये भी था कि उन्होंने अपने काम और विचारों के प्रति अपनी पहचान बनाई थी। इसका मतलब दूसरों को कम समझना नहीं, बल्कि अपनी विशेषता को पहचानना है। हर युवा के अंदर जागृति जी, कोई ना कोई प्रतिभा होती ही है।
0: बिल्कुल।
1: किसी में बोलने की क्षमता होती है तो किसी में लिखने की, किसी में तकनीकी समझ, किसी में नेतृत्व की, तो किसी में लोगों को साथ लेकर चलने की क्षमता होती है। जरूरत है उस प्रतिभा को पहचानने की और लगातार निखारने की।
0: जी हाँ, हम कह सकते हैं कि जीवन में कई बार ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं कशिश, जो आसान नहीं होते।
1: बिल्कुल।
0: कभी विषय बदलना पड़ता है, कभी असफलता के बाद नई शुरुआत करनी पड़ती है, और कभी ये तय करना पड़ सकता है कि कौन सा काम हमारे लक्ष्य के लिए उपयोगी है।
1: जी जी।
0: सही निर्णय लेने के लिए आत्मविश्वास के साथ साथ विचार और जानकारी भी जरूरी है। युवा जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय अपने परिवार, शिक्षकों और अनुभवी लोगों से सलाह भी ले सकते हैं।
1: जी हाँ।
0: इसके बाद अपनी परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेना चाहिए।
1: बिल्कुल जागृति जी। साथ ही अगर बात करें तकनीक का उपयोग साधन के रूप में कैसे करें, तो आज मोबाइल और इंटरनेट युवाओं के हाथ में शक्तिशाली साधन बन चुका है।
0: बिल्कुल।
1: इनका उपयोग केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान और अवसरों के लिए भी किया जा सकता है। ऐसे में युवा साथी ऑनलाइन पाठ्यक्रमों से नई चीजें सीख सकते हैं, रोजगार के अवसर तलाश सकते हैं और अपने उत्पादों की जानकारी लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और साथ ही साथ दुनिया के अलग अलग हिस्सों से ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं।
0: जी हाँ।
1: लेकिन तकनीक हमारे जीवन को चलाए, इसके बजाय साथियों, हमें तकनीक का सही उपयोग करना सीखना चाहिए।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धि का नाम नहीं है। असली संतुष्टि तो तब मिलती है जब हमारी क्षमता से किसी और को भी लाभ मिले।
1: बिल्कुल।
0: साथियों, कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि युवा अपने गांव और समुदाय में छोटी छोटी पहल कर सकते हैं। वो बच्चों को पढ़ाने में मदद कर सकते हैं, स्वच्छता के लिए जागरूकता फैला सकते हैं, जल संरक्षण में योगदान दे सकते हैं, किसानों को उपलब्ध तकनीक जानकारी तक पहुँचने में मदद करा सकते हैं।
1: जी हाँ।
0: या स्थानीय प्रतिभाओं को आगे

0: बढ़ाने का प्रयास भी कर सकते हैं। जब युवा अपनी प्रतिभा को समाज की जरूरतों से जोड़ता है तो उसका विकास और अधिक सार्थक बन जाता है।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं कशिश की हर काम में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। अगर व्यक्ति केवल परिणाम के बारे में सोचता रहेगा तो कठिन समय में निराश हो सकता है।
1: जी बिल्कुल,
0: लेकिन यदि उसे अपने काम में रुचि है और वो लगातार सीखने की कोशिश करता है तो कठिनाइयों से निपटना आसान हो जाता है।
1: बिल्कुल,
0: युवाओं को करियर चुनते समय केवल दूसरों की अपेक्षाओं को नहीं देखना होगा श्रोताओं, अपनी रुचि, क्षमता, परिस्थितियों और भविष्य के अवसरों को भी समझना होगा।
1: जी हाँ,
0: जिस काम को सीखने और बेहतर करने की इच्छा बनी रहे उसमें आगे बढ़ने की संभावना भी बढ़ती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा, इसलिए हमारे युवा साथियों को आज से ही शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि कई युवा कहते हैं कि पहले अच्छी नौकरी मिल जाए फिर कुछ नया करूंगा।
0: जी हाँ,
1: पहले पैसे आ जाएं फिर सीखूंगा, पहले सही समय आएगा फिर शुरुआत करूंगा।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन दोस्तों सही समय का इंतजार करते करते कई बार अवसर हाथ से निकल जाते हैं। ऐसे में आपसे कहना चाहेंगे कि शुरुआत आपकी छोटी हो सकती है। आज आप 10 नए शब्द सीखेंगे, आज एक किताब के कुछ पन्ने आप पढ़ेंगे, आज कोई नया कौशल सीखना, आज अपने लक्ष्य की योजना बनाना, ये कुछ ऐसे छोटे कदम हैं जो भविष्य में बड़ा बदलाव ला सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: हमारे युवाओं को ये समझना चाहिए कि भविष्य अचानक नहीं बनता, वो आज के छोटे छोटे फैसलों से ही बनता है।
0: जी हाँ बिल्कुल कशिश, हम कह सकते हैं कि स्टीव जॉब्स का जीवन युवाओं को कई बातें सिखाता है। अलग सोचने का साहस रखना, अपने सपनों को लक्ष्य में बदलना, सफलताओं से सीख और आगे बढ़ना।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही श्रोताओं अपने लक्ष्य की दिशा में लगातार प्रयास करते रहना, ये सारी बातें हैं जो हम स्टीव जॉब्स के जीवन से सीख सकते हैं।
1: जी हाँ,
0: अब आपसे कहना चाहेंगे कि स्टीव जॉब्स की कहानी केवल तकनीक की दुनिया की कहानी नहीं, ये सोच, सीखने और लगातार आगे बढ़ने की कहानी भी है। युवाओं के सामने आज चुनौतियां जरूर है कशिश, लेकिन अवसर भी बहुत है।
1: बिल्कुल,
0: जरूरत है कि वे अपनी ऊर्जा को सही दिशा दें, दूसरों की सफलता देखकर केवल प्रभावित होने के बजाय उससे सीखें, असफलता आने पर खुद को कमजोर मानने के बजाय अपनी कमियों को पहचानें, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने सपनों को केवल सोच में न रखें, उन्हें मेहनत और अनुशासन के साथ वास्तविकता में बदलने का प्रयास करें।
1: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि हर युवा अपने भीतर एक संभावना लेकर चलता है। किसी को उस संभावना को पहचानने में समय लगता है तो किसी को सही अवसर की जरूरत होती है और किसी को केवल एक शुरुआत की। इसलिए युवा साथियों आज से एक संकल्प आप ले सकते हैं कि आपकी सोच नहीं होगी, सीखना आप जारी रखेंगे, असफलता से डरेंगे नहीं और अपने हुनर को समाज के काम में लगाएंगे।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि दुनिया बदलने के लिए हमेशा कोई बड़ा साधन जरूरी नहीं होता। कई बार बदलाव की शुरुआत केवल एक युवा की नई सोच, मजबूत इरादे और छोटे प्रयासों से हो सकती है जागृति जी। और यही स्टीव जॉब्स की सोच में युवाओं के लिए मिलने वाली सबसे महत्वपूर्ण सीखों में से एक है।
0: बिल्कुल,
1: कि अपने विचारों पर विश्वास रखिए, सीखते रहिए और अपने काम को बेहतर बनाने की कोशिश कभी मत छोड़िए।
0: जी हाँ कशिश, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की, अब देख पा रहे हैं कि समय चला है विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे पर जाते जाते सुन लेते हैं एक और गीत।
1: जी हाँ जागृति जी,

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि श्रोता साथियों, गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं पौष्टिक नाश्ता दिन की अच्छी शुरुआत को लेकर। अंजलि जी, हम देखते हैं कि सुबह का समय हमारे दिन की शुरुआत करता है। जैसे श्रोता साथियों, किसी वाहन को चलाने के लिए ईंधन की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे शरीर को काम करने के लिए भोजन और ऊर्जा की जरूरत होती है।
1: बिल्कुल।
0: रात भर सोने के बाद श्रोता साथियों, हमारा शरीर कई घंटों बिना भोजन के रहता है। ऐसे समय में सुबह उठने के बाद लिया गया जो भोजन होता है वो हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है।
1: जी जी।
0: अगर सुबह का भोजन पौष्टिक और संतुलित हो तो हम देखते हैं कि शरीर को ऊर्जा मिलती है, मन प्रसन्न रहता है और दिन भर का जो काम है वो आसानी से हम कर पाते हैं।
1: बिल्कुल मनीषा, हम देखते हैं कि सुबह कई घंटों सोने के बाद जब हम जागते हैं तो शरीर को दोबारा ऊर्जा की जरूरत होती है। रात के भोजन और सुबह के बीच काफी अंतर हो जाता है। ऐसे में पौष्टिक नाश्ता शरीर को दिन के काम के लिए ऊर्जा देने में मदद करता है। अगर हम नियमित रूप से संतुलित नाश्ता करते हैं तो दिन की शुरुआत बेहतर तरीके से हो सकती है। खेत में काम करने वाले व्यक्ति के लिए पर्याप्त ऊर्जा जरूरी है, बच्चों के लिए पढ़ाई और खेलकूद के लिए ऊर्जा जरूरी है और महिलाओं के लिए घर और बाहर की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए पौष्टिक भोजन जरूरी है। क्योंकि नाश्ता केवल पेट भरने के लिए नहीं बल्कि शरीर को अलग अलग पोषक तत्व देने का एक अच्छा अवसर है। नाश्ते में हमें कोशिश करनी चाहिए कि भोजन में अनाज के साथ दाल और अन्य प्रोटीन स्रोत, दूध दही जैसे खाद्य पदार्थ, मौसमी फल सब्जियां और जरूरत के अनुसार मेवे और बीज भी शामिल हो। श्रोता साथियों, पौष्टिक नाश्ता सुनकर यह मत सोचिए कि इसके लिए बाजार से महंगे खाद्य पदार्थ खरीदने पड़ेंगे। हमारे आसपास और हमारे घरों में ऐसी कई चीजें उपलब्ध होती हैं मनीषा, जो स्वादिष्ट होने के साथ पोषण से भरपूर हो सकती हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बाजरा, मक्का, ज्वार, गेहूं, ये स्थानीय अनाज हम खा सकते हैं। मूंग, चना, मसूर दालें खा सकते हैं। भुना चना, मूंगफली, दूध, दही, छाछ, मौसमी हरी सब्जियां, केले।

0: अमरूद, पपीता, तिल, अलसी के बीज, पोहा, उपमा, दलिया, रागी और अन्य मोटे अनाज से बने व्यंजन। श्रोता साथियों, इन चीजों को मिलाकर हम घर पर ही कई तरह के पौष्टिक नाश्ते तैयार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सब्जियों वाला पोहा बनाया जा सकता है, उसमें मूंगफली या थोड़ी दाल डालने से भोजन को और पौष्टिक बनाया जा सकता है। इसी तरह दलिया और सब्जियां डालकर बनाया जा सकता है। बाजरे और ज्वार की रोटी के साथ दही मिलाया जा सकता है। भुना चना और मौसमी फल भी आसानी से खाए जा सकते हैं। यानी कि पौष्टिक नाश्ता बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज महंगाई नहीं बल्कि सही भोजन का चुनाव और थोड़ी सी योजना है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि पौष्टिक भोजन का अर्थ श्रोता साथियों केवल पेट भरना नहीं है, ऐसा भोजन है जिसमें हमारे शरीर को अलग अलग पोषक तत्व है वो उचित मात्रा में मिले और जो हमारा शरीर का संतुलन है उसे बनाकर रखें। हम देखते हैं कि हमारे भोजन में अनाज, दालें, अन्य जो प्रोटीन के स्रोत होते हैं, जैसे कि श्रोता साथियों सब्जियां, दूध, दही या जैसे कि खाद्य पदार्थ, जैसे जो पदार्थ होते हैं उन्हें हम शामिल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए श्रोता साथियों, अगर सुबह केवल मीठी चाय और बिस्किट लिए जाए तो हम देखते हैं कि श्रोता साथियों कि इससे हमारा पेट तो भर सकता है लेकिन हमारे शरीर की जो सभी पोषक तत्वों की जरूरत होती है वो पूरी नहीं हो पाती। इसके बजाय श्रोता साथियों चने के साथ गुड़ आप ले सकते हैं, दही के साथ पोहा आप खा सकते हैं, दूध के साथ दलिया खा सकते हैं या जो सब्जियां होती है उनके साथ आप रोटी का विकल्प है वो भी चुन सकते हैं।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यही श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि हमारे ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग सुबह जल्दी उठकर खेत, मजदूरी, पशुपालन और दूसरे कामों के लिए निकल जाते हैं। जो व्यक्ति सुबह से शारीरिक मेहनत करता है उसके लिए सुबह का भोजन छोड़ देना ठीक आदत नहीं है। केवल चाय पीकर कई घंटे तक मेहनत करने से पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता। ऐसे में नाश्ते में स्थानीय अनाज, दाल, चना, मूंगफली, दही और मौसमी फल जैसी चीजों का संयोजन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए बाजरे की रोटी, दही और हरी सब्जी, या फिर चना, मूंगफली या मौसमी फल या दूध दही हम ले सकते हैं। श्रोता साथियों, ये विकल्प घर की उपलब्धता के अनुसार रखे जा सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हर परिवार की आर्थिक स्थिति, भोजन की उपलब्धता और जरूरत अलग होती है, इसलिए नाश्ता ऐसा होना चाहिए जो स्थानीय उपलब्ध पसंद के अनुसार और नियमित रूप से किया जा सके।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चली रही हैं। तो ये बातें हमारे आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी, लेकिन क्यों ना अभी श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दे।
0: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि गीत से पहले हम पौष्टिक नाश्ते को लेकर ढेर सारी बातें जान रहे थे कि किस तरीके से सुबह का नाश्ता हमें कभी नहीं छोड़ना है, यही मनीषा बात आती है बच्चों के लिए नाश्ते की। तो श्रोता साथियों, बच्चे सुबह उठकर स्कूल जाते हैं, उन्हें पढ़ाई के साथ खेलना, दौड़ना और दूसरी गतिविधियों में भाग लेना होता है, इसलिए सुबह का भोजन उनके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। कई बार बच्चे नाश्ता करने में मना करते हैं या माता पिता समय की कमी के कारण उन्हें सिर्फ बिस्किट या पैकेट वाला खाद्य पदार्थ देकर स्कूल भेज देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे में घर में उपलब्ध पौष्टिक चीजों से बच्चों के लिए आकर्षक नाश्ता बनाया जा सकता है, जैसे कि दूध या दही के साथ फल, सब्जियों वाला पोहा, मूंग दाल का चिल्ला, दलिया, घर का बना पराठा और दही, रागी या बाजरे का व्यंजन, भुना चना और फल। बच्चों को जबरदस्ती खिलाने के बजाय भोजन को स्वादिष्ट, रंगीन और उसकी पसंद के अनुसार प्रस्तुत करने की कोशिश की जा सकती है। और एक महत्वपूर्ण बात कि बच्चों को नाश्ता कराने के साथ उन्हें पानी पीने की आदत भी डालनी है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ अगर बात करें कि भोजन में विविधता क्यों जरूरी है इसकी, तो श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि रोज एक ही चीज खाने के बजाय अलग अलग प्रकार के भोजन को हम हमारे भोजन में शामिल कर सकते हैं। इससे भोजन में विभिन्न पोषक तत्व शामिल होने के अवसर भी मिलते हैं। हम देखते हैं कि एक दिन श्रोता साथियों हम पोहा बना सकते हैं, दूसरे दिन दलिया बना सकते हैं, किसी दिन मूंग या चना हम खा सकते हैं, किसी दिन श्रोता साथियों रोटी सब्जी या उपमा भी खा सकते हैं। श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि मौसमी फल और सब्जियों को भी हम हमारे भोजन में शामिल कर सकते हैं। इससे हम देखते हैं कि भोजन स्वादिष्ट होने के साथ साथ विविध भी बनता है।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि सुबह उठने के बाद शरीर को पानी की भी बहुत जरूरत होती है, इसीलिए दिन की शुरुआत ही वो पर्याप्त पानी पीने से भी हम कर सकते हैं।
0: जी जी।
1: इसके बाद श्रोता साथियों अपनी दिनचर्या और जरूरत के अनुसार सुबह भोजन हम कर सकते हैं। पानी शरीर की सामान्य प्रक्रियाओं के लिए श्रोता साथियों बहुत जरूरी होता है। हालांकि श्रोता साथियों हर व्यक्ति को पानी की जरूरत अलग अलग होती है। मौसम, काम और शारीरिक गतिविधियों के अनुसार पानी की जो प्रक्रिया होती है वो अलग अलग होती है, इसलिए श्रोता साथियों में प्यास लगने पर समय समय पर पानी पीते रहना चाहिए और सुबह उठने पर सबसे पहले हमें पानी पीना चाहिए।
0: जी हाँ मनीषा, घर में अक्सर महिला सबसे पहले उठती है और परिवार के बाकी सदस्यों के लिए खाना तैयार करती है, बच्चों को खिलाती है, पति को खाना देती है और घर के काम में लग जाती है। लेकिन कई बार इसी भागदौड़ में महिला खुद नाश्ता नहीं करती। ये आदत धीरे धीरे शरीर को पर्याप्त पोषण से दूर कर सकती है, इसलिए परिवार की देखभाल करने वाली महिला को भी अपने भोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए। सबको खिलाने के बाद खाऊंगी की जगह कोशिश करें कि सुबह अपने लिए भी पौष्टिक नाश्ता समय पर बना लें। घर में जो पौष्टिक भोजन उपलब्ध है उसमें से महिला को भी पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलना चाहिए।
1: जी हाँ।
0: क्योंकि पौष्टिक नाश्ते के लिए कोई एक तय व्यंजन जरूरी नहीं है। मुख्य बात है कि भोजन में अलग अलग खाद्य समूह का संतुलन हो। एक आसान तरीका ये हो सकता है कि नाश्ते में एक अनाज, एक प्रोटीन स्रोत, फल, सब्जी, दूध, दही जैसे खाद्य पदार्थ को अपनी उपलब्धता के अनुसार शामिल किया जा सकता है।
1: हाँ।
0: उदाहरण के लिए बाजरे की रोटी, दही और सब्जी खा सकते हैं, या मूंग दाल का चिल्ला, हरी चटनी या फल खा सकते हैं, या सब्जियों वाला पोहा, मूंगफली और फल खा सकते हैं, या दलिया, दूध और मौसमी फल। इस तरह के छोटे छोटे बदलाव करके रोज के नाश्ते में विविधता लाई जा सकती है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि कई बार लोग पौष्टिक भोजन को महंगा भोजन समझ लेते हैं। यह सोच वो श्रोता साथियों सही नहीं है। पौष्टिक भोजन घर की उपलब्ध सामग्री में भी हम तैयार कर सकते हैं।
0: जी जी।
1: जरूरी है श्रोता साथियों कि हम भोजन को केवल स्वाद और पेट भरने पर ध्यान न दें, बल्कि यह सोचे कि हमारे शरीर को क्या पोषण की जरूरत है। अगर घर के बड़े इस बात को समझे तो अंजलि जी, हम देखते हैं कि हमारे बच्चे हैं वो भी अच्छे आदतों से शुरुआत कर सकते हैं भोजन की।
0: जी हाँ मनीषा, हमारे गाँव में कई ऐसे पारंपरिक खाद्य पदार्थ हैं जो पीढ़ियों से भोजन का हिस्सा रहे हैं। बाजरा, मक्का, ज्वार, चना, मूंग दालें, तेल, मूंगफली, मौसमी सब्जियां और स्थानीय फल। श्रोता साथियों, ये सभी हमारे आसपास आसानी से मिल सकते हैं। इनसे बने पारंपरिक व्यंजनों को आधुनिक तरीके से भी नाश्ते में शामिल किया जा सकता है। इससे एक तरफ भोजन में विविधता आती है तो दूसरी तरफ स्थानीय खाद्य परंपराओं को भी बढ़ावा मिलता है। हमें यह समझने की जरूरत है कि पौष्टिक भोजन हमेशा बाजार में मिलने वाला महंगा भोजन नहीं होता। कई बार हमारे घर और खेत के आसपास उपलब्ध खाद्य पदार्थ ही हमारी रसोई की ताकत होते हैं। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि दिन की अच्छी शुरुआत केवल जल्दी उठने से नहीं होती, बल्कि अपने शरीर को सही शुरुआत देने से भी होती है। सुबह की थाली छोटी हो सकती है, लेकिन उसमें पोषण की जगह बड़ी होनी चाहिए। हमारे घर की रसोई में मौजूद बाजरा, मक्का, ज्वार, चना, दाल, मूंगफली, दूध, दही, सब्जियां और मौसमी फल, इन सबको अपनी सुविधा और उपलब्ध के अनुसार नाश्ते का हिस्सा बनाया जा सकता है। जब परिवार का हर सदस्य सुबह पौष्टिक भोजन करता है तो हम केवल एक वक्त का खाना नहीं खा रहे होते बल्कि स्वस्थ आदतों की नींव रख रहे होते हैं। इसलिए कल सुबह जब रसोई में नाश्ता तैयार हो श्रोता साथियों, तो एक बार जरूर सोचिए कि क्या मेरी थाली में सिर्फ स्वाद है या शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व भी, क्योंकि पौष्टिक नाश्ता अपनाएं, दिन को ऊर्जा से भर जाए। इसी संदेश के साथ अब कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य से हम विदा लेने की अनुमति चाहेंगे। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।
1: जी बिल्कुल।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य और हमारी स्वास्थ्यप्रद बातें अब यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातें रही, गीत संगीत रही, वो आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे।
1: जी हाँ।
0: तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारश्कर
0: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
1: नमस्कार।

0: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

भाई न बोनो, घर तक ही निकलते वक्त कोई आपनो इंतजार करी रू है। माँ नी दुआ, पिता नी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित्य जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपनो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ
1: कशिश, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है कि क्या समस्या का समाधान तुरंत मिलना जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि आज का सवाल बहुत सीधा सा है लेकिन इसका जवाब उतना ही सीधा नहीं है। जरा श्रोता साथियों

0: चाहते हैं कि उसी समय सब ठीक हो जाए। किसी योजना में अड़चन आई, हम चाहते हैं कि उसी दिन उसका समाधान मिल जाए। आज की जिंदगी ने हमें बहुत कुछ तुरंत पाने की आदत डाल दी है। खाना चाहिए कुछ मिनट में, जानकारी चाहिए मोबाइल पर तुरंत, किसी सवाल का जवाब चाहिए तुरंत खोज लेते हैं।
1: जी हाँ।
0: धीरे धीरे हमारी सोच भी ऐसे ही होने लगी है कि अगर समस्या है तो उसका समाधान अभी मिल जाना चाहिए। लेकिन जिंदगी कोई मोबाइल ऐप नहीं है जहाँ हर समस्या के लिए तुरंत एक बटन दबाएं और जवाब सामने आ जाए।
1: बिल्कुल।
0: कुछ समस्याएं तुरंत हल हो जाती हैं, कुछ के लिए समय चाहिए और कुछ समस्याओं का समाधान बाहर से नहीं, हमारे सोचने के तरीके में बदलाव से आता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी।
0: आज हम इसी बात को थोड़ा गहराई से समझेंगे कि समस्या का समाधान तुरंत मिलना जरूरी है या नहीं।
1: जी हाँ अंजलि जी, तो बातें ढेर सारी होंगी आज के इस कार्यक्रम में, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना दोस्तों को पहले यहाँ एक प्यारा सा गीत हम सुनवाएं।
0: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसे कि दोस्तों, गीत से पहले विषय आपको बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि हर समस्या का समाधान हमें तुरंत मिलना जरूरी नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: हम जैसा कि जानते हैं अंजलि जी कि आज की हमारी जो जिंदगी है वो काफी तेज रफ्तार से चल रही है, और इस तेज रफ्तार जिंदगी में हम चाहते हैं कि हमारी हर परेशानी का समाधान हमें तुरंत मिल जाए। मोबाइल पर संदेश भेजा है तो तुरंत जवाब आना जरूरी है, किसी काम के लिए आवेदन किया है तो तुरंत परिणाम भी चाहिए, बीमार हुए हैं तो तुरंत आराम भी मिल जाए, किसी समस्या की शिकायत की है तो उसी समय उसका समाधान निकल जाए।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन दोस्तों, क्या जीवन की हर समस्या का समाधान तुरंत मिल सकता है? क्या हर समस्या का तुरंत समाधान मिलना वास्तव में जरूरी है? अगर हम इस बात को थोड़े अच्छे तरीके से जाने अंजलि जी, तो आज तकनीक ने हमारे जीवन को बहुत तेज बना दिया है, ये बात हम सभी जानते हैं।
1: बिल्कुल।
0: कुछ वर्ष पहले श्रोता साथियों, जिस काम में कई दिन लगते थे अब वो कुछ मिनटों में ही हो जाता है। हम घर बैठे ही पैसे भेज सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, टिकट बुक कर सकते हैं और दूर बैठे व्यक्ति से बातचीत कर सकते हैं।
1: बिल्कुल कशिश,
0: कहा जा सकता है कि सुविधा ने हमारी अपेक्षाएं तो बढ़ा दी है। हमें लगता है कि हर समस्या का समाधान भी उसी गति से होना चाहिए, लेकिन जीवन की सभी समस्याएं एक जैसी नहीं होती। कुछ समस्याएं छोटी होती है और उनका समाधान तुरंत किया जा सकता है।
1: बिल्कुल।
0: उदाहरण के लिए बिजली का छोटा मोटा तकनीकी दोष, किसी दस्तावेज की जानकारी या किसी सामान्य जानकारी से जुड़ी परेशानी। लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी और बड़ी होती है श्रोता साथियों, जिनका तुरंत समाधान नहीं मिल सकता।
1: बिल्कुल कशिश, समस्या से ज्यादा कई बार हमें समस्या के बने रहने का डर परेशान करता है। हम सोचते हैं कि अब क्या होगा, ये सब ठीक होगा, इसका रास्ता क्यों नहीं निकल रहा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता रहता है। हमारा मन तुरंत जवाब चाहता है, लेकिन श्रोता साथियों, हर समस्या का जवाब उसी क्षण मिलना संभव नहीं है। मान लीजिए कि खेत में फसल से जुड़ी कोई परेशानी आ गई, किसान तुरंत कारण जानना चाहेगा, यह स्वाभाविक सी बात है। लेकिन सही समाधान के लिए खेत की स्थिति देखनी होगी, मौसम समझना होगा, मिट्टी की स्थिति देखनी होगी और जरूरत पड़े तो कृषि विशेषज्ञ से सलाह भी लेनी होगी।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथियों, अगर सिर्फ जल्दबाजी में कोई उपाय कर लिए जाए तो समस्या कम होने के बजाय और बढ़ सकती है।
0: बिल्कुल।
1: यही बात जीवन की दूसरी समस्याओं पर भी लागू होती है, क्योंकि जल्दी समाधान और सही समाधान दोनों हमेशा एक ही चीज नहीं होते हैं। इसलिए हर समस्या को समय चाहिए होता है।
0: जी हाँ।
1: क्यों चाहिए होता है? तो दोस्तों, कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका समाधान जानकारी मिलने से होता है।
0: जी हाँ।
1: लेकिन कुछ समस्याएं परिस्थितियों से जुड़ी होती हैं, कुछ रिश्तों से जुड़ी होती हैं, कुछ भावनाओं से जुड़ी होती हैं, कुछ वर्षों से चली आ रही आदतों से जुड़ी होती हैं, और कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका कोई एक समाधान होता ही नहीं है। ऐसी स्थिति में कशिश, हमें केवल यह पूछने की बजाय कि यह कब ठीक होगा, कभी कभी यह पूछना चाहिए कि जब तक यह ठीक नहीं होता तब तक मैं इसे बेहतर तरीके से कैसे संभाल सकता हूँ।
0: बिल्कुल।
1: और यह सवाल हमारी सोच बदल देता है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, और जैसा कि हम सभी जानते हैं श्रोता साथियों कि हमारे जीवन में भी ऐसी ढेर सारी समस्याएं होती हैं जिनका कई बार हमें तुरंत परिणाम नहीं मिल पाता है।
1: बिल्कुल।
0: ऐसे में जो हमारे युवा साथी होते हैं अंजलि जी, वो हम देखते हैं कि कई बार तनाव में आ जाते हैं और इसके कारण वो कई गलत गतिविधियां भी कर देते हैं। लेकिन श्रोता साथियों, ऐसे में हमें धैर्य रखने की काफी जरूरत होती है, क्योंकि कुछ बातें ऐसे होती हैं जिन्हें जल्दी से हल नहीं किया जा सकता। कुछ चीजों के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है, जैसे कि अगर कोई हमारे युवा साथी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं अंजलि जी, तो उन्हें परिणाम के लिए मेहनत करनी होगी।
1: बिल्कुल।
0: और मेहनत करने के बाद उन्हें धैर्य भी रखना होगा, क्योंकि परिणाम तुरंत नहीं मिलेगा। हो सकता है कि वो पहली बार में असफलता प्राप्त करे, दूसरी बार में भी असफलता प्राप्त करे, लेकिन अगर वो निरंतर प्रयास करते रहेंगे, बार बार मेहनत करते रहेंगे, तो वो एक न एक दिन सफल जरूर होंगे।
1: बिल्कुल कशिश, मान लिया जाए कि परिवार के दो लोगों के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव हो गया, दोनों नाराज हैं। एक व्यक्ति चाहता है कि दूसरा तुरंत माफी मांगे।
0: बिल्कुल।
1: दूसरा चाहता है कि पहले सामने वाला अपनी गलती माने। दोनों अपनी जगह पर अड़े हैं। अगर हम तुरंत समाधान निकालने के दबाव में बातचीत बातचीत करेंगे तो संभव है कि बात और बिगड़ जाए।
0: जी
1: कभी
0: हाँ।
1: कभी थोड़ा समय देना जरूरी होता है। मन शांत होने के बाद वही बात ज्यादा आसानी से कही जा सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि समस्या को हमेशा टालते रहें, बल्कि मतलब है कि सही समय पर सही तरीके से समस्या का सामना करना है।
0: जी हाँ।
1: श्रोता साथियों, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि समय अपने आप हर समस्या का समाधान नहीं करता। कभी कभी समय केवल हमें सोचने का अवसर देता है। समाधान तब आता है जब हम उसी समय का उपयोग सही तरीके से करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: उदाहरण के लिए कि अगर कोई व्यक्ति बार बार एक ही गलती करता है तो सिर्फ समय गुजारने से समस्या खत्म नहीं होती है। उसे ये समझना होगा कि गलती क्यों हो रही है, क्या आदत बदलनी होगी, क्या तरीका बदलना होगा, क्या किसी से सलाह लेनी होगी, क्या कोई नई जानकारी सीखनी है। इसलिए हमें केवल इंतजार नहीं करना है। धैर्य का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है। धैर्य का मतलब है घबराहट में गलत कदम न उठाना और सही कदम के लिए खुद को तैयार करना।
0: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो जैसा कि श्रोता साथियों से कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें बहुत अच्छी चल रही है और हम जान रहे हैं कि किस प्रकार से हर समस्या का तुरंत समाधान हमें नहीं मिल सकता, तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे। लेकिन अभी क्यों ना साथियों को यहाँ पर एक और गीत के साथ मनोरंजन हम करवाएं।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही श्रोता साथियों बात करें कि तुरंत समाधान की आदत हमें क्यों नुकसान देती है।
1: बिल्कुल।
0: तो कशिश, आज हम हर चीज का जल्दी परिणाम चाहते हैं। हम पौधा लगाते हैं तो जल्दी पेड़ देखना चाहते हैं। नई चीज सीखते हैं तो तुरंत माहिर बनना चाहते हैं। काम शुरू करते हैं तो तुरंत सफलता चाहते हैं। रिश्ते में परेशानी आती है तो तुरंत सब पहले जैसा चाहते हैं।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन श्रोता साथियों, प्रकृति हमें कुछ और सिखाती है। बीज बोने के बाद पौधे को समय लगता है उगने में, बच्चों को सिखाने में समय लगता है, रिश्तों में विश्वास बनाने में समय लगता है, घाव भरने में समय लगता है और इंसान को अपने भीतर बदलाव लाने में भी समय लगता है। और हर अच्छी चीज अपनी गति लेती ही है।
1: बिल्कुल।
0: जब समाधान तुरंत न मिले तो श्रोता साथियों, सबसे पहले समस्या को छोटे हिस्से में बांटिए। अपने आप से पूछिए कि इस समय मेरे हाथ में क्या है। अगर आर्थिक समय है तो क्या खर्चों में व्यवस्था की जा सकती है। अगर पढ़ाई में दिक्कत है तो क्या रोज थोड़ा समय पढ़ाया जा सकता है। अगर काम समझ नहीं आ रहा तो क्या किसी अनुभवी व्यक्ति से पूछा जा सकता है। अगर रिश्ते में तनाव है कशिश, तो क्या बातचीत का सही समय चुना जा सकता है। अगर किसी योजना में अड़चन है तो क्या जानकारी दोबारा जांची जा सकती है। जब हम पूरी समस्या को एक पहाड़ की तरह देखते हैं तो वह बहुत बड़ी लगती है। लेकिन जब हम पूछते हैं कि आज मैं एक छोटा कदम क्या उठा सकता हूँ, तो रास्ता दिखाई देना शुरू होता है। हम अक्सर मान लेते हैं कि समाधान का मतलब जो मैं चाहता हूँ वही हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी कभी समाधान यह स्वीकार करना भी होता है कि रास्ता बदलना पड़ेगा।
1: बिल्कुल।
0: मान लीजिए कशिश कि कोई युवा किसी एक काम को करना चाहता था, लेकिन परिस्थितियाँ उसे वह काम करने नहीं देती। इसका अर्थ ये नहीं हुआ श्रोता साथियों कि उसका जीवन रुक गया।
1: बिल्कुल।
0: दूसरे रास्ते खोज सकता है, वह अपनी क्षमता पहचान सकता है, नई चीजें सीख सकता है और छोटी छोटी शुरुआत कर सकता है।
1: बिल्कुल।
0: यानी कि समाधान हमेशा श्रोता साथियों परिस्थितियां बदलना नहीं होता। कई बार परिस्थिति के अनुसार अपनी दिशा बदलना भी समाधान का हिस्सा होता है।
1: जी हाँ अंजलि जी, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। साथ ही हम देखते हैं कि हर समस्या एक जैसे भी नहीं होती, क्योंकि श्रोता साथियों समस्याओं की जो प्रकृति होती है वो काफी अलग अलग होती है।
0: बिल्कुल।
1: जैसे कि दुर्घटना, आग, गंभीर बीमारी या किसी आपात स्थिति में तुरंत कदम उठाना जरूरी होता है। वहीं जो शिक्षा, करियर, रिश्तों या आर्थिक मामलों से जुड़ी समस्याएं होती हैं, उनमें जल्दबाजी के बजाय सोच समझ कर निर्णय लेना बेहतर होता है। इसलिए साथियों समाधान की गति समस्या की प्रकृति पर ही निर्भर करती है।
0: बिल्कुल।
1: हम कह सकते हैं कि कई बार हम समस्या से परेशान होकर तुरंत कोई निर्णय

0: ले लेते हैं। ऐसे में भावनाओं में लिया गया निर्णय अंजलि जी बाद में नई परेशानी खड़ी कर सकता है।
1: जी जी।
0: यदि हम कुछ समय शांत होकर समस्या के कारणों को समझेंगे तो सही समाधान खोजने की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए हर परिस्थिति में तुरंत निर्णय लेना हमारे लिए समझदारी है।
1: जी हाँ कशिश, सामुदायिक जीवन में भी यह बात बहुत जरूरी है कि गांव में पानी की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, सफाई की समस्या हो, स्कूल से जुड़ी समस्या हो या किसी सार्वजनिक सुविधा की कमी हो, इन समस्याओं के समाधान के लिए केवल शिकायत करना पर्याप्त नहीं है। समस्या को समझना होगा, सही जगह बात करनी होगी, समुदाय को साथ लाना होगा, जिम्मेदार व्यक्ति या विभाग तक जानकारी पहुंचानी होगी। जरूरत पड़ने पर फिर से संपर्क करना होगा और समाधान आने तक प्रक्रिया को समझना होगा।
0: बिल्कुल।
1: श्रोता साथियों, कभी कभी किसी सामुदायिक समस्या का समाधान समय लेता है। ऐसे में निराश होकर यह कहना कि कुछ नहीं हो सकता समस्या को और मजबूत करता है। इसकी बजाय कहें कि पहला कदम क्या हो सकता है, यह सवाल समुदाय को आगे बढ़ाता है, क्योंकि कहा गया है कि हर बंद दरवाजा उसे पल नहीं खुलता, कुछ दरवाजों के लिए सही चाबी खोजनी पड़ती है।
0: बिल्कुल।
1: हर उलझन उसे पल नहीं सुलझती, कुछ गांठों को धीरे धीरे खोलना पड़ता है।
0: जी।
1: दोस्तों, आज के बच्चों और युवाओं पर भी तुरंत परिणाम का दबाव बहुत ज्यादा है। परीक्षा में अच्छे नंबर चाहिए, खेल में तुरंत जीत चाहिए, नई कला सीखते ही सफलता चाहिए, सोशल मीडिया पर तुरंत प्रतिक्रिया चाहिए, लेकिन जीवन में सीखने की प्रक्रिया हमेशा तेज नहीं होती।
0: बिल्कुल।
1: किसी बच्चे को गणित समझने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है, किसी युवा को अपनी दिशा तय करने में समय लगता है, किसी को नई नौकरी का कौशल सीखने में समय लग सकता है।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए हमें यह नहीं कहना चाहिए कि तुम अभी तक क्यों नहीं इस चीज को कर पाए, बल्कि यह कहना चाहिए कि चलो फिर से कोशिश करते हैं, देखते हैं कहाँ कठिनाइयां आ रही हैं।
0: यह
1: भाषा व्यक्ति को दबाव नहीं आगे बढ़ने की जगह देती है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ अगर बात करें तो किसी समस्या का केवल बाहरी समाधान करना भी पर्याप्त नहीं होता। दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि समस्या उत्पन्न क्यों हुई है। यदि हम केवल लक्षण को दूर कर दे और मूल कारण को न समझे अंजलि जी, तो वही समस्या दोबारा सामने हमारे आ सकती है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए स्थायी समाधान के लिए समस्या की जड़ तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है। धैर्य का भी समाधान हम कर सकते हैं, जैसे कि धैर्य में कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की शक्ति देता है।
1: जी जी।
0: साथ ही जब हम धैर्य रखते हैं तो हम अलग अलग विकल्पों पर विचार कर पाते हैं और उनके परिणामों को भी समझ सकते हैं।
1: जी हाँ।
0: धैर्य का अर्थ समस्या को टालना नहीं बल्कि सही समय पर सही कदम उठाने की तैयारी भी करना होता है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा, जब अगली बार कोई समस्या हमारे सामने आए तो तुरंत घबराने के बजाय हमें तीन बातें याद रखनी है।
0: बिल्कुल।
1: पहली बात कि वास्तविक समस्या क्या है, दूसरी बात कि छोटा कदम भी कदम होता है।
0: जी जी।
1: तीसरी बात, हर परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देता, और सबसे जरूरी बात कि जल्दबाजी में ऐसा समाधान मत चुनिए जो बाद में नई समस्या पैदा कर ले।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए दोस्तों, हर समस्या को तुरंत खत्म करने की जरूरत नहीं है, उसे समझना भी जरूरी है।
0: जी हाँ अंजलि जी, तो जैसा कि श्रोता साथियों से हम कार्यक्रम के माध्यम से बातचीत कर ही रहे हैं, यही बात करते हैं साथियों की तुरंत समाधान और स्थायी समाधान में भी अंतर होना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: जैसे कि किसी समस्या का तुरंत समाधान मिल जाना हमेशा ये साबित नहीं करता कि समस्या पूरी तरह समाप्त हो चुकी है, बल्कि कई बार अंजलि जी तत्काल समाधान केवल थोड़े समय के लिए ही राहत देता है। श्रोता साथियों, स्थायी समाधान के लिए योजना, निरंतर प्रयास और सही रणनीति की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए हमें केवल जल्दी समाधान के बजाय प्रभावी और टिकाऊ समाधान पर भी ध्यान देना चाहिए।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में हम ढेर सारी बातों को जान रहे हैं, आगे भी महत्वपूर्ण बातें हैं जो यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ अंजलि जी, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि दोस्तों, हर स्थिति का तुरंत समाधान मिलना जरूरी नहीं है, इस विषय को लेकर हम बातचीत कर रहे थे और गीत से पहले हम तुरंत समाधान और स्थायी समाधान के बीच अंतर को जान पाए थे। अंजलि जी, यही अगर बात करें कि समस्याएं हमें सीखने का अवसर किस प्रकार से देती है, तो श्रोता साथियों, हर समस्या केवल परेशानी नहीं होती,
1: बिल्कुल,
0: बल्कि वह हमें कुछ नया सिखाती भी है। कठिन परिस्थितियां हमारे अनुभव और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाती है। यदि हम हर समस्या का समाधान तुरंत हमें मिल जाए, तो शायद हमें अपनी गलतियों से सीखने और परिस्थिति से संघर्ष करने का अवसर कम मिलेगा।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए दोस्तों, समस्याओं का सामना करना भी जीवन की सीख का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम देखते हैं कि कई समस्याएं अकेले हल नहीं की जा सकती, उस समय परिवार, मित्र, सहकर्मी या विशेषज्ञ की सलाह की आवश्यकता पड़ सकती है। अंजलि जी, दूसरों की बात सुनकर हमें समस्याओं को एक अलग दृष्टिकोण से देखने का अवसर मिलता है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए सही समाधान पाने के लिए आवश्यकता पड़ने पर सहयोग लेना भी जरूरी होता है।
1: बिल्कुल कशिश, जिंदगी को हम हमेशा अलग तरीके से देखते हैं। अगर हमें ध्यान से हमारी जिंदगी को देखें, तो हमें पता चलता है कि हर उलझन का काम केवल हमें परेशान करना नहीं होता।
0: बिल्कुल।
1: कुछ उलझनें हमारे सामने इसलिए आती हैं ताकि हम अपने भीतर छिपी क्षमताओं को पहचान सकें, जिनकी हमें अभी तक जरूरत ही महसूस नहीं हुई थी।
0: बिल्कुल।
1: कई बार हम किसी जवाब को बाहर तलाशते हैं, वह हमें धीरे धीरे हमारे अनुभवों से बन जाता है। आज जो परिस्थिति हमें कठिन लग रही है, हो सकता है कि कल वही हमें किसी बड़े निर्णय के लिए तैयार कर दे।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए श्रोता साथियों, किसी कठिन दौर को केवल परेशानी समझकर छोड़ देना नहीं, उसके भीतर छिपी सीख को देखकर भी बहुत कुछ सीखना जरूरी है।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि जीवन में हर चीज हमारी इच्छा के समय पर नहीं होती है। कुछ असर देर से आते हैं, कुछ रिश्ते समय के साथ अपनी असली तस्वीर दिखाते हैं, कुछ फैसलों का परिणाम समझने में वक्त लगता है,
0: बिल्कुल,
1: कुछ रास्ते चलते चलते ही साफ हो जाते हैं। इसका मतलब श्रोता साथी, यह नहीं है कि हम रुक गए हैं। कई बार गति धीमी भी आगे बढ़ने का एक रूप हो सकती है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, हम देखते हैं साथियों कि समस्या का समाधान जितनी जल्दी मिला, इससे अधिक महत्वपूर्ण ये है कि समाधान कितनी सही और प्रभावी है। यदि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय समस्या को और बढ़ा दे अंजलि जी, तो उसका कोई लाभ ही नहीं होता।
1: बिल्कुल।
0: अगर हम इसके विपरीत देखें, तो थोड़ा समय लेकर लिया गया सही निर्णय लंबे समय तक लाभ दे सकता है। इसलिए साथियों, हमारा लक्ष्य केवल तुरंत समाधान नहीं, बल्कि सही समाधान होना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: हम कह सकते हैं कि समस्या का समाधान तुरंत मिलना जरूरी नहीं है, कुछ परिस्थितियों में तत्काल कार्रवाई आवश्यक हो सकती है, लेकिन कई समस्याओं के लिए धैर्य, विचार विमर्श और समय की जरूरत भी होती है। हमें समस्या से घबराने या जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय साथियों, उसकी प्रकृति और कारण को पहले समझना चाहिए।
1: बिल्कुल कशिश, हमें यह भी समझना होगा कि समाधान का अर्थ हमेशा परिस्थिति को अपने मन के अनुसार बदल देना नहीं है। कभी समाधान यह होता है कि हम किस परिस्थिति को नए नजरिए से देखना सीख जाए। कभी किसी चीज को स्वीकार करना समाधान की शुरुआत बनता है, कभी किसी पुराने तरीके को छोड़ देना और कभी किसी नए रास्ते पर पहला कदम रखना। इसलिए जब जिंदगी में कोई परेशानी या कोई स्थिति ऐसी आती है जिसका उत्तर तुरंत दिखाई न दे, तो अपने मन पर यह जवाब मत डालिए कि आपको उसी क्षण सब कुछ समझना ही है।
0: बिल्कुल।
1: अपने आप को थोड़ा समय दीजिए, अपने अनुभव को बोलने दीजिए, उन लोगों से सीखिए जो उस परिस्थिति को आपसे बेहतर समझते हैं, और उससे जरूरी है कि अपने फैसले डर के कारण नहीं, समझ के आधार पर लेने की कोशिश कीजिए।
0: जी हाँ।
1: याद रखिए कि जल्दी खत्म हो जाना हमेशा अच्छी बात नहीं होती, सही तरीके से सुलझ जाना ज्यादा महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि कशिश, एक बीज को मिट्टी के भीतर रहने का समय चाहिए होता है, तभी वह बाहर आकर पौधा बनता है। उसी तरह इंसान के जीवन में भी कुछ दौर ऐसे होते हैं जहां बाहर से बहुत कम दिखाई देता है,
0: बिल्कुल,
1: लेकिन भीतर बहुत कुछ तैयार हो रहा होता है। इसलिए अगर आज आपकी जिंदगी में कोई सवाल अनसुलझा है, कोई रास्ता साफ नहीं है, या किसी काम का परिणाम आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं आया है, तो उसे अपनी पूरी जिंदगी का फैसला मत मान लीजिए।
0: जी हाँ।
1: आज का अधूरा अपन कल की पूरी कहानी नहीं होता।
0: बिल्कुल।
1: हो सकता है कि अभी आपको केवल एक कदम दिखाई दे, वही कदम उठाएं, आगे का रास्ता चलते हुए भी दिखाई दे सकता है।
0: बिल्कुल।
1: शायद जीवन की खूबसूरती भी यही है कि हम हर मोड़ से पहले पूरी सड़क दिखाई नहीं देती है,
0: जी जी,
1: फिर भी हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें विश्वास होता है कि अगला मोड़ आने पर कुछ नया दिखाई देगा।
0: बिल्कुल,
1: आज से श्रोता साथियों समस्याओं को देखकर सिर्फ यह मत पूछिए कि यह कब खत्म होगी, कभी यह भी पूछिए कि यह परिस्थिति मुझे क्या दिखा रही है, मुझे इसे क्या सीख मिलती है, इसके बावजूद आज मैं कौन सा छोटा कदम उठा सकता हूँ। क्योंकि जिस दिन हम हर कठिन परिस्थिति में केवल परेशानी नहीं बल्कि समाधान देखना शुरू करेंगे, उसी दिन हमारे भीतर का नजरिया बदलने लगेगा।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि जिंदगी का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, ये जरूरी नहीं, लेकिन रास्ते की कठिनाई हमेशा रोक दे ये भी जरूरी नहीं है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। साथी अगर बात करें तो सलाह लेना भी कमजोरी नहीं है। साथियों, सही व्यक्ति से समय पर सहायता लेने से समस्या को समझने और उचित रास्ता खोजने में आपको मदद मिल सकती है।
1: बिल्कुल,
0: हर परिस्थिति को आप अपनी इच्छा के अनुसार नहीं बदल सकते। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं अंजलि जी जो हमारे सामने अचानक से आ जाती है और उस वक्त व्यक्ति को यह पता नहीं होता कि उसे क्या निर्णय लेना चाहिए।
1: जी जी।
0: तो ऐसे में हमारे श्रोता साथियों से हम कार्यक्रम के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो आपको सबसे पहले धैर्य का हाथ थाम लेना चाहिए। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास धैर्य होता है अंजलि जी, वो हर कार्य को ठीक तरीके से ढंग से कर पाता है। क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब हम कोई जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं तो वो जो निर्णय होता है वो कई बार सही नहीं होता। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ परिस्थितियां आने पर जल्दी से निर्णय लिया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर हमारे पास धैर्य है तो हम उस चीज को अगर थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा सा सुधारने के प्रयास करेंगे, या फिर इस उस समस्या को लेकर अगर हम किसी विशेषज्ञ से बात करेंगे तो वो हमें अच्छी तरीके से इस समस्या के बारे में बता सकते हैं, जिससे हो सकता है कि हमारा निर्णय गलत होकर भी सही हो जाए।
1: बिल्कुल कशिश, हमारी जिंदगी में कभी हमारे कदम धीमे होंगे तो कभी दिशा बदलनी पड़ेगी।
0: बिल्कुल,
1: कभी किसी से मदद लेनी पड़ेगी, कभी कुछ समय केवल खुद को संभालने में लगेगा। लेकिन हर दौर से गुजरते हुए अपने भीतर ये विश्वास बनाए रखिए कि मेरे पास अभी पूरा जवाब नहीं है, लेकिन मैं रास्ता खोज सकता हूँ। यही विश्वास इंसान को मुश्किल समय के पार ले जाता है।
0: बिल्कुल,
1: और जब कभी पीछे मुड़कर देखेंगे तो शायद समझ आएगा श्रोता साथियों कि जिस समय हमें लग रहा था कि सब कुछ रुक गया है, उसी समय जिंदगी हमें किसी नए अध्याय के लिए तैयार कर रही थी।
0: जी हाँ।
1: हर अनसुलझी

0: होता है।
1: जी जी,
0: समस्या से अंजलि जी घबराने के बजाय हमारे श्रोता साथियों को उनका सामना करना चाहिए, उसके कारण को समझना चाहिए और स्थानीय समाधान दिशा में प्रयास करना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि दोस्तों जीवन में समस्या आना तो स्वाभाविक है, लेकिन हर समस्या का उत्तर तुरंत मिल जाए ये जरूरी नहीं होता। कई बार समय हमें सही रास्ता दिखाता है और परिस्थितियां हमें बेहतर निर्णय लेना सिखाती है। हमें समस्या के सामने धैर्य नहीं खोना चाहिए और न ही जल्दबाजी में ऐसा कोई निर्णय लेना चाहिए जिससे आगे जाकर हमें ही परेशानी पैदा हो।
1: बिल्कुल,
0: तुरंत समाधान से अधिक महत्वपूर्ण है सही, सुरक्षित और स्थायी समाधान खोजना।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में हमने ढेर सारी बातों को जाना, कुछ छोटी मोटी बातें हैं वो आगे हम अवश्य करेंगे, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल अंजलि जी।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, इन्हीं श्रोता साथियों आपको कहना चाहेंगी कि समस्या का समाधान जो है वो हमेशा तुरंत मिल जाना जरूरी नहीं होता।
1: बिल्कुल,
0: समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका हल एक बातचीत, एक निर्णय या एक प्रयास से निकल आता है।
1: जी हाँ।
0: लेकिन कुछ समस्याएं जो होती हैं वो समय, धैर्य, सही जानकारी और सामूहिक प्रयास की मांग करती है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए किसी समस्या पर तुरंत समाधान न मिल पाने का अर्थ यह नहीं है कि समस्या का समाधान संभव ही नहीं है।
1: जी हाँ।
0: कई बार जल्दबाजी में लिया गया निर्णय समस्या को कम करने के बजाय और बढ़ा सकता है।
1: बिल्कुल।
0: समस्या आने पर सबसे पहले जरूरी है कि हम घबराने के बजाय समस्या को समझें। समस्या की असली वजह क्या है, उससे कौन कौन से लोग प्रभावित हो रहे हैं, उपलब्ध संसाधन क्या है और समस्या के लिए किन लोगों की मदद ली जा सकती है।
1: जी हाँ।
0: इन बातों पर विचार करना जरूरी है। खासकर सामुदायिक जीवन में हर समस्या का समाधान अकेले व्यक्ति के प्रयासों से नहीं लिया जा सकता।
1: बिल्कुल।
0: गांव, परिवार या समुदाय के लोग मिलकर बातचीत करते हैं, एक दूसरे की बात सुने और अपनी जिम्मेदारी समझे तो कठिन परिस्थितियों में भी रास्ता निकाला जा सकता है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इसी के साथ अगर बात करें तो श्रोता साथी, समस्या जीवन का अंत नहीं बल्कि आगे बढ़ने का एक अवसर भी है। हर परिस्थिति हमें कुछ नया सिखाती है श्रोता साथियों। वो हमारी सोच और कह सकते हैं कि हमारी जो सोच होती है उसको और ज्यादा अधिक परिपक्व बना सकती है। इसलिए किसी कठिनाई के सामने निराश होने के बजाय उसे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए अंजलि जी हमें।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि हम देखते हैं कि समस्याएं आना तो हमारे जीवन में स्वाभाविक है। हम अक्सर देखते हैं ना कि हमारे जो श्रोता साथी हैं वो जब समस्याओं का सामना करते हैं तो कई बार वे असफलता के कारण निराश भी हो जाते हैं। लेकिन ऐसे में हम हमारे दोस्तों से ये कहना चाहेंगे कि दोस्तों, अगर आपके समस्याएं आपके सामने कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, तो उस वक्त आपको धैर्य का हाथ थामना चाहिए। क्योंकि जब आप धैर्य रखेंगे तो आप हर परिस्थिति में हर समस्या का सामना कर पाएंगे।
0: बिल्कुल।
1: नए नए निर्णय जो होते हैं उन्हें लेने में भी आप डरेंगे नहीं बल्कि सही निर्णय ले पाएंगे।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि कई बार समाधान तुरंत दिखाई ही नहीं देते हैं, लेकिन छोटे छोटे प्रयास आगे चलकर बड़ा बदलाव लाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: जैसे पानी की समस्या हो तो केवल शिकायत करने के बजाय पानी के सही उपयोग, उपलब्धता के जो स्रोत है उनकी देखभाल करना है। सामूहिक प्रयास से शुरुआत की जा सकती है, क्योंकि किसी परिवार में मतभेद हो तो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें मनभेद नहीं होना चाहिए। क्योंकि मनभेद होने की वजह से हम देखते हैं कि कई सारी ऐसी छोटी सी बातें होती हैं वो भी बड़ा रूप ले लेती हैं।
1: बिल्कुल।
0: श्रोता साथियों, समस्या का समाधान तुरंत मिलने से ज्यादा जरूरी है कि सही और टिकाऊ समाधान मिले। हमें समस्या से भागना नहीं चाहिए, उसे टालते भी नहीं रहना चाहिए, बल्कि परिस्थिति के अनुसार कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो इस तरीके से जैसा कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से हमारी बातें ढेर सारी हो चुकी हैं और समय भी अब हमारा हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। तो विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे कार्यक्रम का पता हम हमारे साथियों को बता दें।
0: बिल्कुल, तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
1: जी हाँ।
0: हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
1: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को।
0: नमस्कार।

0: भाई न बोनो, घर तक ही निकलते वक्त कोई आपनो इंतजार करी रू है। माँ नी दुआ, पिता नी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित्य जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपनो इंतजार करी रू है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार साथियों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट। स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM। जैसा कि श्रोता साथियों, आप सभी को पता है कि हम हर रोज कार्यक्रम आपकी फरमाइश को लेकर हाजिर होते हैं। इस कार्यक्रम का समय है प्रातः 11 से दोपहर 1 बजे तक। इस कार्यक्रम को सुनने के लिए और आप अपनी फरमाइश गीतों को सुनने के लिए हमें व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं प्रातः 11 से 12 बजे के बीच में हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए। हमारा नंबर है 9414082643 और आप अपने फरमाइश गीतों को सुन सकते हैं वाग रेडियो 90.8 FM पर। तो जैसा कि श्रोता साथियों, 11 बज चुकी है, कार्यक्रम आपकी फरमाइश शुरू हो चुका है। कार्यक्रम की पहली फरमाइश हमारे पास आई है, फिल्म का नाम है दीवाना, गीत के बोल है ऐसी दीवानगी। सुना जा रहे इस गीत को रोहिदास चौक पंडरपुर सिटी से सुनीता शिंदे, प्रशांत शिंदे, यशराज शिंदे, ऋषि शिंदे, कृष्णा खोड़।

साथियों, अगली फरमाइश हमारे पास आई है। गीत के बोल हैं तू ही हकीकत। सुनना चाह रहे हैं इस गीत को भोपाल का राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा, कपिल चिंपा, ईशान चिंपा, पूजा परिहार, सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतीक चौहान, उच्च पट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी गोस्वामी, शिवन्या गोस्वामी, अनु गोस्वामी, रहटगांव कैंप अमरावती से श्याम कीटे, वंदना कीटे, भाविका कीटे, कुंभार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रथमेश चंदन, संतोष चंदन, पांडुरंग कुंभार। इसी गीत के साथ श्रोता साथियों जुड़ रहे हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर रही मेरा जहां, ये आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। गीत के बोल हैं तू ही हकीकत।

साथियों अगली फरमाइश हमारे पास आई है, गीत के बोल हैं, माफ कर देना दिल, माफ कर दे दिल। सुना जा रहे इस गीत को कस्बा अग्रवाल मंडी टटीरी बागपत यूपी से हैं। आसिफ अली खान, मोमिन अनाज, मुस्कान आसिफ, सादिक अली खान और सारिक अली खान अनुरोध करता है इस गीत की। लाहौर डड्डा जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुनीश देवी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, प्यारी पोती भुवनेश्वरी देवी, सुधीर नूतन, रामानंद कश्यप। करावल नगर दहली से है रामनाथ प्रजापति, श्रीमती सुमन देवी और भी दोस्त हैं जो इस गीत के साथ जुड़ रहे हैं। मजनू कटीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से है उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक। सुना जा रहे हैं दोस्तों इस गीत को। पदमा टोकिश नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से है नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे। तो आइए साथ ही सुनते हैं।

श्रोताओं, अगली फरमाइश हमारे पास आई है। गीत की बोल है, ये कसूर मेरा ना था। सुना जा रहे इस गीत को लदावली जिला मुरादाबाद से है अजित कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना, फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देवी करानी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन, हयंश कुमार चंदन, सोगा मगर लोर छत्तीसगढ़ से हैं ये, रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बीबी करवी, बीबी बोय, भीमाक्षर, कुड़ी सेक्टर 5, सूर्यनगर, जोधपुर, राजस्थान से हैं ये, गांव टोरेवाल, जिला नवाशहर, पंजाब से हैं गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बीबी भामिका और वाणी थांदी। तो आइए साथ ही सुनते हैं इस गीत को।

साथियों, इस गीत के बाद अगली फरमाइश हमारे पास आई। गीत की बोल है परदेश जाके, फिल्म का नाम है अर्पण। सुनना चाह रहे इस गीत को मुंडा टोला डोंडी लोहार से डोमेंद्र नेताम, गंगेश्वरी नेताम, चंचल नेताम, कामेश नेताम, माहिर नेताम, नीतीश कुमार देवानगन, दुर्गा प्रसाद देवानगन, पराग टेलर, पूना राम देवानगन, कृष्णा देवानगन, ये हैं पलारी छत्तीसगढ़ से। और भी दोस्त हैं जो इस गीत के साथ जुड़ रहे हैं, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया, दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासिन अनचान, साइमन नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रानाज, बीबी चाहत सादिया। और भी दोस्त हैं जो इस गीत के साथ जुड़ रहे हैं, मोहाली पंजाब से बबल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा। तो आइए साथियों सुनते हैं इस गीत को, गीत के बोल हैं परदेश जाके।

श्रोताओं, अगली फरमाइश हमारे पास आई है। फिल्म का नाम है मोहब्बतें, गीत के बोल हैं हमको हमें से चुरा लो। सुनना चाह रहे इस गीत को अकोट से विनायक बैंडे, श्रीमती मंगला बैंडे, विजय शुभम बैंडे, पवन जरिए, के संजय डाबेराव, और अनुरोध करता है इस गीत की ग्राम पीपल रोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, ऊपरकोट मोहल्ला चौकुनिटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अवान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सारे सदस्य, बीड शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, जयश्री महत्री, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टोल, पीवी कुलथे। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। गीत के बोल हैं हमको हमी से चुरा लो।

नमस्कार श्रोता साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि अभी हम बहुत ही प्यारा सा गीत सुन रहे हैं, फरमाइश का मोहब्बत फिल्म का हमको हमी से चुरा लो। तो श्रोता साथियों, आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि श्रोता साथियों, फरमाइशों का सिलसिला सुबह 11 बजे से हमारा आपके साथ बहुत अच्छा चल रहा है, जिसे आप सुन रहे थे प्रस्तुतकर्ता जागृति जी के साथ में। और अब आप इसे आगे सुनने वाले हैं मेरे साथ, यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में। तो दोस्तों, स्वीकार कीजिएगा मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि फरमाइशों का सिलसिला कार्यक्रम में बहुत अच्छा चल रहा है, तो इसी बीच में बढ़ना चाहूँगी फिर से हमारी अगली फरमाइश की गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है नरवेल महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है हम है राही प्यार के। गीत के बोल हैं घूंघट की आड़ से दिलबर का। इस गीत को आवाज़ दिए कुमार सानू जी और अलका याग्निक जी ने। नरवेल महाराष्ट्र से फरमाइश करता है PS नवाकर, निर्मल नवाकर, विशाल नवाकर महाराष्ट्र से। और भी श्रोता साथी जुड़ रहे हैं, नारायण इंग्ले, सुपान ताइडे, आशीष मुहेरकर जी। लोरमी चिचड़ी छत्तीसगढ़ से हैं कमलकांत मरामिली, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्परा ऋषभ मरावी जी। धनोरी तेलीवाला से हैं निशार सलमानी, नुशा सलमानी, बेबी आलिया, अयन बाबू जी। बत्ता परिवार के सदस्यगण भी जुड़ रहे हैं, पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता जी। इसी बीच अनुरोधकर्ता कुरावली से भी जुड़ रहे हैं राशिद हुसैन अंसारी, नसीन अंसारी, नौरियन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद केफ अंसारी जी। तो आइए दोस्तों, मनोरंजन कर लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं घूंघट की आड़ से दिलबर का। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ना चाहेंगे हमारी अगली फरमाइश की गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत आया है श्रोता साथियों सूरजपुर छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है आरजू। गीत के बोल हैं अब तेरे दिल में हम आ गए। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे प्रेम साय रजवाड़े, सोमार साय, मेर साय रजवाड़े, भगत हेमंत कुमार, राम खेलावन सिंह पेखरा जी और भी हमारे दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाह रहे हैं। येदाला महाराष्ट्र से हैं शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, अर्णय जायसवाल, दुर्गश्री जायसवाल, राखी जायसवाल, तृप्ति जायसवाल। पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पुनाराम देवांगन और कृष्णा देवांगन जी। डोरी लोहारा से डोमेंद्र नेताम, गंगेश्वरी नेताम, चंचल नेताम, कामेश नेताम, माहिर नेताम जी। तो आइए साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं अब तेरे दिल में हम आ गए। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, जैसा कि आरजू फिल्म का बहुत ही प्यारा सा गीत था, इस गीत के बाद मैं फिर से बढ़ना चाहूंगी हमारी अगली फरमाइश की गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच कलानोर से आया है। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों कुर्बान। गीत के बोल हैं ये धरती चांद सितारे। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में। आपको बताना चाहूंगी कलानोर से नरेंद्र शर्मा, किरण नितिन, मयंक शर्मा और भी हमारे श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। आपको नाम बताना चाहूंगी जुड़ रहे हैं हमारे श्रोता साथी कटनी से, अनिल ताम्रकर, अमर ताम्रकर, दिलीप वर्मा, राजू ताम्रकर, रंजन रचक, विपिन गुप्ता, प्रकाश सोनी, अरुण कनौजा, संजय सोनी, पवन यादव, सुनील जैन, लालू सोना, मोना हनी, यश और सौम्या। इसी बीच हमारे और भी दोस्त गंजुडवारा से हैं, शमशुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनुंसारी कलीम अंसारी जी और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं जो इसी गीत के साथ मनोरंजन कर रहे हैं। मेरठ से अनिल जैन, सेम जैन, मुस्कान मास्टर जी, वी एम जैन, आदि जैन, भव्य जैन, अंशिका जैन। इसी बीच साथी जुड़ रहे हैं और भी जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाहते हैं। मुरादाबाद से हैं अजित कसना, मयादेवी, ऋतिक आदित्य कसाना जी। तो आइए श्रोता साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं ये धरती चांद सितारे। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

दोस्तों इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से। फिल्म का नाम है कुछ कुछ होता है। गीत के बोल हैं साथियों कोई मिल गया। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में, मैं आपको नाम बताना चाहूँगी, मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इरकास, नरगिस खातून जी। और भी हमारे श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। अमरावती से हिड़ामन शिंदे, शीला देवी शिंदे, सिद्धार्थ गुणाने, अर्चना ताई गुणाने जी। इसी बीच और भी श्रोता साथी हैं जो इस गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। बरेली से हैं मोहम्मद आमिर अंसारी, समीम अंसारी, नशीन अंसारी, शमा अंसारी, माहिनूर अंसारी, शमशाद अंसारी जी। और भी हमारे श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। सहारनपुर से जॉन डिकेस्टो, रोज डिकेस्टो, पल डिकेस्टो, विलिस डिकेस्टो जी। इसी बीच हमारे श्रोता साथी और भी हैं जो इसी गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। आपको नाम बताना चाहूँगी, जुड़ रहे हैं उमाली महाराष्ट्र से उद्वल पाटिल, अनूप कुमार, विजय शागोकार जी और जयश्री जी जुड़ना चाह रहे हैं। और भी साथी इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं रामशन विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रजना, प्रियाले, दिव्यांश विश्वकर्मा जी। तो आइए साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं कोई मिल गया।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, मैं आपको बताना चाहूँगी साथियों। फिल्म का नाम है कहो ना प्यार है, गीत के बोल है प्यार की कश्ती में। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं और भी इस गीत के साथ में बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशर विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रजना, बदना प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा जी और भी हमारे श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। मैं आपको नाम बताना चाहूँगी। जुड़ना चाह रहे हैं दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से शीतल कश्यप, मुकेश कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष सोहिनी, मोहितिक, बलवीर सिंह जी और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं। जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुमरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा खटक और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं। यवतमाल से हैं राहुल मनवर, सल्ला मनवर, विशाल मनवर, चेतन मनवर, रोशनी मनवर, प्रियांशी जी। मलियान सरदना मेरठ से अनिल जैन, सेम जैन, मुस्कान मास्टर, जीवीएम जैन, आदि जैन, अंश जैन, बवेदन जैन, अंशिका जैन। वसीम महाराष्ट्र से हैं मास्टर विठल, सुरुषि, सुषमा, सुरुदे, परेश शुरू से, मायरा शुरू से जी और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी, निमित्त आहूजा जी। तो आइए साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं प्यार की कश्ती में। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है गंजू द्वारा उत्तर प्रदेश से। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों, गीत के बोल हैं कहो ना कहो। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं मास्टर खिल्लू परवेज बेगम, इमरान अनार, नाजिश शेख, दानिश शेख, अमन आफरीद, राधा नाम देव जी और भी हमारे दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। आपको नाम बताना चाहूंगी, अमरावती महाराष्ट्र से हैं हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय रामेकर, रुद्र रामेकर, रुचिका रामेकर और रामकर परिवार के सभी सदस्य गण भी जुड़ रहे हैं। आपको बताना चाहूंगी छत्तीसगढ़ बिलासपुर से हैं, तेलीपाला से गुणवंत श्रीवास, करुणा श्रीवास, आयुष श्रीवास, विवेक श्रीवास, बीबी आशीष श्रीवास। छत्तीसगढ़ से हैं मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित सोमू, मानस राज और भी दोस्त हमारे जुड़ रहे हैं। अनुरोध करता है कोरबा से लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, माला ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, मानु शानो, बब्बन मनहू, काना ठाकुर, हरिप्रिया जी। यूपी से जुड़ना चाह रहे सुरेश चौरसिया, सरोज चौरसिया, सलोनी चौरसिया, लल्ला चौरसिया जी, पुंजा पिंकी जी और बाबू शिवा शिवानी चौरसिया जी और भी हमारे दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। आपको बताना चाहूंगी दिनेश काले जी, जीवन सिंह बहकरा जी, रवि कुमार राहुल, मणिकराम प्रजापति, रामचंद्र गुप्ता, शिवप्रसाद देवदास, गजानन येले, जाकिर मंसूरी जी, सुरेश मालोड़े जी, अनिल कुमार गोड़ के, विशानी अनिल, प्राजक्ता गोड़ के, रुपेश सिंह, सुरेश गगनेजा, पुनीता जी, वंदना कुमारी, कमल बालूचा, उमंग मलिक जी, नारायण लाहू साहू जी, उत्तम कुमार भगत जी, मुन्ना भगत जी, दुर्गा राम साहू जी, ये सभी श्रोता साथी हैं जो जुड़ रहे हैं इसी गीत के साथ में। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं और भी हीरामन शिंदे, शीला देवी शिंदे, सिद्धार्थ गुणानी जी, बबलू साहू, प्रगनंद देवांगन जी, प्रवीण श्रीमाली जी, लालगिरी गोस्वामी जी, संजय साहू जी, रामशन विश्वकर्मा जी, बजेंद्र विश्वकर्मा जी। जुड़ना चाह रहे हैं बाटापारा से मुकेश शर्मा जी, मुकेश कश्यप, सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, जाकिर मुलानी जी, गुरप सिंह तंगोरी जी और विजय सुरलकर जी, अनिल कुमार वर्मा, नानिल जी, लामसे जी, अशोक श्याम कुमार जी, बबलेश्वर पमार, खुदा बख्श खलीफा, नवी हसन अब्बासी, जुबैर अली खान, रफीनाथ त्रिपाठी जी, हीरामणि वर्मा जी, संजय डिंगिया जी और धर्मेंद्र छिपा जी। इसी बीच और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं शुभ्र चंद्र बजाज जी, आनंद जोशी, सिद्धार्थ गवाड़कर, अभिजीत गवाड़कर, वैशाली गवाड़कर, अनिल ताम्रकर जी और भी हमारे दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छन्नूलाल श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, अंजू योगिता श्रीवास, रंजन साहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं सूरतगढ़ से लालगिरी गोस्वामी, पी एस नवाड़कर, राम कुमार रेवार, चिन्नूस खत्री जी, दीपेश वर्मा, रिजवान खान जी, सतीश श्रीवास्तव जी, रज्जाक मोहम्मद खान, डोमन ठाकुर, राहुल पाल, संजय डिंगिया, मिंटू डोमस जी, रविंद्र सिंह छाबड़ा, हीरामणि वर्मा जी, करण कंबोज जी, सर्वजीत सिंह जी और सुरेश खुराना जी, पवन सुथार, श्यामलाल कुलवंत गिल जी, नितेश कुमार देवांगन जी, उत्तम कुमार भगत जी, इशरत खान, रामेश्वर माहर जी, परमार जी, शंकरलाल जायसवाल जी, महावीर सुथार, डोमेंद्र नेताम, हरिजिंदर सिंह छिंदिया, राजकुमार डूडी, अनिल कुमार गौरव जी, प्रभाकर जोंदले जी और कृष्ण मेहरा जी, धर्मेंद्र छिपा जी, अनिल ताम्रकर जी।

इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं और भी श्रोता साथी बघेरा दुर्ग से उत्तम कुमार भगत, मुन्ना भगत, दुर्गा साम राम साहू, मुकेश गोस्वामी, पुष्पांजलि नायडू जी, सुरेश चौरसिया जी, रोहन जायसवाल जी, सुखविंदर सिंह जोड़ा जी, नौसाद अहमद सिद्दीकी, अमितुन सिद्दीकी जी, हेमकेश्वर साहू जी इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं और भी हमारे दोस्त बाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, बानी चावला, लोकेश जोशी, अंकिता जोशी, वेदई जोशी, लक्ष्मी ध्रुव जी इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं। आपको नाम बताना चाहूँगे यूपी से, सुरेश जी, सरोज चौरसिया जी, सलोनी चौरसिया, लल्ला चौरसिया, संजू पूजा, पिंकी चौरसिया, शिवानी जी। तो आइए श्रोता साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं कहो ना कहो। आपको बताना चाहूँगी कि यही हमारे आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अंतिम गीत है। आपसे हमारी फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। तब तक के लिए दीजिए साथियों आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

साथियों, ये तो थी हमारी आज की सभा, जो कि अब यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आज की इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं साथियों, हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643 पर। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए आज की सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल।

शुभ संध्या श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM, आपका रेडियो आपकी आवाज, और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। साथियों, लेकर हाजिर हो चुकी हूं आज के इस शाम के सुहाने पल में हमारे आज के खास कार्यक्रमों की रूपरेखा। साथियों, दिन भर की भागदौड़ और जिम्मेदारी के बाद जब शाम ढलती है तो मन चाहता है कि थोड़ा सुकून, थोड़ा ज्ञान और थोड़ा मनोरंजन हो जाए, और इन सभी रंगों को लेकर आपके साथ है आपका अपना वागड़ रेडियो। तो साथियों, आइए जानते हैं आज की शाम के कार्यक्रमों के बारे में। सबसे पहले शाम 5 बजे शुरू होगा कार्यक्रम आराधना, भक्ति और आस्था से भरे सुरों को लेकर, जो मन को शांति देते हैं और आत्मा को सुकून। दिन भर की थकान को बुलाकर साथियों, ईश्वर के स्मरण के साथ इस खूबसूरत शाम की शुरुआत कीजिए। इसके बाद शाम 5:30 पर प्रस्तुत होगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज, क्योंकि युवा ही भविष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। यह मंच है युवाओं के विचारों का, उनके सपनों का और उनके जज्बे का। साथियों, इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी आपकी अपनी रेडियो साथी कशिश पाराशर यानी कि मैं और जागृति भट्ट। आगे बढ़ते हुए इसे शाम 6 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन, जो मासूमियत, मुस्कान और सपनों से भरा होता है। साथियों, इस कार्यक्रम में होंगी बचपन की कुछ सीखे, मीठी यादें। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और कशिश पाराशर यानी कि मैं। इसके बाद दोस्तों, शाम 6:30 पर हम सुनेंगे कार्यक्रम खेतीबाड़ी, जो कि हमारे किसान भाइयों के लिए समर्पित कार्यक्रम है। इसमें आप जानेंगे खेती से जुड़ी तकनीक, मौसम की जानकारी और कृषि विशेषज्ञों की उपयोगी सलाह के बारे में। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और उनके साथ होंगे जागृति भट्ट। इसके आगे दोस्तों, शाम 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सच्चा स्वराज। साथियों, ये कार्यक्रम हमें हमारे समाज, देश और सच्चाई से जुड़ी उन बातों से रूबरू करवाता है, जो हमें जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देते हैं। तो भूलिएगा नहीं, शाम 7 बजे कार्यक्रम सच्चा स्वराज। इसी के बाद दोस्तों, हम फिर से रुक करेंगे 7:30 पर और सुनेंगे कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। इस कार्यक्रम में आप जानेंगे डॉक्टरों की सलाह, योग से जुड़ी ढेर सारी बातें और बीमारियों से बचाव के तरीके। इस कार्यक्रम को लेकर आऊंगी मैं यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। तो जैसा कि साथियों, कार्यक्रम की रूपरेखा तो हम जान ही रहे हैं दोस्तों, इसी के बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले कार्यक्रम की ओर, कार्यक्रम समस्या समाधान, जिसमें आप सभी जानेंगे श्रोता साथियों नई नई समस्याओं और उनसे जुड़े समाधानों के बारे में। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट, जिसे आप सभी सुन पाएंगे ठीक 8 बजे। इसी के बाद दोस्तों, अगला कार्यक्रम होगा मनोरंजक गीत कार्यक्रम। यह है साथियों पुराने और नए गीतों का ऐसा खूबसूरत संगम, जो आपके दिल को छू जाएगा और शाम को और भी यादगार बना देगा। और इसके बाद रात 9 बजे प्रस्तुत है हमारा खास कार्यक्रम शामे गजल, जहां गूंजेंगे दिल को छू लेने वाले अल्फाज, मधुर गजलें और सुकून भरे नगमे, जो इस सुहानी रात को और भी खास बना देंगे। तो साथियों, शाम की ये घड़िया सिर्फ समय नहीं होती, बल्कि भावनाओं का एक खूबसूरत सफर होती है, जहां भक्ति का सुकून भी है, युवाओं के सपने भी हैं और बचपन की हंसी भी है, साथ ही किसान की मेहनत भी है और संगीत का वो जादू भी है जो आपके दिल को छू जाएगा। यही है हमारी शाम और यही है हमारा वागड़ रेडियो। तो आइए साथियों, अब शुरुआत करते हैं आज के पहले कार्यक्रम आराधना से। आप सुनते रहिए वागड़ रेडियो 90.8 FM।

0: आज के सुविचार।
1: जब से मनुष्य जाति का अस्तित्व बना है, तभी से युद्ध भी अस्तित्व में आया। युद्ध जो कभी धन का द्वंद्व बनकर सामने आता है, तो कभी सुरक्षा का हथियार बनकर, कभी विजय की भूख के लिए, तो कभी पराजय टालने के लिए। किंतु वास्तविकता तो यही है कि यदि आपको आगे बढ़ना है तो बाधाओं से युद्ध तो करना होगा। परंतु युद्ध के लिए सज्ज रहना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना महत्वपूर्ण है ये समझना कि युद्ध को टाला कब जा सकता है। क्योंकि सबसे सफल युद्ध वही होता है जो कभी लड़ा ही ना जाए। आप युद्ध में विजय प्राप्त करके स्वयं का मान तो बढ़ा लो, किंतु अपना बल खो दो। इसलिए जहां तक हो सके युद्ध को टालो, शक्ति को संग्रहित रखो, ताकि जब ये युद्ध धर्म बन के सामने आए, आप उससे पूरे बल के साथ लड़ सको। राधे राधे। संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? अब आप में से कुछ कहेंगे शस्त्र की, कुछ कहेंगे शास्त्र की, कोई कहेगा बुद्धि की, तो कोई कहेगा बल की। किंतु ये सब अधूरे। संसार में सबसे बड़ी शक्ति है मित्रता। यदि सच्ची मित्रता प्राप्त हो जाए तो वही सबसे बड़ा धन है। जब आप कठिनाइयों में होंगे तो मित्रता शस्त्र बनकर सहायता करेगी। मार्ग भटक जाओगे तो मित्रता शास्त्र बनकर आपको राह दिखाएगी। षड्यंत्र में फंस जाओगे तो बुद्धि बनकर बाहर निकालेगी। अकेले हो जाओगे तो ममता बनकर साथ निभाएगी। तो यदि इस संसार में कुछ कमाना है तो धन नहीं, मित्रता कमा। और स्मरण रखिएगा, यदि इस संसार में मित्र बनाना आपकी सबसे बड़ी दुर्बलता है, तो आप इस संसार के सबसे शक्तिशाली प्राणी। राधे राधे। मनुष्य का स्वभाव है कमाना, संग्रह कर, फिर चाहे वो धन हो, नाते हो, संबंध या हो प्रसन्नता। परंतु क्या आपने कभी सोचा है, नियति ने ये संग्रह करने की प्रकृति मनुष्य में क्यों डाली? एक बीज से पौधा पनपता है,

0: बारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज सुनने वाले हमारे सभी युवा साथियों को आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: जी हाँ साथियों, लेकर हाजिर एक कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है स्टीव जॉब्स की सोच यानी कि युवाओं के लिए एक सबक को लेकर। हम देखते हैं कशिश कि किसी भी बड़ी सफलता की शुरुआत बड़े साधनों से नहीं बल्कि एक बड़े विचार से होती है।
0: बिल्कुल,
1: जब इंसान अपने सपनों पर विश्वास करता है, लगातार सीखता है और असफलताओं से घबराने के बजाय उनसे सीखता है, तब साधारण परिस्थितियों से भी असाधारण उपलब्धियां जन्म लेती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो आज के इस कार्यक्रम में हम इसी विषय को लेकर युवा साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे। लेकिन जैसा कि शुरुआत में कार्यक्रम का दस्तूर है गीत संगीत का, तो क्या ना दोस्तों को पहले यहाँ एक प्यारा सा गीत सुनवा दे हम।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: दोस्तों इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसे कि दोस्तों गीत से पहले बातचीत की शुरुआत हो चुकी है और विषय के बारे में भी हम आपको बता ही चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं स्टीव जॉब्स की सोच को लेकर और वो युवाओं के लिए किस प्रकार से एक सबक है इसको लेकर। जैसा कि बात की थी जागृति जी आपने गीत से पहले कि किसी भी बड़ी सफलता की शुरुआत बड़े साधनों से नहीं बल्कि बड़े विचारों से होती है।
1: बिल्कुल।
0: दुनिया में श्रोता साथियों ऐसे कई लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी सोच और काम करने के तरीके से नई पीढ़ी को प्रभावित किया है। उनमें से एक नाम है स्टीव जॉब्स का। साथियों उन्होंने तकनीक की दुनिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए और ये दिखाया कि किसी काम को केवल पूरा करना ही पर्याप्त नहीं होता।
1: जी हाँ।
0: बल्कि उसे बेहतर ढंग से करने की कोशिश भी जरूरी होती है।
1: जी हाँ कशिश, स्टीव जॉब्स का जीवन युवाओं के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें सपने देखने, अलग सोचने, सीखते रहने, कठिन परिस्थितियों का सामना करने और अपने काम के प्रति जुनून रखने जैसे कई संदेश मिलते हैं।
0: जी हाँ।
1: श्रोताओं कहना चाहेंगे कि स्टीव जॉब्स की सोच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था परंपरागत तरीके से हटकर सोचना। उनका मानना था कि दुनिया को बदलने वाले विचार अक्सर वहीं से आते हैं जहां कोई व्यक्ति सामान्य सोच से आगे बढ़ने की कोशिश करता है।
0: बिल्कुल।
1: आज के युवाओं के सामने भी बहुत सारे अवसर हैं, लेकिन अवसर का लाभ वही उठा सकता है जो अपनी सोच को सीमित नहीं करता। अलग सोचने का मतलब ये नहीं है श्रोताओं कि हर बात में दूसरों से अलग होना। इसका अर्थ ये है कि किसी समस्या को नए नजरिए से देखना और पूछना कि इसे और बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है।
0: बिल्कुल।
1: गांव का कोई युवा खेती में नई तकनीक अपनाने के बारे में सोच सकता है कशिश। कोई युवा स्थानीय उत्पादों को डिजिटल माध्यम से बाजार तक पहुंचाने की कोशिश कर सकता है।
0: जी जी।
1: कोई विद्यार्थी अपने गाँव के बच्चों को पढ़ाने के लिए नई पहल शुरू कर सकता है। बदलाव की शुरुआत अक्सर एक छोटे से विचार से ही होती है।
0: बिल्कुल। साथ ही दोस्तों सपने देखना और उन्हें दिशा देना भी सही है।
1: जी हाँ।
0: जैसे कि युवावस्था सपनों को देखने का समय होता है जागृति जी, लेकिन केवल सपने देखना पर्याप्त नहीं है, सपनों को लक्ष्य में और लक्ष्य को मेहनत में बदलना भी जरूरी होता है।
1: बिल्कुल।
0: साथियों स्टीव जॉब्स का जीवन यह संदेश देता है कि व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि वह वास्तव में क्या करना चाहता है। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो रास्ते की कठिनाइयों के बीच भी आगे बढ़ना आसान हो जाता है। आज जागृति जी कई युवा दूसरों को देखकर अपने लक्ष्य तय करने लगे हैं।
1: बिल्कुल।
0: किसी को देखकर लगता है कि मुझे भी वही करना चाहिए। सोशल मीडिया पर किसी की सफलता देखकर अपने जीवन की तुलना उससे करने लगे हैं, लेकिन हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। जरूरी ये है साथियों कि हम स्वयं से ये पूछें कि मेरी रुचि किस काम में है, मैं क्या सीखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, समाज के लिए मैं क्या कर सकती हूँ और अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए मुझे क्या और कैसे कदम उठाने चाहिए।
1: जी हाँ कशिश आपने सही कहा और जैसा कि आपने बताया कि सपने देखना उन्हें दिशा देना जैसा है। यही बात करते हैं कि असफलता से हम किस तरह से सीख सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: साथियों जैसा कि सफलता की कहानी अक्सर केवल उपलब्धियों के रूप में सुनाई जाती है, लेकिन उसके पीछे संघर्ष और असफलताएं भी होती है।
0: बिल्कुल।
1: हम देखते हैं कशिश की स्टीव जॉब्स के जीवन में भी कठिन दौर आया था। जिस कंपनी की स्थापना में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उसी से उन्हें एक समय अलग होना पड़ा।
0: बिल्कुल।
1: ये किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा कठिन अनुभव हो सकता है, लेकिन साथ ही उन्होंने उस दौर को अपने जीवन का अंतिम पड़ाव नहीं माना था। उन्होंने नए काम किए, सीखा और बाद में फिर अपने पुराने क्षेत्र में लौट आए।
0: बिल्कुल।
1: युवाओं के लिए महत्वपूर्ण सीख है श्रोताओं कि एक असफलता पूरी जिंदगी का फैसला नहीं सुनाती है। परीक्षा में कम अंक आना, नौकरी न मिलना, किसी प्रतियोगिता में सफलता न मिलना या किसी प्रयास का असफल हो जाना जीवन का अंत नहीं है। असफलता ये बताती है कि हमें कहाँ सुधार की जरूरत है। जरूरत है कि युवा अपनी गलती को स्वीकार करें, उससे सीखें और दोबारा प्रयास करें।
0: बिल्कुल जागृति जी। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जैसा कि युवा साथियों से हमारी बातें बहुत अच्छी चल रही है और हम स्टीव जॉब्स के जीवन संदेश को जान रहे हैं, तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी मनोरंजन कर लेते हैं एक और गीत के साथ में।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और हमारी बातें चल रही थी आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से, हम जान पा रहे थे स्टीव जॉब्स की सोच और युवाओं के लिए एक सबक को लेकर।
1: बिल्कुल।
0: तो कशिश, हमारे श्रोता साथियों को यही बताते हैं कि सीखना हमें कभी बंद नहीं करना है।
1: जी हाँ,
0: दुनिया तेजी से बदल रही है, हम सभी जानते हैं। नई तकनीकें रोज आ रही है, नए रोजगार आ रहे हैं, नए कौशल और नए अवसर लगातार हमारे सामने आ रहे हैं। ऐसे समय में युवाओं के लिए सबसे जरूरी गुणों में से एक है सीखते रहने की आदत।
1: बिल्कुल।
0: स्टीव जॉब्स की सोच में जिज्ञासा और सीखने की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों की चीजों को समझने में रुचि दिखाई और उन्हें अपने काम में जोड़ा।
1: जी जी।
0: साथियों, आपसे कहना चाहेंगे कि आप भी अपने क्षेत्र के साथ साथ दूसरी चीजों को सीख सकते हैं। किसान का बेटा खेती के साथ डिजिटल मार्केटिंग भी सीख सकता है, कोई विद्यार्थी कंप्यूटर के साथ संचार कौशल भी सीख सकता है, और कोई युवा अपने पारंपरिक हुनर को नई तकनीक से जोड़ सकता है।
1: बिल्कुल।
0: आज सीखने के लिए साधनों की कमी पहले जैसी नहीं है श्रोताओं। किताबें, पुस्तकालय, शिक्षण संस्थान, डिजिटल माध्यम और समुदाय कई रास्ते उपलब्ध कराते हैं, लेकिन सबसे जरूरी है सीखने की इच्छा होनी चाहिए।
1: बिल्कुल। साथ ही युवा साथियों, गुणवत्ता पर ध्यान देना भी जरूरी है। यानी कि जागृति जी, किसी भी काम को केवल जल्दी पूरा कर लेना ही सफलता नहीं होती, काम की गुणवत्ता भी उतनी ही महत्वपूर्णता रखती है।
0: जी हाँ।
1: साथियों, स्टीव जॉब्स अपने उत्पादों के डिजाइन और उपयोग में सरलता पर विशेष ध्यान देने के लिए जाने जाते थे। इससे युवाओं को ये सीख मिलती है कि छोटे छोटे विवरण भी महत्वपूर्ण होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: जागृति जी, चाहे विद्यार्थी अपना प्रोजेक्ट बना रहा हो, या कोई युवा व्यवसाय शुरू कर रहा हो, या कोई किसान अपनी उपज तैयार कर रहा हो, हर काम में गुणवत्ता पर ध्यान दिया जा सकता है। काम छोटा हो या बड़ा, उसे जिम्मेदारी और ईमानदारी से करना व्यक्ति की पहचान बनाता है।
0: हम कह सकते हैं कशिश की, युवावस्था में समय सबसे मूल्यवान संसाधनों में से एक होता है। आज मोबाइल और सोशल मीडिया के कारण युवाओं का काफी समय बिना उद्देश्य के निकल सकता है।
1: बिल्कुल।
0: मनोरंजन जरूरी है, लेकिन जीवन का पूरा समय केवल मनोरंजन में नहीं जाना चाहिए। स्टीव जॉब्स की सोच से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संदेश ये भी है कि व्यक्ति को ये तय करना चाहिए कि उसके लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल।
0: युवा अपने दिन का थोड़ा समय पढ़ने, कौशल सीखने, व्यायाम, परिवार, समाज और अपने लक्ष्य के लिए निकाल सकता है। समय की छोटी छोटी बचत आगे चलकर बहुत बड़ी उपलब्धियों में बदल सकती है।
1: जी हाँ जागृति जी। साथ ही हम देखते हैं कि आज के समय में युवाओं पर दूसरों की नकल करने का दबाव भी रहता है।
0: बिल्कुल।
1: कपड़े, भाषा, करियर, जीवन शैली और सफलता, हर जगह तुलना ही तुलना दिखाई देती है। लेकिन साथियों, वास्तविक विकास तब होता है जब युवा अपनी क्षमताओं को पहचाने। स्टीव जॉब्स की सोच का एक पहलू ये भी था कि उन्होंने अपने काम और विचारों के प्रति अपनी पहचान बनाई थी। इसका मतलब दूसरों को कम समझना नहीं, बल्कि अपनी विशेषता को पहचानना है। हर युवा के अंदर जागृति जी, कोई ना कोई प्रतिभा होती ही है।
0: बिल्कुल।
1: किसी में बोलने की क्षमता होती है तो किसी में लिखने की, किसी में तकनीकी समझ, किसी में नेतृत्व की, तो किसी में लोगों को साथ लेकर चलने की क्षमता होती है। जरूरत है उस प्रतिभा को पहचानने की और लगातार निखारने की।
0: जी हाँ, हम कह सकते हैं कि जीवन में कई बार ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं कशिश, जो आसान नहीं होते।
1: बिल्कुल।
0: कभी विषय बदलना पड़ता है, कभी

0: जानकारी भी जरूरी है। युवा जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय अपने परिवार, शिक्षकों और अनुभवी लोगों से सलाह भी ले सकते हैं।
1: जी हाँ,
0: इसके बाद अपनी परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेना चाहिए।
1: बिल्कुल जागृति जी, साथ ही अगर बात करें तकनीक का उपयोग साधन के रूप में कैसे करें, तो आज मोबाइल और इंटरनेट युवाओं के हाथ में शक्तिशाली साधन बन चुका है।
0: बिल्कुल,
1: इनका उपयोग केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञान और अवसरों के लिए भी किया जा सकता है। ऐसे में युवा साथी ऑनलाइन पाठ्यक्रमों से नई चीजें सीख सकते हैं, रोजगार के अवसर तलाश सकते हैं और अपने उत्पादों की जानकारी लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और साथ ही साथ दुनिया के अलग अलग हिस्सों से ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं।
0: जी हाँ,
1: लेकिन तकनीक हमारे जीवन को चलाए इसके बजाय साथियों हमें तकनीक का सही उपयोग करना सीखना चाहिए।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धि का नाम नहीं है। असली संतुष्टि तो तब मिलती है जब हमारी क्षमता से किसी और को भी लाभ मिले।
1: बिल्कुल,
0: साथियों कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि युवा अपने गांव और समुदाय में छोटी छोटी पहल कर सकते हैं। वो बच्चों को पढ़ाने में मदद कर सकते हैं, स्वच्छता के लिए जागरूकता फैला सकते हैं, जल संरक्षण में योगदान दे सकते हैं, किसानों को उपलब्ध तकनीक जानकारी तक पहुंचने में मदद करा सकते हैं।
1: जी हाँ,
0: या स्थानीय प्रतिभाओं को आगे लाने का प्रयास भी कर सकते हैं। जब युवा अपनी प्रतिभा को समाज की जरूरतों से जोड़ता है तो उसका विकास और अधिक सार्थक बन जाता है।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं कशिश की हर काम में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। अगर व्यक्ति केवल परिणाम के बारे में सोचता रहेगा तो कठिन समय में निराश हो सकता है।
1: जी बिल्कुल,
0: लेकिन यदि उसे अपने काम में रुचि है और वो लगातार सीखने की कोशिश करता है तो कठिनाइयों से निपटना आसान हो जाता है।
1: बिल्कुल,
0: युवाओं को करियर चुनते समय केवल दूसरों की अपेक्षाओं को नहीं देखना होगा श्रोताओं, अपनी रुचि, क्षमता, परिस्थितियों और भविष्य के अवसरों को भी समझना होगा।
1: जी हाँ,
0: जिस काम को सीखने और बेहतर करने की इच्छा बनी रहे उसमें आगे बढ़ने की संभावना भी बढ़ती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा, इसलिए हमारे युवा साथियों को आज से ही शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि कई युवा कहते हैं कि पहले अच्छी नौकरी मिल जाए फिर कुछ नया करूंगा।
0: जी हाँ,
1: पहले पैसे आ जाएं फिर सीखूंगा, पहले सही समय आएगा फिर शुरुआत करूंगा।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन दोस्तों सही समय का इंतजार करते करते कई बार अवसर हाथ से निकल जाते हैं। ऐसे में आपसे कहना चाहेंगे कि शुरुआत आपकी छोटी हो सकती है। आज आप 10 नए शब्द सीखेंगे, आज एक किताब की कुछ पन्ने आप पढ़ेंगे, आज कोई नया कौशल सीखना, आज अपने लक्ष्य की योजना बनाना, ये कुछ ऐसे छोटे कदम हैं जो भविष्य में बड़ा बदलाव ला सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: हमारे युवाओं को ये समझना चाहिए कि भविष्य अचानक नहीं बनता, वह आज के छोटे छोटे फैसलों से ही बनता है।
0: जी हाँ बिल्कुल कशिश, हम कह सकते हैं कि स्टीव जॉब्स का जीवन युवाओं को कई बातें सिखाता है। अलग सोचने का साहस रखना, अपने सपनों को लक्ष्य में बदलना, सफलताओं से सीख और आगे बढ़ना।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही श्रोताओं अपने लक्ष्य की दिशा में लगातार प्रयास करते रहना, ये सारी बातें हैं जो हम स्टीव जॉब्स के जीवन से सीख सकते हैं।
1: जी हाँ,
0: अब आपसे कहना चाहेंगे कि स्टीव जॉब्स की कहानी केवल तकनीक की दुनिया की कहानी नहीं, ये सोच, सीखने और लगातार आगे बढ़ने

0: आज के काम में लगाएंगे।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि दुनिया बदलने के लिए हमेशा कोई बड़ा साधन जरूरी नहीं होता। कई बार बदलाव की शुरुआत केवल एक युवा की नई सोच, मजबूत इरादे और छोटे प्रयासों से हो सकती है। जागृति जी, और यही स्टीव जॉब्स की सोच में युवाओं के लिए मिलने वाली सबसे महत्वपूर्ण सीखों में से एक है कि अपने विचारों पर विश्वास रखिए, सीखते रहिए और अपने काम को बेहतर बनाने की कोशिश कभी मत छोड़िए।
1: जी हाँ कशिश, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की, अब देख पा रहे हैं कि समय उचला है विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे पर जाते जाते सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी हाँ जागृति जी,

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज के कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो दोस्तों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में।

नमस्कार श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर, लेकर हाजिर हो चुकी हूं कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। श्रोता साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी छोटी सी आदत की जो देखने में बहुत सामान्य लगती है, लेकिन बच्चों के स्वास्थ्य, व्यवहार और संस्कार पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। आज के समय में कई घरों में ऐसा होता है कि कोई टीवी देखते हुए खाना खा रहा है, कोई मोबाइल में व्यस्त है, तो कोई जल्दी खाना खाकर अपने काम में लग जाता है। ऐसे में परिवार के सभी लोग एक साथ बैठकर भोजन करने का समय भी कम होता जा रहा है। इसी छोटी सी बात को समझने के लिए आज हम कार्यक्रम में एक रेडियो संवाद को सुनेंगे, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआती दस्तूर को निभाते हुए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि मैंने आपको गीत से पहले विषय से रूबरू कराया था कि आज हम बात करने वाले हैं कि एक साथ बैठकर किस तरीके से हमें बच्चों को खाने की अच्छी आदतें सिखानी चाहिए और ये जो संस्कार है वो किस तरीके से बच्चों के स्वास्थ्य की नींव रखता है। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस रेडियो संवाद को, फिर हम आगे हमारी बातें जारी रखेंगे।
1: अरे कविता, जल्दी से खाना देना, तो मुझे भी घर जाकर काम करना है। वैसे भी आजकल किसके पास इतना समय है कि सबको एक साथ बैठाकर खाना खिलाए।
0: क्यों, आज फिर सबको अलग अलग खाना है क्या?
1: और क्या, मेरा बेटा पहले ही खाना खा लेता है। पति जी जब आते हैं तब खाते हैं, मैं तो सबके बाद ही खाती हूँ। इसमें नया क्या है?
0: नया कुछ नहीं है रीना, लेकिन सोचने वाली बात जरूर है।
1: सोचने वाली बात? अरे इसमें भी क्या सोचें? पेट भरना है, खाना खा लिया और काम खत्म।
0: सिर्फ पेट भरना ही तो भोजन नहीं है रीना, खाना खाते समय परिवार का साथ भी बच्चों के लिए बहुत मायने रखता है।
1: अच्छा, साथ बैठकर खाना खाने से बच्चों की पढ़ाई भी अच्छी होने लगेगी क्या?
0: सीधे सीधे ऐसा तो नहीं होता रीना, लेकिन उस समय हम बच्चों से बात करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उन्हें खाने की अच्छी आदतें सिखाते हैं, इससे बच्चा बहुत कुछ सीख सकता है।
1: हाँ, लेकिन मेरा बेटा तो खाना खाते समय मोबाइल के बिना खाना ही नहीं खाता।
0: यही तो हम सबको आदतें बदलने की जरूरत है।
1: लेकिन जब वो मोबाइल देखता है तो मैं देखती हूँ कि मोबाइल देखने से वो चुपचाप खाना खा लेता है और फिर इससे मुझे भी आराम रहता है।
0: आराम तो रहता है, लेकिन बच्चे का ध्यान खाने पर कम और स्क्रीन पर ज्यादा रहता है। उसे ये पता ही नहीं चलता रीना कि उसने कितना खाया है, क्या खाया है और कैसे खाया है।
1: हाँ, ये बात तो तुम्हारी सही है। मेरा बेटा कई बार खाना मुंह में लेकर बैठा रहता है और मोबाइल ही देखता रहता है।
0: देखा, अगर हम सब साथ बैठकर खाना खाएं और उस समय मोबाइल और टीवी से थोड़ी दूरी बनाकर रखें तो बच्चे भी धीरे धीरे वही आदत अपनाते हैं रीना।
1: लेकिन बच्चों को खाने की मेज पर बैठाकर बात क्या करें?
0: अरे बहुत सारी बातें हैं कि आज स्कूल में क्या हुआ, किस दोस्त से बात हुई, आज क्या नया सीखा, खाने में क्या अच्छा लगा और कल क्या करना है।
1: मतलब खाना खाने का समय बच्चों से बात करने का समय भी बन सकता है।
0: हाँ बिल्कुल, और यही समय बच्चे के संस्कार सीखने का भी होता है।
1: अच्छा, वो कैसे?
0: जैसे कि खाना शुरू करने से पहले हाथ धोना, भोजन का सम्मान करना, जितना चाहिए उतना लेना, भोजन बर्बाद न करना, बड़ों का इंतजार करना और सबके साथ मिलजुल कर खाना खाना।
1: हाँ, ये बातें तो बच्चे देखकर ही तो सीखते हैं।
0: सिर्फ बोलने से नहीं, देखकर ज्यादा सीखते हैं बच्चे।
1: मतलब अगर हम खुद मोबाइल लेकर खाना खाएंगे और बच्चे को कहेंगे कि मोबाइल मत देखो, तो वह हमारी बात क्यों मानेगा?
0: बिल्कुल, बच्चों के लिए हमारा व्यवहार ही सबसे बड़ी सीख होती है रीना।
1: अब मुझे समझ आया। लेकिन हमारे घर में तो सबके खाने का समय अलग अलग रहता है, तो मैं क्या करूं?
0: हर दिन हर व्यक्ति का समय मिलना जरूरी भी नहीं है, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है ना कि दिन में कम से कम एक बार

0: परिवार जो है वो साथ बैठकर भोजन करे।
1: हाँ, रात का खाना तो हम सब मिलकर साथ में खा सकते हैं।
0: बस शुरुआत वहीं से करो,
1: और खाना खाते समय टीवी बंद और मोबाइल भी दूर, है ना?
0: हाँ, उस समय परिवार एक दूसरे के साथ रहें, बच्चे से बातें करें, उसकी बातें सुनें और उससे अपनी बातें कहने का मौका भी दें।
1: कविता, अगर सच कहूँ तो मैं जब भी खाना खिलाने के लिए अपने बेटे को बोलती हूँ तो उस समय पहले मोबाइल ही पकड़ा देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि बस खाना पूरा हो जाए।
0: तुम क्या रीना, बहुत से माता पिता ऐसा ही करते हैं, लेकिन धीरे धीरे आदत बदली जा सकती है। उसको डांट कर नहीं, प्यार से समझा कर हमें मनाना चाहिए।
1: आज से मैं कोशिश करूंगी कि हम रात का खाना साथ बैठकर खाएं।
0: और हाँ रीना, खाने में भी कोशिश करो कि परिवार को घर का संतुलित और पौष्टिक भोजन मिले। दाल, हरी सब्जियां, अनाज, दूध, दही जैसे चीजें अपनी जरूरत और उपलब्धता के अनुसार हमें शामिल करनी चाहिए।
1: और बच्चे की पसंद भी पूछनी है क्या?
0: हाँ, सिर्फ उनकी पसंद का खाना ही नहीं, उसे अलग अलग पौष्टिक चीजों का स्वाद चखने की आदत भी हमें डालनी होगी।
1: तो अब समझ आया, साथ बैठकर खाना सिर्फ खाना खाने की बात नहीं है।
0: रीना, ये परिवार के साथ जुड़ने, बच्चों को अच्छी आदतें सिखाने और भोजन को लेकर सही व्यवहार सीखने का भी एक सुंदर मौका है।
1: बिल्कुल, चल आज से हमारे घर में एक नियम बनाते हैं, कम से कम एक वक्त का खाना तो हम सब साथ मिलकर खाएंगे।
0: और उस समय मोबाइल रहेगा दूर
2: और बातें होंगी भरपूर।
0: श्रोता साथियों, आपने सुना कविता और रीना की बातचीत। परिवार के साथ बैठकर भोजन करना कोई मुश्किल काम नहीं होता, थोड़ी सी कोशिश से भोजन का समय, परिवार के साथ बातचीत, अपनापन और बच्चों को अच्छी आदतें सिखाने का अवसर बन सकता है। बच्चे हमारे कहे हुए शब्दों से ज्यादा हमारे व्यवहार को देखते हैं, इसलिए अगर हम चाहते हैं कि बच्चे भोजन का सम्मान करें, मोबाइल से दूरी रखें, मिल बांट कर रहें और परिवार के साथ समय बिताएं, तो इसकी शुरुआत हम अपने घर से कर सकते हैं। इसलिए आज से कोशिश कीजिए कि दिन में कम से कम एक बार परिवार के साथ बैठें, भोजन करें और कुछ पल दिल से बातें करें, क्योंकि भोजन सिर्फ शरीर को पोषण नहीं देता, परिवार का साथ रिश्तों को भी पोषण देता है। तो श्रोता साथियों, बातें कार्यक्रम में हमारी आपसे ढेर सारी हो गई हैं और अब समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।

साथियों, इस गीत के साथ ही अब हम हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा बचपन से विदा लेना चाहेंगे। अंत में आपको यही कहना चाहूंगी कि परिवार के साथ बैठकर भोजन करना सुनने में भले ही एक छोटी सी आदत लगे, लेकिन इसका असर बच्चों के रोजमर्रा के जीवन पर कई तरीके से पड़ सकता है। भोजन का समय केवल पेट भरने का समय नहीं होता, बल्कि यह परिवार के सदस्यों के एक दूसरे के करीब आने, बातचीत करने और बच्चों को जीवन की छोटी छोटी अच्छी आदतें सिखाने का भी अवसर होता है। जब परिवार के साथ बैठकर भोजन बच्चा करता है तो वह केवल भोजन करना नहीं सीखता, बल्कि वह बड़ों का सम्मान करना, अपनी बारी का इंतजार करना, भोजन साझा करना, परिवार के अनुसार भोजन लेना और भोजन को व्यर्थ न जाने देना जैसी आदतें भी धीरे धीरे सीखता है। इन छोटी छोटी आदतों का प्रभाव आगे चलकर उनके व्यवहार और व्यक्तित्व में दिखाई दे सकता है। इसलिए श्रोता साथियों, परिवार के साथ भोजन करते समय माता पिता बच्चों से उनके दिन के बारे में पूछ सकते हैं। बच्चा स्कूल में क्या सीख कर आया, उसे किस बात की खुशी हुई, कोई परेशानी तो नहीं हुई, इन छोटी छोटी बातों पर बातचीत की जा सकती है। इससे बच्चे को यह महसूस होगा कि परिवार में उसकी बात सुनी जाती है और उसकी भावनाओं को महत्व दिया जाता है। तो श्रोता साथियों, बातें ढेर सारी हो गई हैं, फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में इसी समय। लेकिन जाने से पहले मैं आपको कार्यक्रम का पता बताना चाहूंगी, ताकि आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखिए, कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर को कार्यक्रम सच्चा बचपन से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पति का कपड़ा।
0: कपड़ा।

0: कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरा वारा हंगरा किसान भाई बोना ने आपनी बोन सीमा
1: ने आपनी बोन जागृति नो
0: राम राम। आप सब हामरी रहा हो आपनो सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM माते ने आप सब नु स्वागत करा हा हमारे आज ना कार्यक्रम खेतीवाड़ी में।
1: होवे किसान भाई बोन कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने हाजिर थे गया हा एक नया विषय ने हाते। सीमा बोन आज आपने से बातें कर रहा हूँ ये विषय है समन्वित खेती ने बारा में। आज जानूंगा क्या समन्वित खेती हूँ के वाय ने आपने किसान भाई बोन बल्ले हरते महत्व राखे है आ खेती।
0: होवे जागृति बोन आपने कार्यक्रम में अड़ा विषय माते घना अकानी बातें करूंगा पर कार्यक्रम ने शुरुआत में हमरा गीत ने मोरे करा आपड़ी बातें।
1: होवे तो किसान भाई बोन आप हम बरतरो आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें वागड़ रेडियो 90.8 FM माते।

0: जागृति बोन, गीत तो आईशु पूरो ने गीत ने बाद एक वक्त फेरी किसान भाई बोनो नो स्वागत कर रहा कार्यक्रम खेती बाड़ी में
1: होवे। જેમ કે સીમાપોન આપણે કિસાન ભાઈ બહેનોને ગીત થકી પહેલે જ વિશે બતાડ્યું હતું કે આજે આપણે કાર્યક્રમમાં વાત કરવા રહ્યા સમન્વિત ખેતીને બારે મેં, તો આજે આની હેતી જાણકારી આલવા બદલે આપણે સ્ટુડિયોમાં પધારે તકા હે શ્રીમાન પ્રમોદ રોકડિયાજી, એ આપણે કિસાન ભાઈ બહેનોને બતાડેંગા કે આ સમન્વિત ખેતી શું કહેવાય ને આ ખેતી આપણે બદલે હરતે મહત્વપૂર્ણ હે।
0: હોવે જાગૃતિ બોન, તો પહેલે હમરા આણાની વાતે ને મોરે કરા આપણી વાતે।
1: હોવે સર નમસ્કાર।
2: હા નમસ્કાર
1: सर, आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं वागड़ रेडियो परिवार में।
2: नमस्कार श्रोता बंधु।
1: सर जैसा कि कार्यक्रम खेती बाड़ी में हमारी हर हमेशा कार्यक्रम में हमारे किसान भाई बहनों को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं कि किस तरीके से हमारे किसान भाई बहन जो हैं वो खेती करें ताकि उन्हें लाभ प्राप्त हो, तो आज भी हमारे बीच में एक नया विषय जुड़ने जा रहा है। आज हम बात करेंगे कि समन्वित खेती क्या है। हम सभी सुनते आ रहे हैं कि समन्वित खेती से हमें बहुत सारे फायदे होते हैं, तो आखिरकार सर हमें यही जानना है कि समन्वित खेती होती क्या है।
2: किसान भाई, जैसे कि अपन इस आज अपन चर्चा कर रहे हैं कि समन्वित खेती क्या होती है, तो दो तरह से खेती का जो है, ये खेती के जैसे काम करते हैं अपन फील्ड में जो किसान भाई सब जानते हैं, तो या तो हम एकल खेती करते हैं या फिर हम कहते हैं समन्वित खेती करते
1: जी
2: हैं।
1: जी।
2: एकल खेती जिसमें कहते हैं जो कि जिसमें जैसे एक ही खेत है हमारा, जैसे 2-3 बीघा का कोई खेत है, उसमें हमने मकई लगा ली या हमने सोयाबीन ही लगा ली, मतलब एक फसल लगाई हमने एक सीजन के अंदर, खरीफ में एक सीजन में एक फसल लगाई और रबी में एक दूसरी लगा ली, तो उस तरह की वो फसल होती है, वो खेती होती है, उसको कहते हैं एकल खेती। एकल खेती यानी एक फसल
1: जी बिल्कुल।
2: समन्वित मतलब कई सारी चीजें, तो समन्वित में हम कई सारे मॉडल को काम में लेके लेते हैं कि समन्वित मतलब सभी कई सारी फसलें भी होती है उसमें, और उसमें हमारा दूसरे जीव जंतु का जो हमारा जो है, जैसे अपने जो हमारे किसान के मित्र हैं उनका भी उपयोग करते हैं, फिर हमारे जो पशु हैं उनका भी, जो हमारा गोबर और जो उसका गोमूत्र होता है उसका भी प्रयोग करते हैं खेत में
1: जी जी।
2: जो पत्ते वगैरह खेत में गिर रहे हैं तो उससे भी हम अपना खाद बनाकर उसको भी हमारी खाद बना के रूप में काम में लेते हैं। तो समन्वित खेती उस तरह से होती है कि एक ही खेत के अंदर कई सारी फसलें लेना और उन्हीं फसलों में एक चक्र के इस रूप में कि गाय का गोबर है तो वो खाद के रूप में काम आए
1: जी जी।
2: और जो फसल के उत्पाद हैं और जो चारा है वो गाय वगैरह काम आए, मतलब उसको घुमा के उसको सारी चीजों का प्रयास करें ताकि हमें जो अपन कहते हैं ना खेत गांव का पानी गांव में और खेत का खाद
1: जी बिल्कुल जी जी,
2: तो उसका भी उपयोग हो जाए और हमारा ज्यादा हमको बाहर से आदान भी लाना नहीं पड़े इनपुट, उसका भी उपयोग हो जाए और खेती के अंदर हमारी लागत कम पड़ जाए
1: जी बिल्कुल। सर जैसा कि आपने बताया कि समन्वित खेती वो है जिसमें हम सभी प्रकार की जो चीजें होती हैं उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि आपने बताया कि समन्वित खेती में हम ढेर सारी खेती करते हैं, साथ ही उसी में हम जो पशुओं का जो गोबर होता है उसका खाद भी बना सकते हैं, उसका भी उपयोग कर सकते हैं, और साथ ही खेत में से जो फल पत्तियां हमें प्राप्त हो रहे हैं उनका भी हम उपयोग कर सकते हैं।
2: बिल्कुल, उसका चारा भी ले लेते हैं, जैसे पशुओं के लिए चारा भी हो जाता है और जो पत्ते वगैरह गिरते हैं तो उसका खाद भी बन जाता है
1: जी बिल्कुल।
2: तो इस तरह से एक उसका एक चक्री उसका मॉडल होता है, तो उसमें समन्वित खेती होती है और उसमें कई सारी फसलों का हम उपयोग भी करते हैं
1: जी बिल्कुल।
2: समन्वित खेती बहुत ज्यादा सफल जब भी होती है जब उसमें मिश्रित खेती करते हैं
1: जी बिल्कुल।
2: समन्वित खेती के अंदर मिश्रित खेती में क्या कि किसी तरह से मतलब कई सारी फसलें ले में, तो उसको मिश्रित खेती के
1: जी बिल्कुल। तो सर इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि समन्वित खेती हमारे लिए बहुत फायदेमंद होती है, तो यही हम सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि समन्वित खेती के लिए हमें खेत किस प्रकार का होना चाहिए।
2: खेत हम जैसे भी अपना जो भी उपलब्ध खेत हैं, जैसे हमारे जो अपने अपने क्षेत्र के बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़ के जो खेत हैं, तो हमारे जनरली किसानों के 2-4 बीघा के खेत हैं, तो उसमें या तो किसी में सिंचाई की व्यवस्था है और या फिर उसके अंदर बरसात आधारित है, तो उसमें दोनों तरह के हैं कि अगर सिंचाई की व्यवस्था होगी तो हम ऐसी फसलों का चुनाव करते हैं उसमें कि जो सिंचित होती हैं, जिसमें हम आगे से आगे ले जा सकते हैं। कई सारी फसलें होती है जैसे हम कपास का प्रयोग किया
1: जी बिल्कुल,
2: तो कपास सिंचाई में भी काम आ रही है और बिना सिंचाई के भी काम आ रही है
1: जी हाँ।
2: ऐसे कई सारी आगे फिर उसमें उन्हीं के रूप में लेके हम खरीफ के बाद में रबी का जैसे गेहूं वगैरह का लगाने काम में लेते हैं, और असिंचित वाले जो है समन्वित खेती उसमें क्या है कि हम ज्यादातर हमारा पूरा फोकस होता है कि वर्षा आधारित खेती होती है, तो उसमें हमारे साल भर का उपयोग करने के लिए अनाज पैदा हो जाए, सब्जी पैदा हो जाए, हमारा फसल पैदा हो जाए, तो इस तरह से उसमें ज्यादातर मिश्रित खेती का हमारा प्रयोग किया जाता है, ताकि मिश्रित खेती में क्या करके हम जितने भी हमारा जो खाने का पोषण है
1: जी
2: जो
1: जी।
2: हमारे घर के लिए आवश्यक है उसका भी हम खेत में पैदा कर लेते हैं और उन सब का चारा हमारे पशुओं के लिए भी काम आता है
1: जी बिल्कुल।
2: तो ये एक मिश्रित खेती इसमें ज्यादा मुख्य हो जाती है
1: जी बिल्कुल। सर आपने जैसा कि बताया कि हमारे किसान भाई बहनों के पास जो भी उपयुक्त तो खेत है उसमें वो कृषि कर सकते हैं, लेकिन इसमें ध्यान रखने योग्य बात ये है कि जिस भूमि में अगर सिंचाई की व्यवस्था ज्यादा है तो उन्हें ऐसी फसलें करनी है जिसमें सिंचाई की ज्यादा जरूरत हो, और अगर सिंचाई की व्यवस्था कम है तो उन्हें ऐसी फसलों का उपयोग करना है जिसमें सिंचाई कम चाहिए
2: कम चाहिए। और उसमें भी क्या, जैसे अभी सिंचाई वाली में तो हम जैसे कई डोलियां बना के खेती करते हैं कि पानी पिलाना है तो डोली बनाओ
1: जी,
2: और डोली के अंदर जो नीचे वाली जगह पे हम कोई दूसरी फसल लगा लो ये कर लें, डोली के ऊपर कुछ फसलें हम दूसरी लगाते हैं, कई बार आता है कि सोयाबीन हम डोलियों के ऊपर लगाते हैं
1: जी बिल्कुल,
2: मक्का भी अगर जाते हैं कि जो पानी है तो डोली के ऊपर जब बीज लगाएंगे तो उसका जड़ों का विस्तार अच्छा होता है। तो ये सिंचाई खेती के मॉडल में आता है
1: जी बिल्कुल।
2: जबकि असिंचित में क्या है कि हम वो खेत में देखते हैं कि कई सारी फसलें हमने ले ली, जैसे हमारा जो हमारे इस क्षेत्र के चरण में है जैसे खरीफ के अंदर हमारे मक्का भी है, चावल भी है, कपास भी है, फिर दालों वाली फसलों में हम ले लेते हैं कि हमारे उड़द भी है, चावला भी है और सोयाबीन भी हम उसमें मानते हैं, दाल भी मानते हैं और उसको तेल में भी मानते हैं, प्रोटीन वाली फसल मानते हैं। इसके अलावा हमारा जो तेल वाली फसलों में तिल है, मूंगफली है, ये भी हमें प्रयोग में ले लेते हैं
1: जी बिल्कुल।
2: फिर इसमें हमारा जो किसान है हम उसमें सब्जियों का भी उपयोग करते हैं कि हमारा जो फसल है बाड़ी टाइप से हमारा जो खेत है तो उसमें हम जमीन के ऊपर जो हमारी जो बेलों में लगती है जैसे कद्दू की बेल है, ककड़ी है, करेला है, या जितने भी बेल वाली फसलें हैं जो बरसात आधारित होती है, लौकी है, और ये हमारे घर के मेड़ के ऊपर चारों तरफ हम देखते हैं कि वो अपना बीन्स लगाए जाते हैं, सेमफली वगैरह वो लगा लेते हैं, भिंडी लगाते हैं हम
1: जी बिल्कुल,
2: है ना। ताकि ये क्या है फसलें ऐसी समन्वित खेती में जब हम समन्वित खेती कर रहे हैं तो हम कई सारी फसलों का हमारे खेत में सीमित खेत के अंदर चुनाव करते हैं
1: जी बिल्कुल।
2: और उसका चुनाव का मुख्य आधार भी होता है कि खेतों में आपस में उन फसलों का आपसी सामंजस्य हो। उसका आपसी सामंजस्य कैसे कि कुछ की जड़ें तो जाती है गहरी, कुछ की जड़ें जाती है कम
1: जी बिल्कुल,
2: है ना। तो उनका भी हमको उपयोग में लेना पड़ता है कि जड़ गहरे वाले के पास में कम जड़ वाला जो होता है तो वो अच्छा रहता है कि उसमें जो क्षेत्र है जहां से वो उन जड़ों में से वो जमीन के अंदर मिट्टी के अंदर से जो पौधा है खाद ले रहा है पानी ले रहा है तो उसका आपसी प्रतिस्पर्धा ना हो जाए
1: जी बिल्कुल
2: उसको लेने में, और खरपतवारों का भी हमारा नियंत्रण हो जाता है। फिर उसमें हम ये भी ध्यान रखते हैं कि साहब ऐसा नहीं भी है कि हमें जो फसल का पकाव है वो भी विभिन्न होना चाहिए
1: जी जी।
2: जैसे अपन कई बार देखते हैं कि मक्का के साथ में हम उड़द लगाते हैं, मक्का के साथ में हम सोयाबीन लगाते हैं, तो ये मक्का के साथ में कई सारी ऐसी दूसरी फसलें भी लगा लेते हैं। तो हमारे देखते हैं मक्का का तो पौधा जाता है लंबा
1: जी हाँ जी बिल्कुल,
2: और जो उड़द है सोयाबीन है इनका जाता है पौधा छोटा। तो जो मक्का का जो भुट्टा लगता है तो उसके अंदर अगर हमारा शेड इफेक्ट आ जाए या उसमें छाया वगैरह पड़ेगा तो भुट्टे का विस्तार नहीं हो पाएगा, उसका फलन नहीं हो पाएगा अच्छा। लेकिन उसको क्या है कि ऊपर की तरफ से हवा अच्छी मिल जाती है
1: जी बिल्कुल,
2: और नीचे वाला जो पौधा है जो जमीन है जो जमीन के ऊपर ज्यादातर रखने वाले जैसे उड़द वगैरह उसकी लंबाई पौधे की ऊंचाई ज्यादा नहीं होती तो उसमें उनको भी नुकसान नहीं होता, उनको वो जो वातावरण की गर्मी है जो उसका जगह है वो मिल जाती है तो उसका विस्तार उतना ही होता है
1: जी बिल्कुल।
2: तो हमें उस सीमित जगहों पर बहुत ज्यादा उपयोग हो जाता है। फिर उसका जो फलन की बात कर लें तो फलन तो इस तरह से हो गया, जड़ों का विस्तार भी अपन ने बात कर लिया कि जड़ें भी किसी की गहरी जाती है, कपास की जड़ गहरी जाती है जबकि मक्का की जड़ है वो कम गहरी जाती है, है ना, उतली जाती है, ऊपर ऊपर ही रहती है, तो उनमें आपस में जड़ों में कंपटीशन नहीं होता। वो कपास की जड़ें वो गहराई से अपना खाना पानी जो उसका पोषण है वो उपयोग ले लेती है
1: जी बिल्कुल,
2: जबकि ये है मक्का की है वो जमीन की सतह से ले लेती सारा
1: जी बिल्कुल।
2: और उसका पकना भाई जैसे कपास और मक्का की बात करते हैं तो कपास का जो डोड़े बनते हैं तो वो हमारा लेट बनते हैं, नवंबर दिसंबर में आके और वो चुनाई की तैयारी में आता है, जबकि उस जब तक मक्का तो हमारा सितंबर अक्टूबर में पक जाता है
1: जी बिल्कुल।
2: तो इसलिए उनका फैलाव और इन सब बातों को हमारा मिश्रित फसल के अंदर देखते हैं और ये हमारा समन्वित खेती का भी एक उसमें मॉडल में बन जाता है
1: जी बिल्कुल।
2: खेत को मैक्सिमम उपयोग अधिकतम उपयोग और खेत के जो आदानों का उपयोग और जो खेत की जो फसल पक रही है उसका खाने के लिए प्रयोग, उसका अपने जो मित्र कीट हैं वो पल रहे हैं उनका उपयोग, और जो उसके अंदर जो खाद बन रहे हैं पत्ते गिर रहे हैं जमीन के ऊपर तो उसका भी खाद बनाकर हम वापिस उसका उर्वरक के रूप में काम में लेना
1: जी बिल्कुल। तो सर जैसा कि आप बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं हमारे किसान भाई बहनों को कि उनके लिए समन्वित खेती किस तरीके से महत्वपूर्ण हो सकती है, तो यही हम सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि समन्वित खेती में हमारे किसान भाई बहन कम खर्च में अधिक लाभ कैसे कमा सकते हैं?
2: अधिक लाभ कमाने के लिए हमें क्या, दो तरह से लाभ है, एक तो हमारा उत्पादन ज्यादा हो
1: जी बिल्कुल,
2: और हमारा खर्चा कम हो, जब ही हमें लाभ का जो अंश है वो ज्यादा हो पाए
1: जी बिल्कुल।
2: हमें इसलिए समन्वित खेती का हम क्यों उसमें ज्यादा वो जोर डालते हैं कि समन्वित खेती में हमारी खेती की लागत कम पड़ेगी
1: जी बिल्कुल,
2: और खेती की लागत कम होने से क्या है, क्योंकि हमारा आपसी उसमें उपयोग हो गया, तो खेती की लागत में उर्वरक में दवाई के रूप में और उसमें हमारा कम उपयोग हुआ खरपतवारों में, और उसमें उत्पादन में भी जो कहते हैं पर यूनिट उत्पादन भी ज्यादा होगा
1: जी हाँ।
2: यानी कि जो जमीन का मैक्सिमम उपयोग हो पाएगा, यानी अगर एकल खेती में तो केवल हमने मक्का की खेती करी है, मक्का के पौधे ही पौधे लगाए, लेकिन नीचे जमीन के ऊपर जो खाली जगह जा रही है उसमें खरपतवार से हम सफाई करते रहेंगे, खरपतवार लगाएंगे, खरपतवार की हटाने की लागत बढ़ाएंगे, तो उसके रूप में खरपतवार की जगह अगर हमने जैसे उड़द लगा दी, सोयाबीन लगा दी, तो वो खरपतवार की श्रेणी में तो है नहीं
1: जी बिल्कुल,
2: और वो उत्पादन भी देगा
1: जी बिल्कुल।
2: तो उस तरह से हम समन्वित खेती करके हम लागत को कम कर लेते हैं, और लागत तो कम करने के साथ साथ हम उसमें हमारा उत्पादन है वो भी डेढ़ा कर दुगना हो जाता है
1: जी बिल्कुल।
2: तो ऐसे हम कह सकते हैं कि जब समन्वित खेती करेंगे तो हमें उत्पादन में फायदा हो और लागत में कम हो, तो जो हमारा नेट प्रॉफिट है, सकल आय जिसको कहते हैं अपन, वो सकल आय अधिक होगी
1: जी बिल्कुल।
2: तो इस तरह से हम सकल आय अधिक करने के लिए समन्वित खेती का प्रयोग करते हैं
1: जी बिल्कुल।
2: तो उससे हमारा जमीन का अधिकतम उपयोग और जमीन के उर्वरकों का आदानों का हमारे खेत पर ही बन जाना, तो वो हमारा काम आता है। और फिर इनमें हमारा ये समन्वित खेती में हमारा ये भी है कि जो हमारा पशु है तो उसको हमारे साल भर के चारे की व्यवस्था भी चाहिए
1: जी बिल्कुल।
2: अब हमने ऐसी फसलों का चुनाव करा है कि जो साल भर उसको खड़ी रहती है, जैसे अब हम अपने जो अरहर की दाल वगैरह बनाते
1: जी,
2: हैं
1: जी, जी।
2: तो अरहर की जो फसल है तो वो भी ऐसी फसल है कि जिसकी अवधि लंबी है, वो 7 महीने 8 महीने 9 महीने तक फसल जाती है
1: जी बिल्कुल।
2: कपास की अवधि भी लंबी है, तो इसका खेत पे जो है उसका जो पेड़ का विस्तार है वो बाद में आता है, बीच में पहले फसलें पक जाती है, और उसका जो पौधे का जो पत्तियां वगैरह जो भी है वो चारे में भी काम में आती रहती है। तो पशुओं को भी हमारे चारा मिलता रहता है, पोषणकारी चारा भी चाहिए हमें पशुओं के लिए
1: जी बिल्कुल।
2: तो वो भी मिलता है, क्योंकि उसमें भी जैसे हम जीव हैं, जितने भी तमाम जैसे हम लोग हैं, हमें भी जो हमारे भोजन के लिए प्रोटीन भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, फैट भी चाहिए, ऐसे पशुओं के लिए भी पोषणकारी
1: चाहिए जी बिल्कुल।
2: तो वो भी उनको विभिन्न फसलों का जो चारा मिलता रहता है, तो उसके लिए उसका एक कंपोजिट उसका भी पोषण के लिए उसका भी एक चारा बन जाता है
1: जी बिल्कुल।
2: तो ये इस तरह से हमारा समन्वित खेती जो होती है, तो वो हमारे पूरी तरह से हमको खेत के लिए, वातावरण के लिए, पशुओं के लिए, हमारी आय बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा साधन बन जाता है
1: जी बिल्कुल।
2: तो इस तरह से हमें समन्वित खेती का उपयोग भी करना चाहिए और उसको हमको लेना भी चाहिए
1: जी बिल्कुल। तो सर, जैसा कि आज आपने कार्यक्रम में हमारे साथियों को बहुत अच्छी जानकारी दी समन्वित खेती को लेकर, और आपका बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं सर कि आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाई बहनों को आपने इतनी अच्छी जानकारी दी।
2: धन्यवाद सर।
3: सीमा बोन, जेम के आज प्रमोद सर आवत ने एने अपने किसान भाई बहनों ने घनी आकरनी वाते बताड़ी कि आ समन्वित खेती हूँ कहवा आनु अपने पल्ले हूँ महत्व राखे है। तो जेम की बात है तो आपने घना कनी करी ने आप देखी रहो कि टेम थी गयो है कार्यक्रम थकी सूटो पड़वानो, तो सूटो तो पड़ंगा पण मारू मन थी रू कि साथे साथे भी आपने एक और गीत सांभरी ला।
0: हवे जागृति बोन, तो आपने हमरा गीत ने मोरे पड़े सूट
3: होवे।

भाईन बोनो, घर तक निकलते वक्त कोई आपनो इंतजार करी रू है। मानी दुआ, पिता नी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपनो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। भाई ने बोनो, आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ नी छाव में आपड़े रह हूं, या आपड़े नी कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल रह हूं, ई भी आपड़ा थकी कई आश रागे है। होवे अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा, ने आपड़े धरती ने जीवन दान आलंगा। होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो। होवे आज नाना ना कदम है, ई अबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है। वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: जी हाँ साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है वन्य जीव संरक्षण, प्रकृति के संतुलन की रक्षा को लेकर।
0: बिल्कुल,
1: जैसा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हमारे श्रोता साथियों से बातचीत करें तो साथियों, प्रकृति ने धरती को केवल मनुष्य के लिए नहीं बनाया। इस धरती पर पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़, मिट्टी, पक्षी, कीट पतंगे और असंख्य वन्य जीव मिलकर जीवन का एक ऐसा ताना बाना बनाते हैं जिसमें हर जीव की अपनी भूमिका होती है। जंगल में रहने वाला एक छोटा सा कीट हो या आसमान में उड़ने वाला पक्षी, खेतों के आसपास दिखाई देने वाला जीव हो या जंगल का कोई बड़ा वन्य प्राणी, प्रकृति के संतुलन में सभी का योगदान रहता है।
0: बिल्कुल, तो जागृति जी, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआत का पहला गीत हम हमारे श्रोता साथियों को सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे बातचीत रहने वाली है वन्य जीव संरक्षण, प्रकृति के संतुलन की रक्षा को लेकर।
1: बिल्कुल, तो जागृति जी यही बात करें तो श्रोता साथियों, जब हम किसी वन्य जीव को केवल एक जानवर समझते हैं तब हम उसके महत्व को छोटा कर देते हैं, क्योंकि वास्तव में वन्य जीव प्रकृति की उस व्यवस्था का हिस्सा है जो जंगलों, खेतों, जल स्रोतों और पर्यावरण को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए वन्य जीवों का संरक्षण केवल जंगलों की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि यह हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। यही सोच सच्चे स्वराज की भावना से भी जुड़ती है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि श्रोता साथियों, स्वराज का अर्थ केवल अपने निर्णय स्वयं लेना नहीं है बल्कि अपने आसपास के साधनों, प्रकृति और आने वाली पीढ़ियों के प्रति जिम्मेदारी समझना भी है। जब कोई गांव अपने जल, जंगल और जमीन की रक्षा करता है जागृति जी, तब वो अपने भविष्य की रक्षा भी कर पाता है।
0: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि प्रकृति में हर जीव एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कोई जीव भोजन श्रृंखला का हिस्सा है, कोई बीजों के फैलाव में मदद करता है, कोई कीटों की संख्या को नियंत्रित करता है और कोई मिट्टी तथा जंगल की प्राकृतिक प्रक्रिया में योगदान देता है।
1: बिल्कुल,
0: अगर किसी एक प्रजाति की संख्या बहुत कम हो जाए या वह पूरी तरह समाप्त हो जाए तो उसका प्रभाव दूसरे जीवों और पूरे पर्यावरण पर भी पड़ सकता है। इसी कारण हम कह सकते हैं कि जैव विविधता का संरक्षण आवश्यक है। हम अक्सर जंगल को केवल पेड़ों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन जंगल एक पूरा जीवन तंत्र है। उसमें पेड़ हैं, झाड़ियां हैं, घास है, पक्षी है, कीट है और छोटे बड़े वन्य जीव है और जल स्रोत है। साथ ही इन सभी के बीच एक प्राकृतिक संबंध भी होता है।
1: जी हाँ जागृति जी, जंगल हमें छाया, फल, औषधीय पौधे, ईंधन, चारा और कई अन्य प्राकृतिक संसाधन भी देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जंगल मिट्टी को बचाने और जल चक्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्रोता साथियों, कई ग्रामीण और आदिवासी समुदायों का जीवन जंगल से गहराई से जुड़ा रहा है। पीढ़ियों से स्थानीय लोगों ने जंगल और प्रकृति के साथ रहने के तरीके सीखे हैं। उन्होंने मौसम, पेड़ पौधे, जल स्रोत और वन्य जीवों को समझते हुए अपनी जीवन शैली विकसित की है।
0: बिल्कुल,
1: हमारे पारंपरिक ज्ञान में प्रकृति के प्रति सम्मान की भावना दिखाई देती है। इसलिए आधुनिक विकास के साथ स्थानीय ज्ञान और अनुभव को भी महत्व देना जरूरी है।
0: बिल्कुल अंजलि, आपने सही कहा, क्योंकि आज अनेक वन्य जीवों के सामने बहुत सारे प्राकृतिक आवास का कम होना एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। जंगलों का कम होना प्राकृतिक क्षेत्र में बदलाव, प्रदूषण, जल स्रोतों का सूखना और मानव गतिविधियों का बढ़ता दबाव वन्य जीवों के जीवन को प्रभावित कर सकता है। जब किसी वन्य जीव का प्राकृतिक आवास कम होता है तो उसके भोजन और पानी के स्रोत भी प्रभावित होते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि भोजन और पानी की तलाश में वन्य जीव मानव बस्तियों के आसपास पहुंच जाते हैं। इससे मानव और वन्य जीव के बीच संघर्ष की स्थिति बन सकती है। ऐसी परिस्थितियों में डर या गुस्से के बजाय समझदारी, सावधानी और उचित व्यवस्था की आवश्यकता होती है।
1: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि वन्य जीव संरक्षण को जल, जंगल और जमीन के संरक्षण से अलग नहीं किया जा सकता।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि जहाँ जल स्रोत सुरक्षित हैं, वहाँ अनेक जीवों के लिए जीवन की संभावना बनी रहती है। जहाँ जंगल सुरक्षित है वहाँ वन्य जीवों को आश्रय और भोजन मिलता है। जहाँ जमीन का संतुलन उपयोगी होता है वहाँ खेती और प्राकृतिक जीव दोनों के लिए बेहतर परिस्थितियाँ बनती है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए गांव स्तर पर तालाबों, कुओं, छोटी जल धाराओं और अन्य स्थानीय जल स्रोतों की देखभाल करना जरूरी है। पेड़ लगाना ही नहीं, लगाए गए पेड़ों को बचाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि कहा जाता है कि वन्य जीव संरक्षण की शुरुआत केवल बड़े अभयारण्यों से नहीं होती, इसकी शुरुआत हमारे गांव और आसपास के प्राकृतिक क्षेत्रों से भी हो सकती है।
0: बिल्कुल अंजलि, हम कह सकते हैं कि गांव के लोग मिलकर अपने आसपास के पेड़ों, चरागाहों, जल स्रोतों और प्राकृतिक क्षेत्रों की देखभाल कर सकते हैं। अनावश्यक रूप से पेड़ों की कटाई रोकना, जल स्रोतों में कचरा नहीं डालना, आग से जंगलों को बचाने के लिए सावधानी रखना और वन्य जीवों के प्रति संवेदनशील व्यवहार करना छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कदम है। ग्राम सभा भी प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा का महत्वपूर्ण मंच बन सकती है। गाँव के लोग स्थानीय समस्याओं को सामने रख कर सामूहिक समाधान की दिशा में काम कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: यही सामुदायिक भागीदारी सच्चे स्वराज की मजबूत नींव बनती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, मनुष्य और वन्य जीव दोनों का अस्तित्व प्रकृति से जुड़ा रहा है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए हमारा लक्ष्य वन्य जीवों को मनुष्य से अलग करके देखना नहीं बल्कि दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना होना चाहिए। यदि किसी क्षेत्र में वन्य जीवों की गतिविधि दिखाई देती है तो लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए और स्थानीय वन विभाग या संबंधित जो अधिकारी है उन्हें सूचना देनी चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: वन्य जीव को पकड़ने, नुकसान पहुंचाने या खुद उसके पीछे जाने के बजाय उचित व्यवस्था और विशेषज्ञ सहायता पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जागरूकता से कई गलत फहमियों को कम किया जा सकता है।
0: जी हाँ, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हम बात कर रहे हैं, वन्य जीव संरक्षण प्रकृति के संतुलन की रक्षा को लेकर बातें निरंतर बनी रहेंगी कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि जागृति जी, गीत से पहले हमने मानव और वन्य जीव के बीच संतुलन के बारे में जाना। यही बात करें बच्चों और युवाओं की जिम्मेदारी की, तो श्रोता साथियों, वन्य जीव संरक्षण की सोच बचपन से विकसित होनी चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: बच्चों को प्रकृति के बारे में केवल किताबों में पढ़ाने के बजाय उन्हें अपने आसपास के पेड़ पौधों, पक्षियों और प्राकृतिक संसाधनों को समझने का अवसर देना चाहिए। युवा इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वे जागरूकता अभियान चला सकते हैं, गांव में प्रकृति संरक्षण की जानकारी साझा कर सकते हैं और डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके लोगों तक सही संदेश पहुंचा सकते हैं। युवाओं के हाथ में तकनीक है और यदि तकनीक का उपयोग प्रकृति के हित में किया जाए जागृति जी, तो जागरूकता का संदेश बहुत दूर तक पहुंच सकता है।
1: बिल्कुल अंजलि, जैसा कि आपने बच्चों और युवाओं की जिम्मेदारी को लेकर हमारे श्रोता साथियों को बताया, यही अगर सामुदायिक रेडियो की भूमिका को लेकर हमारे श्रोता साथियों को हम बताएं, तो श्रोता साथी, सामुदायिक रेडियो भी प्रकृति और वन्य जीव संरक्षण के संदेश को गाँव गाँव तक पहुँचाने का प्रभावी माध्यम बनता है। स्थानीय भाषा में हम देखते हैं कि स्थानीय उदाहरणों के साथ जानकारी देने से लोग विषयों को आसानी से समझ पाते हैं और हम हमारे रेडियो के माध्यम से भी वन विभागों के विशेषज्ञ, स्थानीय जानकारों, किसान, ग्रामीणों और युवाओं की बातचीत प्रसारित करते हैं। साथ ही वन्य जीवों से संबंधित भ्रम को दूर करने, प्राकृतिक संसाधनों की जानकारी देने और लोगों को जिम्मेदार व्यवहार के लिए भी प्रेरित करते हैं। और इस तरह हम कह सकते हैं कि रेडियो केवल सूचना देने का माध्यम नहीं रहता, बल्कि समुदाय को प्रकृति संरक्षण की दिशा में जोड़ने की आवाज बन सकता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि विकास आवश्यक है, लेकिन ऐसा विकास जो प्रकृति की कीमत पर हो, लंबे समय में समाज के लिए चुनौती बन सकता है।
1: जी हाँ,
0: सड़क, भवन, उद्योग और अन्य सुविधाएं जरूरी है, लेकिन इसके साथ पर्यावरणीय संतुलन का ध्यान रखना भी जरूरी है। हमें ये समझना होगा कि प्रकृति कोई अलग विषय नहीं है, हमारा भोजन, पानी, हवा, खेती और स्वास्थ्य सभी प्रकृति से जुड़े हुए हैं।
1: बिल्कुल,
0: जब जंगल सुरक्षित होंगे, जल स्रोत सुरक्षित होंगे और जीव विविधता बनी रहेगी, तभी आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ पर्यावरण उपलब्ध होगा। वन्य जीव संरक्षण का अर्थ केवल किसी जानवर को बचाना नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: इसका अर्थ उसके पूरे प्राकृतिक आवास को बचाना है। यदि जंगल नहीं रहेंगे, जल स्रोत नहीं रहेंगे और भोजन उपलब्ध नहीं होगा, तो केवल किसी एक वन्य जीव को बचाना पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए संरक्षण का दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिए। पेड़, पानी, मिट्टी, घास, पक्षी, कीट और अन्य वन्य जीव हैं, इन सभी को एक साथ हमें समझना होगा।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि सच्चा स्वराज तब मजबूत होता है जब समुदाय अपने अधिकारों के साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी समझता है। जल, जंगल और जमीन केवल संसाधन नहीं है, यह हमारे जीवन का आधार है। अगर गांव अपने तालाब को साफ रखता है, पेड़ों की रक्षा करता है, प्राकृतिक क्षेत्रों को बचाता है और वन्य जीवों के प्रति संवेदनशील व्यवहार करता है, तो वो केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं कर रहा होता, बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित कर रहा होता है। स्वराज की असली भावना यही है श्रोताओं, कि हम अपने आसपास की चीजों को केवल उपयोग करने की वस्तु न समझें, बल्कि उनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी लें।
0: बिल्कुल,
1: वन्य जीवों की आवाज शायद हमारी भाषा में न हो अंजलि, लेकिन उनका अस्तित्व हमें बहुत कुछ कहता है। जंगल शांत दिखाई दे सकता है, लेकिन उस शांति के भीतर जीवन की अनगिनत आवाजें मौजूद है श्रोताओं। हमें ये तय करना है कि हम उस जीवन व्यवस्था को कमजोर करेंगे या उसकी रक्षा में अपना योगदान देंगे। एक पेड़ बचाना एक जल स्रोत बचाना है, एक प्राकृतिक क्षेत्र को सुरक्षित रखना और किसी वन्य जीव के प्रति संवेदनशील व्यवहार करना। ये जो छोटे छोटे कदम दिखाई दे रहे हैं श्रोताओं, लेकिन इन छोटे छोटे कदमों से प्रकृति का बड़ा संतुलन कायम रहता है।
0: बिल्कुल,
1: कहा गया है कि प्रकृति बचेगी तो हमारा जीवन बचेगा, वन्य जीव बचेंगे तो जैव विविधता बचेगी, जंगल बचेंगे तो जल और जमीन बचेंगे, और जब समुदाय प्रकृति की जिम्मेदारी उठाएगा तभी सच्चे स्वराज की भावना मजबूत होगी।
0: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि प्रकृति से केवल हमें लेना नहीं है, बल्कि प्रकृति को लौटाना भी है, क्योंकि धरती हमारी विरासत नहीं है, आने वाली पीढ़ियों की अमानत भी है।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि बातचीत तो बहुत सारी हो चुकी है और समय का मान रखते हुए आज के इस कार्यक्रम से हम विदा लेते हैं, पर जाने से पहले सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल,

0: साथियों इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम के माध्यम से बातें रही वन्य जीव संरक्षण प्रकृति के संतुलन की रक्षा को लेकर, ये बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हो उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारश्चर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाई बोनु, आ लक्षण आपने अपने मई देखाए तो आपने अपने पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मे जाने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार, पत्तेदार सब्जी, गुड़,

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
2: नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर एक नए विषय के साथ में। श्रोता साथियों, जहाँ हम बात करते हैं हमारे परिवार की और हमारे स्वास्थ्य की। सुबह का समय पूरे दिन की शुरुआत का समय होता है।
0: बिल्कुल,
1: सुबह हम जैसे ही भोजन करते हैं उसका असर हमारी ऊर्जा, काम करने की क्षमता और पूरे दिन की सक्रियता पर पड़ सकता है। लेकिन अक्सर हमारी भागदौड़ भरी दिनचर्या में सबसे पहले जिस चीज की अनदेखी होती है वह है नाश्ता। कई लोग सुबह उठकर सीधे काम में लग जाते हैं, कोई खेत की ओर निकल जाता है, कोई मजदूरी पर, कोई दुकान या कोई नौकरी पर, बच्चे स्कूल चले जाते हैं और महिलाएं घर के कामों में व्यस्त हो जाती हैं।
0: जी हाँ,
1: ऐसे में कई बार नाश्ता या तो छूट जाता है या फिर जल्दी में सिर्फ चाय बिस्कुट से ही काम चला लिया जाता है। लेकिन सवाल यह है मनीषा कि क्या सिर्फ पेट भरना ही पर्याप्त है? नहीं, हमारे शरीर को दिन की शुरुआत में ऐसे भोजन की जरूरत होती है जिससे हमें ऊर्जा मिले, भोजन में जरूरी पोषक तत्व भी शामिल हो। आज के कार्यक्रम में हम इस विषय पर ढेर सारी बातों को जानेंगे कि पौष्टिक नाश्ता क्या है, इसकी जरूरत क्यों है, नाश्ते में किन स्थानीय और आसानी से मिलने वाली चीजों को शामिल किया जा सकता है और परिवार के हर सदस्य के लिए नाश्ते को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है। तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि श्रोता साथियों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं पौष्टिक नाश्ता दिन की अच्छी शुरुआत को लेकर। अंजलि जी हम देखते हैं कि सुबह का समय हमारे दिन की शुरुआत करता है। जैसे श्रोता साथियों किसी वाहन को चलाने के लिए ईंधन की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे शरीर को काम करने के लिए भोजन और ऊर्जा की जरूरत होती है।
1: बिल्कुल,
0: रात भर सोने के बाद श्रोता साथियों हमारा शरीर कई घंटों बिना भोजन के रहता है। ऐसे समय में सुबह उठने के बाद लिया गया जो भोजन होता है वो हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है।
1: जी जी।
0: अगर सुबह का भोजन पौष्टिक और संतुलित हो तो हम देखते हैं कि शरीर को ऊर्जा मिलती है, मन प्रसन्न रहता है और दिन भर का जो काम है वो आसानी से हम कर पाते हैं।
1: बिल्कुल मनीषा, हम देखते हैं कि सुबह कई घंटों सोने के बाद जब हम जागते हैं तो शरीर को दोबारा ऊर्जा की जरूरत होती है। रात के भोजन और सुबह के बीच काफी अंतर हो जाता है। ऐसे में पौष्टिक नाश्ता शरीर को दिन के काम के लिए ऊर्जा देने में मदद करता है। अगर हम नियमित रूप से संतुलित नाश्ता करते हैं तो दिन की शुरुआत बेहतर तरीके से हो सकती है। खेत में काम करने वाले व्यक्ति के लिए पर्याप्त ऊर्जा जरूरी है, बच्चों के लिए पढ़ाई और खेलकूद के लिए ऊर्जा जरूरी है और महिलाओं के लिए घर और बाहर की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए पौष्टिक भोजन जरूरी है। क्योंकि नाश्ता केवल पेट भरने के लिए नहीं बल्कि शरीर को अलग अलग पोषक तत्व देने का एक अच्छा अवसर है। नाश्ते में हमें कोशिश करनी चाहिए कि भोजन में अनाज के साथ दाल और अन्य प्रोटीन स्रोत, दूध दही जैसे खाद्य पदार्थ, मौसमी फल सब्जियां और जरूरत के अनुसार मेवे और बीज भी शामिल हो। श्रोता साथियों पौष्टिक नाश्ता सुनकर यह मत सोचिए कि इसके लिए बाजार से महंगे खाद्य पदार्थ खरीदने पड़ेंगे। हमारे आसपास और हमारे घरों में ऐसी कई चीजें उपलब्ध होती हैं मनीषा जो स्वादिष्ट होने के साथ पोषण से भरपूर हो सकती हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बाजरा, मक्का, ज्वार, गेहूं ये स्थानीय अनाज हम खा सकते हैं। मूंग, चना, मसूर दालें खा सकते हैं। भुना चना, मूंगफली, दूध, दही, छाछ, मौसमी हरी सब्जियां, केले, अमरूद, पपीता, तिल, अलसी के बीज, पोहा, उपमा, दलिया, रागी और अन्य मोटे अनाज से बने व्यंजन। श्रोता साथियों इन चीजों को मिलाकर हम घर पर ही कई तरह के पौष्टिक नाश्ते तैयार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सब्जियों वाला पोहा बनाया जा सकता है, उसमें मूंगफली या थोड़ी दाल डालने से भोजन को और पौष्टिक बनाया जा सकता है। इसी तरह दलिया और सब्जियां डालकर बनाया जा सकता है। बाजरे और ज्वार की रोटी के साथ दही मिलाया जा सकता है। भुना चना और मौसमी फल भी आसानी से खाए जा सकते हैं। यानी कि पौष्टिक नाश्ता बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज महंगाई नहीं बल्कि सही भोजन का चुनाव और थोड़ी सी योजना है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि पौष्टिक भोजन का अर्थ श्रोता साथियों केवल पेट भरना नहीं है। ऐसा भोजन है जिसमें हमारे शरीर को अलग अलग पोषक तत्व है वो उचित मात्रा में मिले और जो हमारा शरीर का संतुलन है उसे बनाकर रखें। हम देखते हैं कि हमारे भोजन में अनाज, दालें, अन्य जो प्रोटीन के स्रोत होते हैं जैसे कि श्रोता साथियों सब्जियां, दूध, दही या जैसे कि खाद्य पदार्थ जैसे जो पदार्थ होते हैं उन्हें हम शामिल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए श्रोता साथियों अगर सुबह केवल मीठी चाय और बिस्किट लिए जाए तो हम देखते हैं कि श्रोता साथियों कि इससे हमारा पेट तो भर सकता है लेकिन हमारे शरीर की जो सभी पोषक तत्वों की जरूरत होती है वो पूरी नहीं हो पाती। इसके बजाय श्रोता साथियों चने के साथ गुड़ आप ले सकते हैं, दही के साथ पोहा आप खा सकते हैं, दूध के साथ दलिया खा सकते हैं या जो सब्जियां होती है उनके साथ आप रोटी का विकल्प है वो भी चुन सकते हैं।
1: बिल्कुल मनीषा आपने सही कहा। यही श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि हमारे ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग सुबह जल्दी उठकर खेत, मजदूरी, पशुपालन और दूसरे कामों के लिए निकल जाते हैं। जो व्यक्ति सुबह से शारीरिक मेहनत करता है उसके लिए सुबह का भोजन छोड़ देना ठीक आदत नहीं है। केवल चाय पीकर कई घंटे तक मेहनत करने से पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता। ऐसे में नाश्ते में स्थानीय अनाज, दाल, चना, मूंगफली, दही और मौसमी फल जैसी चीजों का संयोजन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए बाजरे की रोटी, दही और हरी सब्जी या फिर चना, मूंगफली या मौसमी फल या दूध दही हम ले सकते हैं। श्रोता साथियों ये विकल्प घर की उपलब्धता के अनुसार रखे जा सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हर परिवार की आर्थिक स्थिति, भोजन की उपलब्धता और जरूरत अलग होती है। इसलिए नाश्ता ऐसा होना चाहिए जो स्थानीय उपलब्ध पसंद के अनुसार और नियमित रूप से किया जा सके।
0: जी हाँ अंजलि जी आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चली रही हैं। तो ये बातें हमारे आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी लेकिन क्यों ना अभी श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दे।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि गीत से पहले हम पौष्टिक नाश्ते को लेकर ढेर सारी बातें जान रहे थे कि किस तरीके से सुबह का नाश्ता हमें कभी नहीं छोड़ना है, यही मनीषा बात आती है बच्चों के लिए नाश्ते की। तो श्रोता साथियों, बच्चे सुबह उठकर स्कूल जाते हैं, उन्हें पढ़ाई के साथ खेलना, दौड़ना और दूसरी गतिविधियों में भाग लेना होता है, इसलिए सुबह का भोजन उनके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। कई बार बच्चे नाश्ता करने में मना करते हैं या माता पिता समय की कमी के कारण उन्हें सिर्फ बिस्किट या पैकेट वाला खाद्य पदार्थ देकर स्कूल भेज देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे में घर में उपलब्ध पौष्टिक चीजों से बच्चों के लिए आकर्षक नाश्ता बनाया जा सकता है, जैसे कि दूध या दही के साथ फल, सब्जियों वाला पोहा, मूंग दाल का चिल्ला, दलिया, घर का बना पराठा और दही, रागी या बाजरे का व्यंजन, भुना चना और फल। बच्चों को जबरदस्ती खिलाने के बजाय भोजन को स्वादिष्ट, रंगीन और उसकी पसंद के अनुसार प्रस्तुत करने की कोशिश की जा सकती है। और एक महत्वपूर्ण बात कि बच्चों को नाश्ता कराने के साथ उन्हें पानी पीने की आदत भी डालनी है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ अगर बात करें कि भोजन में विविधता क्यों जरूरी है इसकी, तो श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि रोज एक ही चीज खाने के बजाय अलग अलग प्रकार के भोजन को हम हमारे भोजन में शामिल कर सकते हैं। इससे भोजन में विभिन्न पोषक तत्व शामिल होने के अवसर भी मिलते हैं। हम देखते हैं कि एक दिन श्रोता साथियों हम पोहा बना सकते हैं, दूसरे दिन दलिया बना सकते हैं, किसी दिन मूंग या चना हम खा सकते हैं, किसी दिन श्रोता साथियों रोटी सब्जी या उपमा भी खा सकते हैं।

0: श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि मौसमी फल और सब्जियों को भी हम हमारे भोजन में शामिल कर सकते हैं। इससे हम देखते हैं कि भोजन स्वादिष्ट होने के साथ साथ विविध भी बनता है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि सुबह उठने के बाद शरीर को पानी की भी बहुत जरूरत होती है, इसीलिए दिन की शुरुआत ही वो पर्याप्त पानी पीने से भी हम कर सकते हैं।
1: जी जी।
0: इसके बाद श्रोता साथियों, अपनी दिनचर्या और जरूरत के अनुसार सुबह भोजन हम कर सकते हैं। पानी शरीर की सामान्य प्रक्रियाओं के लिए श्रोता साथियों बहुत जरूरी होता है। हालांकि श्रोता साथियों, हर व्यक्ति को पानी की जरूरत अलग अलग होती है। मौसम, काम और शारीरिक गतिविधियों के अनुसार पानी की जो प्रक्रिया होती है वो अलग अलग होती है। इसलिए श्रोता साथियों, में प्यास लगने पर समय समय पर पानी पीते रहना चाहिए और सुबह उठने पर सबसे पहले हमें पानी पीना चाहिए।
1: जी हाँ मनीषा, घर में अक्सर महिला सबसे पहले उठती है और परिवार के बाकी सदस्यों के लिए खाना तैयार करती है, बच्चों को खिलाती है, पति को खाना देती है और घर के काम में लग जाती है। लेकिन कई बार इसी भागदौड़ में महिला खुद नाश्ता नहीं करती। ये आदत धीरे धीरे शरीर को पर्याप्त पोषण से दूर कर सकती है, इसलिए परिवार की देखभाल करने वाली महिला को भी अपने भोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए। सबको खिलाने के बाद खाऊंगी की जगह कोशिश करें कि सुबह अपने लिए भी पौष्टिक नाश्ता समय पर बना लें। घर में जो पौष्टिक भोजन उपलब्ध है उसमें से महिला को भी पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलना चाहिए।
0: जी हाँ।
1: क्योंकि पौष्टिक नाश्ते के लिए कोई एक तय व्यंजन जरूरी नहीं है। मुख्य बात है कि भोजन में अलग अलग खाद्य समूह का संतुलन हो। एक आसान तरीका ये हो सकता है कि नाश्ते में एक अनाज, एक प्रोटीन स्रोत, फल, सब्जी, दूध, दही जैसे खाद्य पदार्थ को अपनी उपलब्धता के अनुसार शामिल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए बाजरे की रोटी, दही और सब्जी खा सकते हैं, या मूंग दाल का चिल्ला, हरी चटनी या फल खा सकते हैं, या सब्जी वाला पोहा, मूंगफली और फल खा सकते हैं, या दलिया, दूध और मौसमी फल। इस तरह के छोटे छोटे बदलाव करके रोज के नाश्ते में विविधता लाई जा सकती है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि कई बार लोग पौष्टिक भोजन को महंगा भोजन समझ लेते हैं। यह सोच है वो श्रोता साथियों सही नहीं है। पौष्टिक भोजन घर की उपलब्ध सामग्री में भी हम तैयार कर सकते हैं।
1: जी जी।
0: जरूरी है श्रोता साथियों कि हम भोजन को केवल स्वाद और पेट भरने पर ध्यान न दें, बल्कि यह सोचे कि हमारे शरीर को क्या पोषण की जरूरत है। अगर घर के बड़े इस बात को समझे तो अंजलि जी, हम देखते हैं कि हमारे बच्चे हैं वो भी अच्छे आदतों से शुरुआत कर सकते हैं भोजन की।
1: जी हाँ मनीषा, हमारे गाँव में कई ऐसे पारंपरिक खाद्य पदार्थ हैं जो पीढ़ियों से भोजन का हिस्सा रहे हैं। बाजरा, मक्का, ज्वार, चना, मूंग दालें, तेल, मूंगफली, मौसमी सब्जियां और स्थानीय फल। श्रोता साथियों, ये सभी हमारे आसपास आसानी से मिल सकते हैं। इनसे बने पारंपरिक व्यंजनों को आधुनिक तरीके से भी नाश्ते में शामिल किया जा सकता है। इससे एक तरफ भोजन में विविधता आती है तो दूसरी तरफ स्थानीय खाद्य परंपराओं को भी बढ़ावा मिलता है। हमें यह समझने की जरूरत है कि पौष्टिक भोजन हमेशा बाजार में मिलने वाला महंगा भोजन नहीं होता। कई बार हमारे घर और खेत के आसपास उपलब्ध खाद्य पदार्थ ही हमारी रसोई की ताकत होते हैं। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि दिन की अच्छी शुरुआत केवल जल्दी उठने से नहीं होती, बल्कि अपने शरीर को सही शुरुआत देने से भी होती है। सुबह की थाली छोटी हो सकती है, लेकिन उसमें पोषण की जगह बड़ी होनी चाहिए। हमारे घर की रसोई में मौजूद बाजरा, मक्का, ज्वार, चना, दाल, मूंगफली, दूध, दही, सब्जियां और मौसमी फल, इन सबको अपनी सुविधा और उपलब्ध के अनुसार नाश्ते का हिस्सा बनाया जा सकता है। जब परिवार का हर सदस्य सुबह पौष्टिक भोजन करता है तो हम केवल एक वक्त का खाना नहीं खा रहे होते, बल्कि स्वस्थ आदतों की नींव रख रहे होते हैं। इसलिए कल सुबह जब रसोई में नाश्ता तैयार हो श्रोता साथियों, तो एक बार जरूर सोचिए कि क्या मेरी थाली में सिर्फ स्वाद है या शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व भी, क्योंकि पौष्टिक नाश्ता अपनाएं, दिन को ऊर्जा से भर जाएं। इसी संदेश के साथ अब कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य से हम विदा लेने की अनुमति चाहेंगे। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।
0: जी बिल्कुल।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य और हमारी स्वास्थ्य प्रद बातें अब यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातें रही, गीत संगीत रही, वो आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे।
1: जी हाँ।
0: तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारश्वर
0: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
1: नमस्कार।

0: भाइयों ने बोनो जेवरे ग्राम सभा में बोने बोले हैं तो फैसला मजबूत थे हैं। वन अधिकार सिर्फ कानून नती माँ जंगल थकी जुड़ियो बोनो नो रिश्तो है जे जंगल में हमसे हैं इन्होंने रक्षा करे है तो आवो बोना ने भागीदारी बढ़ावा ग्राम सभा मजबूत बनावा ने जंगल नु भविष्य सुरक्षित करा। बोना ने आवाज विकास की असली पहचान है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम समस्या समाधान हमरवा वारा अमर हित्ता भाई बोनो ने आपनी बोन मनीषा
1: ने आपनी बोन अंजलिनु
0: राम राम। होवे भाइयों बोनो आप सब हमले रिया हो अपड़ू सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM ने आप सभी नु स्वागत कर रहा हूँ हमारे आज ने कार्यक्रम समस्या समाधान में।
1: होवे भाइयों बोनो लेने हाजिर थे गये हो कार्यक्रम समस्या समाधान ने लेने एक नया विषय ने हाथे। मनीषा बोन आज अपने कार्यक्रम में भाइयों बोनो तक की बातचीत नु विषय है कि आपने आकुदड़ी अपना हूँ अधिकार है आ अधिकार है पेलो अधिकार है अपने खुद ना अधिकार नी बात कर रहा हूँ पर अपना हूँ कर्तव्य है अपने देश गांव समाज पल्ले ई अपने नती साणता से कार्यक्रम में अपने इस जानेंगा कि अपना भी हूँ अधिकार है हर ते अपना ने अपना अधिकार ने समझवू होगा ने हूँ चुनौती आवी रही है ने समाधान हूँ थई शके।
0: હવે અંજલી બોન તો આના વિશે માટે આપણે ભાઈ બોનો કતી ઘણા હક્કાની વાતે રહેંગા
1: હવે
0: અબર હામળા આગીર ને મોરે કરો આપણી વાતી
1: હવે તો ભાઈ બોનો આપ હમરતે રેજુ આપણું રેડિયો આપણી વાતે વાગડ રેડિયો 90.8 FM માટે।

सेहत नु राज मुंह है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी थकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने तात काड़ी नी जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी नी दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरो, आज जीवन नो सहारो है, आज थकी आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिया है ये हुके जाएंगा, खेतर बंजर थे ही जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

ये गजल मैंने मेरे से बहुत दिनों में इसकी धुन बनी मैं पेश कर रहा हूँ। ये मोमिन खां मोमिन की गजल है जिसका मतलब है रोया करेंगे आप भी पहरों इसी तरह अटका कहीं जो आपका दिल भी मेरी तरह।

साथियों, ये तो थी हमारी आज की सभा, जो कि अब यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आज की इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं साथियों, हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643 पर। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए आज की इस सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल।